0: हमारी जिंदगी में चुनौतियों का सामना करना और सपनों को साकार करना हमेशा आसान नहीं होता। जीवन में हमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकती है। लेकिन कभी कभी एक छोटा सा प्रेरणादायक उदाहरण हमें नई ऊर्जा और दिशा प्रदान कर सकता है। प्रेरणादायक उद्धरण हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें कठिन समय में सहारा देते हैं।
1: सुप्रभात, नमस्कार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है अरुण FM 103.1 MHz पर। हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी प्यारे श्रोताओं का मैं आपका रेडियो दोस्त कारगर युवा आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सन 2026 के सितंबर महीने के आज 25 तारीख है और दिन है शुक्रवार। आज के हमारे पहली प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर एत तथा तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्मा। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हमारी पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा से।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। 6:40 पर प्रसारित होगा गालो श्रोताओं का समाचार। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे।

7:10 पर आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार। 7:15 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट।

7:35 पर आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार। 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदा बहार।

और इन सब के अलावा आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज आप सुनेंगे 8:30 पर।

8:40 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम हेलो ईटानगर। 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। 9:10 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष के उपलक्ष्य में जनसेवा से देश सेवा का विशेष श्रृंखला।

10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। 10:10 पर आप सुनेंगे आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड। 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तो प्यारे श्रोताओं, ये था आज के हमारे पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को समीप से समझने का अवसर देती है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत राजनीतिक समर्थन के साथ व्यवहारिक सहयोग पर भी बल देता है। श्री जॉर्ज ने

0: फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। उन्होंने कहा कि देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यमुना का पुनरुद्धार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसे एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी मानित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पद की संख्या 17 हो गई है जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi will interact today via video conference with participants of Seva Yatra travelling from Varanasi in UP to Vadnagar in Gujarat under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The participants are travelling through towns, districts, talukas and villages with the program focusing on taking community service and public engagement activities to the grassroots. The journey is scheduled to continue till October 7. The Prime Minister yesterday interacted with participants of the Seva Yatra travelling from Vadnagar to Varanasi and praised their ongoing journey as a significant step towards grassroots nation building. During the interaction, Mr. Modi asked the participants about their experiences on the road, their interactions with people and the new learnings they had gathered during the journey.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग, लेकर आया हूं प्रेम, शांति और विश्वास से भरा हुआ आपका अपना आध्यात्मिक कार्यक्रम भक्ति गीत में। श्रोताओं, आज का ये पावन सफर समर्पित है प्रभु यीशु मसीह को, जो प्रेम, दया, क्षमा और मानवता के संदेश के प्रतीक हैं। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें दूसरों के लिए करुणा हो, जरूरतमंदों के लिए सहायता का भाव हो और हर इंसान के प्रति सम्मान हो। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर पर भरोसा रखने वालों के जीवन में हमेशा आशा की एक नई किरण बनी।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम भक्ति गीत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं क्रिश्चियन भक्ति गीत। श्रोताओ, प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम और क्षमा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। उन्होंने हमें यह संदेश दिया है कि नफरत को प्रेम से और अंधकार को विश्वास की रोशनी से दूर किया जा सकता है। जब जीवन की राह कठिन हो जाए, जब मन निराशा से भर जाए, तब प्रभु यीशु का संदेश हमें याद दिलाता है कि विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ होती है।

ही आकाशवाणी इटानगर हिलोहित पोलग आलो हमनी गोला लोंगोना ने लुगार होके गालो मेंकेन आगम मेलेन जिदाक नांगो दक्षा पेते मलो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुमेनला नीतानिये ये दक आजी होगो यादगो इला ये अकेनकनम तुर्बुदाले हिला ये नाम गाई ने काम के अमला मिंतु पॉलिटिक्स लोके ये ने निगत देला सिन अतना पोस्ट गो बला दू दक बेसिन आगे मुदिंगो रुहित माबे नियम याद गो इला ये कागुरता गुर हिला ये नाम दिन सिया रूब मुला ये तलका अमला दोई मतु बदनगर लोके वाराणसी लोब यात्रा इंगो हिन सेवा यात्री गदम वर्चुअल कार्यक्रम रखी दाखलो दिन सरोना आगम हिम निर्म मोदी मेंतु गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केति परनायक मुग पहले लोक मुग स्थित होके नीना रूम ओक आदे ग्रुप इदुमिस्मिक कम्युनिटी गदम के मे हाग दिलोक आगम आगम आमम तरम जब जिलक जितु गवर्नर मुग मिसेस लोमिनला अरुणाचल प्रदेश होके नीगद कोयम लोक अतबगे लोक रिकनम इला आयेदादी दो पति पहिला ये बना रूक अमला मेंतु गवर्नर में मेंताला गसिख मेंगना आजोल गद नुन दिन कोयम लोक के अतब गद गे ये बदु बगेनम गग हिगो ननमाबा नीतम दो ये ओक गद हि प्रु गदम नियम जदम आपका अमला सिंह मेंदिरी सिंह जीतु हिलोगे लोक के यूरोप लेला होकपोल गे हमनी गोला आलोपीन तारे ग्लोब डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश गद इटानगर ओक नहरलगन गे हॉस्पिटल्स अंगोलो हॉस्पिटल मॉक एक्सरसाइज गो इक जी अमला मेंतु मोद मोब अगला बा कब कब लोमनाम गे नाम ये दाक लोला सिन नी गदम यो बिदला हिलक नेलिक मात बे तूस बाल केंद एगम अलब नी तुम दो यु में नम लगा बे मॉक एक्सरसाइज हिगिम इक जी तादुना के अमला मेंतु मोक एक्सरसाइज हम इदाकलो नीगद नुनु अनियोजा को बे मिला लम्मा जद्दा बे का अमला सिंह मेंबर जीता तू तेरा डिस्ट्रिक्ट न्यू तूपी विलेज कम्युनिटी फॉरेस्ट लोक बायोडायवर्सिटी एग कोबु पत्ता लोक के इलेला आसा में न याद नगो कादु खुदे एगम तूस बाला ओके डॉक्यूमेंटेशन इला लेला दोबे मदुला हिंतांग फाउंडेशन गद कैमरा ट्रैपिंग इनिशिएटिव गो यूरोप गतु को फाउंडर्स

0: conservationist sajo lowang ok sara kongsai munye biodiversity conservation ge lambalo anyu nyingo go be this moma em puli jila yesor dula biodiversity higim tus bal rulas ko amla gumin hoinam rogu jitu national board of examination in medical sciences got the NEET PG 2026 result mello declare jituku MD MS DNB DRNB direct 6 years course ok PG medical diploma courses lo 2026 to 27 session lo admission am ilado ba mudula india hobo inekuna august 30 ogo examination am ikjik beni menke nagom himnunu akashvani itanagar lok tapadu kbk papum pare gadde kendel ok sabun am yoga molen dona de agam mentom nam lega ba mudla jolanglo vocational training program go irob gatu ok training higim ok training higim hok pol ge alohamni hamni gola kan tarig lo ba ilen ge amla mentu borum block self help groups lok members hamni gola nidum ango go be training program lo alg jiduna ke amla sin mempa jita tu department of health and family welfare government of arunachal pradesh ok selco foundation ba kendula muluk jinam energy for health arunachal pradesh malo health and family welfare minister viuram wage me mokok jitu ijage local ekla health center lo light amab inam go kala kusin health center functional la dobe eku amla mentu nirma wage me mentala initiative higim csr support lo ke ikji dunak ambin me ain mur ko lagalo state government me kisa kamana ke amla sin member jitu tawang district mago okasela region lo namna somolikla dune yigadam glacial lake outburst flood risk modi loketapam dubena jille jille laku enkumla do tekula isse pumbe innam go kakyum modi tu ko pele lok namna somolikla dune yigad yogo iken dokte ega mentom mutom nam lagabe doin logo go awareness ok sensitization program go lodumgala donam m malo ssb outpost dongseng mang lungla lo losum getuku tabang ddmo genden somo mumela modi lek lok namna somolik la du ne nyigat nunu aye enki ka ke hilaye rutola ka amla se doimotu shooting lo anandjit singh naruka ok परिनाज डलीवाल मुन्ये जापान गे आईची नागोया लो एशियन गेम्स इदाक्लो मलो मिक्स इसकी टीम लो ब्रोंज मेडल गो पाज तू हिनी गे आनी होबो इतजाब एशियन गेम्स लो इंडिया मिक्स इसकी टीम कैटेगरी लो मेडल एम पाज जब पाज दखना के एम लसिन गुमिन होइनम मे पाज तू के तनगा दे हिर गे गालो मेंकिन आगो मेन जिसा एगे
1: तनगदम लेकिन गो कुद्दा रोगम जाब कुमरे खिदुला काजु हिरग आर होगोंगुनु गबम बासर ओक मग अजन अतिरग पोनु मेनम गो तालाजु
2: ग अंजा ताजम
3: तागप सागम गो एचआईवी बेमार हिगुम अल्लुब हेंसला येनम हिगी नरु लोक दिन्सना
4: एचआईवी बेमार हिगी यो लोक न्योमि हिताको एमयोम ने एचआईवी बेमार गन लोक इलाला एचआईवी गन नामने युपम दोबम हिला बेजी सिरिंज निगबम हित लोक ओक अन्न एचआईवी गयम ने अकी लोक आवम से न्योगला जु
3: एम गे मुब तोका अमुम बदुबम हिक लोक अलाकिया या हिक लोक गोमबगोम या हिक लोक दोबम तेबम हिक लोक ओक तारुपीक लोक एचआईवी हिगि न्योंगमादोनक
4: एचआईवी टेस्ट इका हिला येरु तोलाका हेंगोर बोलो नोमने मोक्लासिन इलादो नोक गुनम हुनम एमसिन अल्लुब गुपु गुपुलासिन इलादो
3: एचआईवी हि गुंबोसियोका अल्लुब देन हेन लाजुका टेस्ट कोतका ओक एचआईवी गन नामने अरिक माप जुका हिगि अरिक्सा कामा
4: एचआईवी ग लगु लगा हिगिमने अल्लुब हेन नाम लगाब next

0: AIDS Helpline 1097 number hobo call ru talaka
1: hatna dins na bahigum bumin hoin lagaba Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS nahalagan pela lokka jilento
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का समाचार। आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद कार्यक्रम सुबह सवेरे के साथ। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। सुबह की ताजी हवा, उगता हुआ सूरज और नई ऊर्जा के साथ आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो सुबह सवेरे। मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग और अगले कुछ पलों में हम साथ मिलकर करेंगे एक हेल्दी और पॉजिटिव शुरुआत अपने दिन की। दोस्तों, आज की तेज भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो जिंदगी का मजा अधूरा रह जाएगा। इसलिए इस कार्यक्रम में हम रोज लेकर आते हैं योग के आसान आसन जो शरीर और मन को संतुलित रखे, और कुछ जरूरी हेल्थ टिप्स जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बनाए और बेहतर। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए और खुद को तैयार कीजिए एक नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करने के लिए। दोस्तों, आज के योग सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं अपच यानी इनडाइजेशन से राहत के लिए कुछ असरदार योगासन के बारे में। गलत खानपान, देर से खाना, ज्यादा तला बुना भोजन और तनाव की वजह से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे गैस, पेट फूलना, बारेपन और अपच जैसी दिक्कतें होने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नियमित योग और प्राणायाम से पाचन तंत्र मजबूत बनता है और अपच की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कुछ आसान और प्रभावी योगासन।

सबसे पहला है वज्रासन। इसे करने के लिए घुटनों को मोड़कर एरियो पर बैठ जाएं, हाथों को घुटनों पर रखें और रीढ़ सीधी रखें। 5 से 10 मिनट तक इसी मुद्रा में बैठे, इससे पाचन तंत्र को मजबूत मिलता है, गैस और अपच में राहत देता है। ये एकमात्र योग है जो खाने के बाद भी किया जा सकता है।

अगला है पवन मुक्त आसन। इसे करने के लिए आप पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़कर छाती से लगाएं, हाथों से पकड़कर 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करें। इससे पेट की गैस निकलने में मदद मिलता है, पेट दर्द और अपच में राहत मिलता है। अगला है भुजंग आसन। इसे आप करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, हथेलियों को कंधों के पास रखें, धीरे धीरे छाती को ऊपर उठाएं, 10 से 15 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। इससे पाचन अंगों को सक्रिय करता है और कब्ज और अपच में सुधार मिलता है।

अगला है अर्ध मत्स्यांध्र आसन। इसे करने के लिए जमीन पर बैठकर एक पैर को मोड़े, शरीर को धीरे धीरे विपरीत दिशा में मोड़े। 15 से 20 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। इससे पाचन तंत्र को मजबूती मिलता है, पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। अगला है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे करने के लिए आराम से बैठ जाए, एक नाक से सांस ले और दूसरी से छोड़े, और इसे विपरीत दिशा में फिर से दोहराए। 5 से 10 मिनट तक इसे अभ्यास करें। इससे तनाव कम करता है, पाचन क्रिया को संतुलित करता है। तो दोस्तों, जरूरी सलाह है, योग हमेशा खाली पेट करें, सिवाय वज्रासन के। तला भुना और ज्यादा मसालेदार भोजन कम करें, समय पर भोजन करें और खूब पानी पिए। याद रखिए दोस्तों, अच्छा पाचन ही अच्छी सेहत की बुनियाद है। अगर पेट स्वस्थ रहेगा तो शरीर भी ऊर्जा से भरा रहेगा। फिर मिलेंगे सुबह सवेरे के अगले योग सेगमेंट में। तब तक स्वस्थ रहिए, एक्टिव रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिलहाल सुबह सवेरे कार्यक्रम में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी के युगल आवाजों में।

दोस्तों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर कार्यक्रम सुबह सवेरे का। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हेल्थ सेगमेंट की ओर। आज के हेल्थ सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं आंखों की देखभाल यानी आई केयर की क्यों जरूरी है। आजकल मोबाइल, लैपटॉप और टीवी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में थकान, जलन, सूखापन और सिरदर्द जैसी समस्याएं होने लगी हैं। इसलिए आंखों की सही देखभाल करना बेहद जरूरी हो गया है। आंखों की देखभाल क्यों जरूरी है दोस्तों? सबसे पहला तो है साफ और स्पष्ट दृष्टि के लिए। आंखें हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने का मौका देती हैं। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे दृष्टि कमजोर हो सकती है। और डिजिटल आई स्क्रीन से बचाव। मोबाइल और कंप्यूटर के ज्यादा उपयोग से डिजिटल आई स्ट्रेन हो सकता है, जिससे आंखों में दर्द, धुंधलापन और पानी आना जैसी समस्याएं हो सकती है। और अगला है आंखों की बीमारियों से बचाव। आंखों की सही देखभाल से कई समस्याओं से बचा जा सकता है, जैसे कंजंक्टिविटिस, ड्राई आईज और आंखों की एलर्जी और सिर दर्द और थकान से राहत। कई बार लगातार स्क्रीन देखने से सिर दर्द और मानसिक थकान भी होने लगती है। सही आई केयर से ये समस्या कम हो सकती है। और दोस्तों, आप बताते हैं आंखों की देखभाल के कुछ आसान टिप्स। पहला है 20-20-20 नियम अपनाएं। हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर देखिए और पर्याप्त नींद लें। रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आंखों को आराम देती है।

अगला है आंखों को बार बार धोए। साफ पानी से दिन में 2 से 3 बार आंखों को धोना फायदेमंद होता है। और पौष्टिक आहार ले, डाइट में शामिल करें गाजर, पालक, बादाम, आंवला, ये आंखों की रोशनी के लिए अच्छी मानी जाती है। धूप में सनग्लास पहने, तेज धूप और धूल से आंखों को बचाने के लिए सनग्लास जरूर पहने। आंखों की एक्सरसाइज करें, रोज कुछ मिनट फार्मिंग, ब्लिंकिंग और आई रोल एक्सरसाइज जरूर करें। याद रखिए दोस्तों, आंखें हमारी जीवन की रोशनी है, अगर हम रोज थोड़ा सा समय इनकी देखभाल में लगाए तो हमारी दृष्टि लंबे समय तक स्वस्थ रह सकती है। इसी के साथ खत्म होता है आज का हेल्थ सेगमेंट, फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ टिप के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनी आंखों का खास ख्याल रखिए। तो दोस्तों, आज की सुबह सवेरे कार्यक्रम में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम के अंत में आनंद लेते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत फिल्म ताल से। आवाज है अलका याग्निक और उदित नारायण की।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम। आकाशवाणी तनागर जीरो क्लास सरोकातन प्रोग्राम में मिली मिली सरोनुनु का पियो जापातन पुयुमी तापतो दो सरोपुई में कालो को लेने से हागे सुनिया बुलियोंगुन स्टेट होगा ईदो मिशमी वातन का केमे हा पिजामी का सोला मिली हो गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनायक मोक दली पामी वाता मी हेंपी पुयुमी बिलीला मुत सिका पिजा से मी अन्यां कामिया ईदो मिशमी वाता हु मोलो का अजीबालु मी आया पा आलिया सिमिदारी या पाहो पसोला मुदु हो बिलो का अतो मुझ मुयो मिका मुयो मापा का सितां मकान अनो मुझ आया अको हला गवर्नर परनायक मोका पुयो बिलिला मने हो लुकोला लुने सलोक मरी बुला सका पलो का 28 अलोये इटानगर नहालाग नो का यंगवे हॉस्पिटल सहो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम आता हु हॉस्पिटल मोक एक्सरसाइज मगला मकिंदो हका मोक एक्सरसाइज और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम आता हु हॉस्पिटल का स्टाफ स्थान आता मी मल्टीपल कैजुअलिटीज अर्थक्वेक मास कैजुअलिटी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर इंसिडेंट्स मी नितान पर मैनेज मिला हॉस्पिटल का म्यू दून आता मी कार्य का दला मकिंदो हका पुगो मी लुको ला मकिंदो हला लुको दो तीरब डिस्ट्रिक्ट टूपी लेंबा आरु होका मोरे होका अच्छा म्यू दान आता मी मोनिटर मुदुपा हो मोलो मिमी मेमला मादोपा कार्यं कादा तो पाहला तीरब होका हिंगटोंग फाउंडेशन आता हु मोरे हो कैमरा मुले लामत हला लुको दो हका फाउंडेशन मिका मरी गने को फाउंडर्स अन्य का अम्या हु चाजो लोबंग हो सारा खोंगसाई केंदेल हो साबुन पुदोपा मकिन लुकिला पापुन पड़े होका केबीके ती माता हु सीपू जोलांग हो ट्रेनिंग आको मगला मुदो हला लुको दो हका ट्रेनिंग प्रोग्राम हो निखा हेला यांगोय समा सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर सता पार्टिसिपेट में बोला मुदो और सका प्रोग्राम से मी केबी के टीम आता हु सका पुलो का 27 आलोगे मगला मकिंदो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आताला सेल्को फाउंडेशन आतंका मई लगा एनर्जी फॉर हेल्थ अरुणाचल प्रदेश हालांक इनिशिएटिव आको मई लगा मनमी हेल्थ मिनिस्टर व्यूराम बागे मोबिलियो मुकोबिला मुत सका इनिशिएटिव हु उन स्टेट का हेल्थ सेंटर्स दो नातामी लाइट आमापा मई मुला हो मोलू का मुगु लुगु मी हाथों हापो मा मुला दो पकाल्यांका दला मकिंदो हला हेल्थ मिनिस्टर मोलू को लालुने

कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। दोस्तों हर नई सुबह अपने साथ लेकर आते हैं नई उम्मीदें, नए अवसर, नई जानकारियां। इसलिए हम भी हर दिन की तरह आपके लिए देश दुनिया की ताजा और खबरें, अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय दैनिक समाचार और

से मेडिकल पीजी प्रवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है। अभ्यर्थी अपने परिणाम और आगे की काउंसलिंग संबंधी जानकारी आधिकारिक माध्यमों से देख सकेंगे। IITs में परीक्षा में नकल मल प्रैक्टिस के मामलों के लिए स्पष्ट नियमों की मांग। कई IITs के फैकल्टी सदस्यों ने परीक्षा की कथित अनियमितताओं के मामलों से निपटने के लिए स्पष्ट और समान प्रोटोकॉल बनाने की मांग की है। ये मांग IIT बॉम्बे के छात्र से जुड़े हालिया विवाद की

फेस्टिवल में 9 देशों की भागीदारी। दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिक्स थिएटर फेस्टिवल में भारत, रूस समेत 9 देशों की भागीदारी होगी। ये आयोजन रंगमंच और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मंच बनेगा। एशियन गेम्स में भारत का अभियान जारी। आईसी नगोया एशियन गेम्स 2026 में भारत का अभियान आज 7वें दिन भी जारी है। छठे दिन भारत ने 4x400 मीटर मिश्रित रिले में रजत और 10,000 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। आज भारतीय खिलाड़ी एथलेटिक्स समेत कई स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। ट्रंप सी जिनपिंग की अहम मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग के बीच वाशिंगटन में अहम शिखर वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने अमेरिका चीन संबंधों में साझा हितों और सहयोग के क्षेत्र पर जोर दिया। व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक भू राजनीतिक मुद्दे बातचीत के प्रमुख विषयों में शामिल है। अमेरिका चीन व्यापार तनाव कम करने की कोशिश। ट्रंप सी बैठक ऐसे समय हुई जब दोनों देश व्यापार और तकनीक से जुड़े मतभेदों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने सीएनएन, एमएस नाउ और पॉलिटिको को फिर प्रेस एक्सप्रेस दिया। फिर से सुनिए, प्रेस एक्सेस दिया। एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश के आदेश के बाद सीएनएन, एमएस नाउ और पॉलिटिको के पत्रकारों को व्हाइट हाउस में फिर से प्रेस एक्सेस मिल गया। अदालत ने पहले लगाए गए प्रतिबंध को संवैधानिक प्रक्रिया के संदर्भ में चुनौती दी थी। रूस यूक्रेन युद्ध, रूसी हमलों में 8 लोगों की मौत। यूक्रेन में रूसी हमलों से 8 लोगों की मारे जाने और एक मैटरनिटी क्लिनिक को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है। युद्ध के बीच दोनों पक्षों के हमले जारी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खंदार, पक्तिया और कोस्त प्रांतों में करीब 10 ठिकानों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान का कहना है कि यह कार्रवाई उसके खिलाफ हुए ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। अफगान पक्ष ने इन हमलों को आक्रामक कार्रवाई बताया और नागरिकों के हताहत होने की जानकारी दी है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध और क्षेत्रीय तनाव। ईरान से जुड़ी अमेरिकी प्रतिबंधक कार्रवाई के बीच क्षेत्रीय तनाव बना हुआ है। ईरान की ओर से पहले चेतावनी दी गई है कि यदि अमेरिका दोबारा हमला करता है तो संघर्ष को व्यापक क्षेत्र तक फैलाया जा सकता है। दोस्तों, अब रुक करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद। राजधानी ईटानगर से प्रकाशित अरुणाचल टाइम्स अखबार के मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। मेजर वोटर डिलेशन इन ईटानगर, बोरदुमसा, दियून एंड मियाओ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद राज्य में कुल वोटरों की संख्या

6.96 लाख हो गई हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पहले की संख्या के मुकाबले इसमें 1.91 लाख वोटरों की कमी आई है। सबसे ज्यादा नाम ईटानगर और मियाओ विधानसभा क्षेत्रों और चांगलांग जिले के बोरदुमसा दियोन विधानसभा क्षेत्र से हटाए गए हैं। अनसुख बंद अफेक्ट्स नॉर्मल लाइफ इन आईसीआर। गुरुवार को ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन अनसु की ओर से बुलाए गए 12 घंटे के बाद की वजह से ईटानगर और नाहरलगन में कामकाज ठप हो गया और आम जनजीवन पर असर पड़ा। दिन भर सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल और बैंक जैसी जरूरी जगहें बंद रही। बंद के दौरान दुकानें भी बंद रही। मजिस्ट्रेट, पुलिस, एम्बुलेंस और फ्रेस की गाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी गाड़ियां सड़कों से नदारद रही। सीजनल बटरफ्लाई साइटिंग केएनएच रिकॉर्ड्स राइस स्वीप्ट। वेस्ट कामेंग जिले में कामेंग नेचुरल हेरिटेज ने तितलियों के मौसमी आवागमन पर नजर रखने की अपनी कोशिश के तहत बुधवार को राइस स्विफ्ट वार्बो सिन्नारा नाम की स्किफर तितली को देखा और दर्ज किया। मिथुन ब्रदर्स फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट अटेंड मीट इन पासीघाट। गुरुवार को ईस्ट सियांग जिले में सियांगमी मिथुन ब्रदर्स एसोसिएशन की एक बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के अलग अलग जिलों से मिथुन पालने वाले और प्रतिनिधि शामिल हुए। इसका मकसद स्थानीय सियांगमी मिथुन नस्ल के संरक्षण, जेनेटिक सुधार, वैज्ञानिक प्रबंधन और टिकाऊ विकास के लिए सामूहिक प्रयासों को मजबूत करना था। कैमरा ट्रैपिंग इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन तिराप कम्युनिटी फॉरेस्ट। तिराप जिले के न्यू टूपी गांव के कम्युनिटी फॉरेस्ट में वन्य जीवों की जानकारी इकट्ठा करने और उन पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैपिंग की पहल शुरू की गई है। अपंग ओपोजेस सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग ने सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट सर्वे से जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अरुणाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार के हालिया कदमों पर गंभीर चिंता जताई है। गादुक टू रिप्रेजेंट इंडिया एट मिसेस एशिया इंटरनेशनल फिजन। मिसेस अरुणाचल 2026 के फर्स्ट रनर अप जेनी पिंगम गादुक प्रतिष्ठित मिसेज एशिया इंटरनेशनल 2026 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। तो दोस्तों, आज के न्यूज सेगमेंट में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत। आवाज दी है सोनू निगम और तौसिफ अख्तर की।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट। आइए इस कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और बेहतरीन गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का मॉर्निंग इंटरटेनमेंट कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: Menang-menang nga si tegap si gamgu aku tepai. Si alemanelema aku HIV oi loka yonam chonam la. Ane loka kulo aduku alabim palinduku. Aberitola lako berdungla acin ugumala donang tengnam loka so HIV si nyinga lagi duba chance maka ala bimpa linduku. Holaga berbenu so lema nga pamu maduba atuboga ayak nga alaba nichiko hospital lo cek laka. Gam rodu bermengbolo helpline number 1097 lo call laka. So gam si Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS Naharlagan loka bimpa linduku.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम सदाबहार के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
2: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs. 10.49 lakh.
3: And benefits up to Rs. 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
1: नमस्कार, आप सभी का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग और अगले कुछ पलों तक आपका साथी बनकर लेकर आया हूं आपका पसंदीदा शो सदाबहार। दोस्तों, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और अगर उस सुबह की शुरुआत हो ताजा मौसम की जानकारी और मधुर संगीत के साथ तो पूरा दिन और भी खूबसूरत बन जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं राजधानी ईटानगर के आज का मौसम का हाल। अभी सुबह के वक्त ईटानगर में आसमान साफ दिखाई दे रहा है और धूप खिली हुई है, यानी फिलहाल मौसम काफी ब्राइट और प्लीजेंट है। अभी धूप अच्छी बनी हुई है और तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। मौसम साफ रहने के साथ हल्के बादल बाद में दिखाई दे सकते हैं। दोपहर को आज मौसम काफी गर्म भी हो सकता है, तापमान बढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। आसमान पूरी तरह साफ रहने के बजाय कभी कभी पार्टली क्लाउडी भी हो सकता है। दोपहर बाद से शाम को थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, आज के आईएमडी ने अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और टंडरस्टम का कुछ वार्निंग तो जारी नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि ईटानगर में निश्चित रूप से बारिश होगी, लेकिन स्थायी स्तर पर अचानक बादल बनने और गरज के साथ बौछार आने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

तो दोस्तों, ये था आज के ईटानगर का मौसम का हाल। चलिए सदाबहार कार्यक्रम में रुक करते हैं एक सदाबहार गीत की ओर। कभी कभी दिल के बाजार में कोई चीज पैसा से नहीं मिलती दोस्तों, वहां तो बस दिल के बदले दिल चाहिए। और इसी खूबसूरत अंदाज को अपने शब्दों और सुरों में सजाया है फिल्म सौदागर के इस यादगार गीत ने। साल 1991 की फिल्म सौदागर, जिसमें नजर आए थे दिलीप कुमार, राजकुमार, मनीषा कोयराला और विवेक मुसरन। फिल्म का संगीत तैयार किया था मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। तो आइए सुनते हैं सौदागर फिल्म का ये टाइटल ट्रैक, जिसे आवाज दी है सुखविंदर सिंह, मनहर उदास और कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सदाबहार। हम लौटेंगे एक और सदाबहार गीत के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: दोस्तों, आइए सुनते हैं सदाबहार कार्यक्रम का अंत में एक और खूबसूरत गीत फिल्म दीवाना से। आवाज दी है अलका याग्निक, कुमार शानू ने।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सदाबहार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभाग मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस कार्यक्रम में सेवा यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सबको धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।
3: भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा और राजगिरा सदियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। इन्हें श्री अन्न के नाम से आज व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने के बाद श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
4: मिलेट्स, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की, रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
3: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
5: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
7: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
8: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है, ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

0: योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
1: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, आईटी, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
2: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार 21 साल बाद वापस लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। आधुनिकतम नई तकनीक की ई बस सेवा से लगा करके सभी प्रकार की सर्व सुविधाएं और सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर, हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जन कल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
3: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
4: जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सूरज सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
5: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा, लोक सत्य में है। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के पहली बार भारत में आयोजित होने को भी सुर्खी बनाया है। पत्र के शब्द हैं, भारत को मिली रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2032 की मेजबानी यूसीआई पुणे में करे।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद कार्यक्रम हेलो ईटानगर के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का फिर से स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम हेलो ईटानगर में। दोस्तों, हम आपको इस कार्यक्रम में सबसे पहले टुडे इन हिस्ट्री में बताते हैं, इतिहास के पन्नों में आज के दिन भारत और दुनिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। साथ ही सुनवाएंगे कुछ दिलचस्प बातें और मधुर संगीत जो आपके मन को और तरोताजा कर देगी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट में। सबसे पहले देखते हैं भारत के नजरिए से। दोस्तों, 25 सितंबर को कई सारे महान व्यक्तियों और की जन्म जयंती और पुण्यतिथि है। आइए देखते हैं, 25 सितंबर 1916 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1916 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। वे भारतीय राजनीति और सामाजिक चिंतन से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्वों में गिने जाते हैं। वो भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में रहे और उनके विचारों ने स्वतंत्र भारत के राजनीतिक चिंतन में एक अलग स्थान बनाया। 25 सितंबर 1920 को ही प्रोफेसर सतीश धवन का जन्म हुआ। 25 सितंबर 1920 को श्रीनगर में सतीश धवन का जन्म हुआ था। वे महान भारतीय गणितज्ञ और एरोस्पेस इंजीनियर थे। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1972 से 1944 तक इसरो के अध्यक्ष रहे। इसरो के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उनका जन्म 25 सितंबर 1920 को श्रीनगर में हुआ था। सतीश धवन के नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संस्थागत और वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण प्रगति की। वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण नाम माने जाते हैं। 25 सितंबर 1939, अभिनेता निर्देशक फिरोज खान का जन्म। 25 सितंबर 1939 को बेंगलुरु में हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और निर्माता फिरोज खान का जन्म हुआ। उन्होंने कई दशकों तक भारतीय फिल्मों में काम किया और अभिनय के साथ साथ निर्देशन में भी अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी प्रमुख फिल्मों में अपराध, धर्मात्मा, कुर्बानी और वेलकम जैसे फिल्में शामिल है। 25 सितंबर 2020 को एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ और संगीत प्रेमियों के लिए 25 सितंबर 2020 का एक बेहद भावुक दिन रहा। इसी दिन महान पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिन्हें प्यार से एसपी भी कहा जाता था, उनका निधन हुआ। वे 74 वर्ष के थे। करीब 5 दशकों के अपने करियर में उन्होंने भारतीय सिनेमा की कई भाषाओं में हजारों गीत गाए और उन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों सहित अनेक सम्मान मिले और उन्हें पद्मश्री तथा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। आइए जानते हैं विश्व इतिहास में 25 सितंबर में घटी कुछ घटनाओं के बारे में। 25 सितंबर 1513, वास्को नूनेज दी बालबोआ ने प्रशांत महासागर को देखा। 25 सितंबर 1513 को स्पेनिश खोजकर्ता वास्को नूनेज दी बालबोआ ने पनामा के रास्ते प्रशांत महासागर का दृश्य देखा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड में इसे यूरोपीय खोजकर्ताओं द्वारा प्रशांत महासागर को पहली बार देखने की महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज किया जाता है। 25 सितंबर 1890, अमेरिका में सीक्वो नेशनल पार्क की स्थापना। 25 सितंबर 1890 को अमेरिकी कांग्रेस ने कैलिफोर्निया में सीक्वो नेशनल पार्क की स्थापना की। यह पार्क अपने विशाल और प्राचीन सीक्वो पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रों में से एक है। 25 सितंबर 1926,
दास व्यापार और दासता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समझौता 25 सितंबर 1926 को लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत स्लेवरी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य दास व्यापार और दासता को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना था। 25 सितंबर 1962 अल्जीरिया को गणराज्य घोषित किया गया। 25 सितंबर 1962 को अल्जीरिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया। इसी दिन पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया की औपचारिक घोषणा की गई। ये फ्रांसीसी उपनिवेशक शासन से स्वतंत्रता हासिल करने के बाद नए अल्जीरियाई गणराज्य के निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो दोस्तों, आज के इतिहास के पन्नों में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आनंद लेते हैं यह बेहद खूबसूरत गीत फिल्म ओम शांति ओम से।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम हेलो ईटानगर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 25 सितंबर को कौन सी दिवस मनाए जाते हैं। आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस है। 25 सितंबर को हर साल वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल फार्माक्यूटिकल फेडरेशन ने 2009 में शुरू किया था। यह दिन फार्मासिस्टों के स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान को पहचानने और लोगों को उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। 25 सितंबर की तारीख एफआईएफ की स्थापना 1912 में होने की वर्षगांठ से जुड़ी है। 2000

2026 की थीम है एम्पावरिंग परमासिस्ट फॉर हेल्दियर फ्यूचर्स, यानी स्वस्थ भविष्य के लिए परमासिस्टों को सशक्त बनाना। इस साल का फोकस परमासिस्टों को आवश्यक कौशल, मान्यता और स्वास्थ्य व्यवस्था में उचित सहयोग देने पर है, ताकि वे दवाओं की सही उपलब्धता, सुरक्षित उपयोग, बीमारी की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में अपनी भूमिका निभा सके। आज अंत्योदय दिवस भी है। भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस भी मनाया जाता है। ये दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। भारत सरकार के दस्तावेजों के अनुसार 25 सितंबर 2014 को इस दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अंत्योदय का सामान्य अर्थ है समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान, यानी विकास और कल्याण का लाभ उन लोगों तक पहुंचना जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। दोस्तों, आज 25 सितंबर है, तो आज के दिन दो महत्वपूर्ण दिवस के रूप में हमने आपको बताया, पहला वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे और अगला अंत्योदय दिवस। तो दोस्तों, आज के हेलो ईटानगर में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का हेलो ईटानगर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। दोस्तों, आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के जनसेवा के उपलक्ष्य में जनसेवा से देश सेवा का अगला श्रृंखला। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संवाद।
1: की धारा को वडनगर तक ले जाता हुआ जन हर गांव हर चौपाल पर लोगों से सीधा संवाद, सेवा हर पड़ाव पर सेवा से ठोस कार्य और संकल्प, सेवा से राष्ट्र निर्माण का संकल्प। 17 सितंबर को वाराणसी और वडनगर से एक साथ शुरू हुई इस यात्रा में 20 टोलियां उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, इन 10 राज्यों, 193 जिलों, 773 तहसीलों और 1159 गांवों से होकर गुजर रही है। वाराणसी से चली 10 टोलियां माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा, गोमती, सरयू, नर्मदा, राप्ती, संगम और बेतवा के नाम से सेवा का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। अब विश्वनाथ से हाटकेश्वर महादेव तक वाराणसी से चले सेवा यात्री उत्तर प्रदेश की पवित्र नदियों का जल लेकर हाटकेश्वर महादेव जी को वडनगर में जलाभिषेक करेंगे। हर पड़ाव पर एक सेवा, लगभग 25 प्रकार के सेवा कार्य हो रहे हैं, जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता, फल वितरण, मेडिकल केयर किट वितरण, अंगदान का संकल्प और एजुकेशन किट वितरण, ऐसे कई 25 जैसे सेवा के कार्य बीच में हो रहे हैं। स्वच्छता से स्वागत, यात्रियों के पहुंचने से 2 दिन पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा भी।
0: ये थे सेवा संकल्प यात्रा में शामिल एक यात्री जो इस यात्रा से संबंधित जानकारी दे रहे थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से भी बातचीत की थी। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान ही राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से

0: बादल छाए रहने का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। और जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का सामना नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदक 17 हो गए हैं, जिनमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi will interact today via video conference with participants of Seva Yatra travelling from Varanasi in UP to Vadnagar in Gujarat under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. Now we go over live to the function where Prime Minister is interacting with the participants of the Seva Yatra.
2: पूर्वा विधानसभा के
3: नहीं, पहले ये तो बताइए आप सब ठीक है ना?
2: जी जी हम लोग सभी बच्चे हैं।
3: कोई तकलीफ शरीर में? कोई बीमार तो नहीं हुए?
2: नहीं,
3: हर दिन इतनी गाड़ी चलानी पड़ रही है तो परेशानी तो होती होगी।
2: नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं होती है, हमारे यात्रियों के अंदर इतना ऊर्जा है, इतना प्यार आपके लिए है कि बहुत ऊर्जा के साथ सभी आगे बढ़ रहे हैं प्रतिदिन।
3: अच्छा आप अलग अलग गांवों में जा रहे हैं और कई जगह रात रुकने का अवसर भी मिलता है, गांव के लोगों के बीच रहने का, उनके आतिथ्य भाव का और उनके परिवार के साथ जुड़ने का जो अनुभव आपको इन दिनों हुआ है, क्या ऐसे कुछ अनुभव आप लोग बता सकते हैं?
2: जी जी मैं औरैया के विधुना गांव में, एक गांव में रात्रि विश्राम के लिए गया था, चिल्लू जी थे। मैं जैसे ही हम लोग 4-5 सेवा यात्री वहां पहुंचे उनके यहाँ, उनके इतनी उत्साह, इतनी खुशी से हम लोग का स्वागत फूल छिड़क कर किया। और उनके एक छोटा बच्चा था, बोला भैया भैया भैया लोग मोदी जी के गांव जा रहे हैं, भैया जी मोदी जी के गांव जा रहे हैं। फिर उन्होंने हमें अंदर बुलाया और बैठे हम लोग, साथ में हम लोग खाना भी खाया। वहाँ का ट्रेडिशनल जो फूड है, जो कि आलू मट्ठा की सब्जी और बाजरे की रोटी, उन्होंने हम सभी को अपने साथ बैठ के खिलाया।
1: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has highlighted India's expanding engagement with the global economy and its efforts to strengthen participation in global value chains and supply chains. Addressing the leadership dialogue at the 13th PAFI Annual Forum 2026 in New Delhi, Mr. Goyal said, India is negotiating trade and economic partnerships from the position of an economy that is expected to grow into a $30 trillion economy. The fourth edition of the UP International Trade Show will begin today at the India Expo Center and Mart in Greater Noida, Uttar Pradesh. Union Home Minister Amit Shah and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath will inaugurate the five-day event. The Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has proposed nationwide ban on manufacture and sale of analog product as paneer. In a notification, the FSSAI stated that the products already licensed or registered under analog in dairy context category shall discontinue the use of the term paneer in their nomenclature, labeling or marketing. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Vidarbh today. According to the weather agency, heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh, Kerala, Mahe and Telangana for the day. For Delhi, the weather agency has forecast a partly cloudy sky today. The IMD said the maximum temperature in national capital will be around 33 to 35 degrees Celsius, while the minimum temperature will hover around 22 to 24 degrees Celsius. In Asian Games, the Indian duo of Kamaljeet and Suruchi Singh stormed into the final of the mixed team 10-meter air pistol event after topping the qualification with a strong performance today in Nagoya, Japan. And defending champions India held Azerbaijan to a 2-2 draw in the 8th round of the FIDE Chess Olympiad in Samarkand yesterday. And that is the end of this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 8वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा गांव की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार और कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 25 वर्षों का जन सेवा का सफर पूरा हुआ है। इसमें 3 टर्म उनके लगभग 13 साल मुख्यमंत्री के तौर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर का रहा है और पिछला 12 साल देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काफी अनुभव भरा रहा है। इस दौरान गवर्नेंस में काफी परिवर्तन हुए, आम जनता तक काफी लाभ की योजनाएं लाई गई हैं। इसी के तहत जन सेवा से देश सेवा सीरीज के तहत आज हम आपके सामने उपस्थित हैं और हम बात करेंगे कि पिछले लगभग 12 वर्षों में देश के गांवों में क्या कुछ बदलाव आया है और वो बदलाव से जो ग्रामीण है हमारे हैं वो कितने लाभान्वित हुए हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डीएस मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत मिश्रा साहब आपका।
2: धन्यवाद।
1: और साथ में हमारे साथ एसपी सिंह भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा साहब आपके पास ही आता हूँ, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है सेक्रेटरी के तौर पर, केंद्र में काम करते हुए, राज्य में काम करते हुए आप बारीकी से समाज के अंतिम वर्ग के लोगों के साथ न जुड़े रहे बल्कि आपने काम किया। पिछले 12 वर्षों में अगर हम गांव की बात करें, क्योंकि गांव जो है भारत की विकास यात्रा में हमेशा से केंद्र में रहे हैं, तो पिछले 10-12 वर्षों में क्या कुछ गांव में आपको परिवर्तन देखने को मिला है?
2: देखिए, पूरा का पूरा राजन साहब, गांव के विकास के बारे में सोच में तब्दील हो गई है। पहले जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, पहले जैसे गांव को हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते थे तो गांव में एक खंभा लग गया, सरहद में खंभा लग गया तो मान लेते थे कि गांव इलेक्ट्रिफाई हो गया। सड़क गांव में कहीं एक जगह पहुंच गई तो गांव आपकी सड़क से जुड़ गई। कुछ लोगों को आपने मकान दे दिया इंदिरा आवास योजना में तो आप मान लिया कि उनको गांव में लोगों को मकान मिल गया। पानी के लिए हैंडपंप लगा दिया आपने तो हैंडपंप लगाने के बाद आपने मान लिया कि वहां पे हैंडपंप से सब आसपास के लोगों को पानी मिल जाएगा। अब उस सोच में बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। अब क्या है कि अब सेचुरेशन के तरफ, जैसे गांव में अगर सड़क जानी है तो गांव की जो भी वहां पे आवश्यक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, न केवल हर टोले को सड़क जोड़े बल्कि वहां पे जो बाजार है, वहां का जो स्कूल है, वहां का जो मंडी है, हर एक को गांव की सड़क ले जाकर के जोड़ दें। हर व्यक्ति को जो कि गरीब आदमी है उसके पास मकान नहीं है, हर एक के लिए आवास हो। जो जल है वो जल हैंडपंप से नहीं बल्कि हर घर में जल पहुंचे, यानी हर घर में नल हो और हर नल में जल हो। गांव में एक बहुत बड़ी समस्या लोगों को होती थी कि अब उनकी जो खेत बाड़ी है तो वो तो खसरा खतौनी था उनके पास
1: जी,
2: लेकिन जहां वो रहते थे उसका उनकी आबादी के इलाके का कोई भी स्वामित्व नहीं था। अब घरौनी जो स्वामित्व योजना है उसके तहत उनके घर का भी एक रिकॉर्ड हो और उसके माध्यम से अगर वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उनको लोन भी मिल सकता हूँ। तो एक पूरी पूरी सोच में परिवर्तन आ गया। मैं कहूंगा आप स्वच्छ भारत मिशन में जैसे पहले
1: जी,
2: अब मैं तो बहुत नीचे लेवल से एसडीएम से लेकर के मैं उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी तक रहा, पहले हम थोड़े से शौचालय बना देते थे, ये कहते थे गरीबों को शौचालय मिल जाएगा और शौचालय जहां बनता था वहां कोई भूसा रख रहा है, कहीं कोई बकरी बांध रहा है, कुछ और काम कर रहा है। अब लोगों के सोच में सुधार हो गया, मैंने एक प्रकार से जन आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो कार्यक्रम चला
1: जी,
2: उसमें 100% शत प्रतिशत सारे के सारे गांव हमारे ODF ओपन डिफिकेशन फ्री हो गए। उसके बाद ODF प्लस हो गए। अब वहां पे वेस्ट के मैनेजमेंट की भी बात हो गई, वो भी काफी काम हो गया। अब

0: पर ही नहीं है कि एक दो सामान लग गया और हमने कह दिया कि जी वहां पर नल पहुंच गया या वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच गई या बिजली विद्युतीकरण हो गया। दरअसल जीवन की गुणवत्ता और बेसिक सर्विसेज का सबको एक्सेस मिले, सबकी वहां तक पहुंच हो और वो उनके उपयोग में आए, यहां तक मामला पहुंचा है। आपने कई गांवों का दौरा किया है, रिपोर्टिंग के दौरान किया है और संपर्क में रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो गुणवत्ता में परिवर्तन आया है गांवों में, लोगों की लाइफस्टाइल में, उससे देश को आगे बढ़ने में कितनी मदद मिली है?
1: देखिए, देश में ग्रामीण विकास हर सरकार की प्राथमिकता में रहा होगा, लेकिन सोच का, जैसे भी मिश्रा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो सोच में परिवर्तन आता है कि आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, सरकार कैसे पहुंचे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में गांव गरीब ही रहा है। गरीबी क्यों है और गांव की स्थिति क्या है? गांव उसे कहते थे जो कनेक्टिविटी का अभाव हो, जहाँ पे पक्की छत वाले किसी के पास घर न हो, मतलब बुनियादी सुविधाओं का एक तरह से अभाव होता था। उन सारे अभाव किया, उस जो अंतर है उसे कैसे पाटा जाए, ये काम बखूबी उन्होंने किया है। चाहे वो कनेक्टिविटी के अभाव में आप कह सकते हैं कि सूचना का प्रसार हुआ हो, इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, सड़कों के थ्रू, ग्रामीण सड़कें, हमें लगता है कि कोई गांव अब नहीं बचा है। 2028 तक ये प्लान बना है कि हर छोटे बड़े जहां कहीं भी हो, एक तो पुरानी सड़कों का उन्नयन हुआ, नई सड़कें बनी, हर गाँव और हर कस्बा और हर बस्ती को जोड़ने का काम किया। दूसरा काम की जो बुनियादी सुविधाएं गाँव को चाहिए होगी वो होती है हर सिर को पक्की छत, यानी हर एक को मकान देना, मकान किसे देना, जो मकान पक्का मकान न बना सके, ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उन्हें चिन्हित करके वहां तक ये लाभ पहुंचाना। दूसरा, मकान भी कैसा हो, मकान पहले भी इंदिरा आवास योजना के नाम पर मकान बना करते थे, अब मकान कैसे बनता है, मकान की वो बुनियादी सुविधाएं, उनको पानी की सुविधाएं, हैंडपंप से नहीं, नल के जल, जल जीवन मिशन इसका एक सबसे नायाब उदाहरण है, जो हर घर तक नल से और जिसमें शुद्ध पानी पहुंचाया जाए, तो एक तो हैंडपंप से मुक्ति मिलेगी और हर घर तक नल जाएगा। दूसरा, हर घर में लट्टू जले, लट्टू का मतलब बल्ब जले, यानी बिजली जाए, और हर घर तक बिजली जाएगी तो गांव में बिजली हो, यानी वो पूरा गांव विद्युतीकरण हो जाएगा। इसी तरह से स्वच्छता सबसे बड़ी समस्या गांव की थी स्वास्थ्य को लेके, और स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा जो कारण था खराब होने का, बीमारी होने का, गरीब होने का, कुपोषण सबसे बड़ी वजह थी, स्वच्छता का अभाव, शौचालय का अभाव। तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक शौचालय बनाने का काम और उस शौचालय का प्रयोग करना, ये जो प्रवृत्ति में बदलाव, हमारे मिश्रा जी ने बहुत सही कहा कि प्रवृत्ति और सोच में जो बदलाव आया, हैबिट लोगों की चेंज हो गई कि नहीं हमें बाथरूम में जाना है, हम शौचालय जो हमारे लिए बनाया गया, जो हमने बनाया अपने लिए, उसका उपयोग किया जाए, लोगों को यह बताना कि इससे कितना फायदा है, इसके न होने से कितना नुकसान हो रहा था। दूसरा, पानी, जल जनित बीमारियों का प्रकोप होता था, खासतौर से इस मौसम में देखिए तो पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार का एक जो टाइफाइड, मतलब जल जनित बीमारियों का एक तरह से प्रकोप होता था, अब उसमें कमी आई है। इवन देन की लोगों के रोग नहीं होगा, कुपोषण नहीं होगा, तो गरीबी नहीं आएगी, गरीबी की बड़ी वजह यही सब थी। तो गरीबी को कम कैसे किया जाए और गाँव को कैसे उन्नत बनाया जाए, और हर घर में जो माँ बहने खाना बनाया करती थी वो उपले से, लकड़ी से, यानी धुआं, तो धुआं रहित चूल्हा यानी कुकिंग गैस LPG हर घर तक सिलेंडर पहुंचाना, उज्ज्वला योजना, ये ऐसी योजना है जिससे माँ बहने आज अगर कहें तो दिल से धन्यवाद देती हैं इस सरकार को, महिलाओं के लिए शौचालय और खाना पकाने के लिए उनको स्वच्छ गैस, जो LPG कनेक्शन और सिलेंडर मिला है, ये दो चीजें अगर कहें तो महिलाओं का उत्थान हुआ, सशक्तिकरण हुआ, उन्हें काम मिला। दूसरी चीज की आप कहेंगे कि मनरेगा जैसा काम गांव में, हर गांव में गरीब से गरीब, जो सबसे निचले तबके पे, जिसे कोई काम नहीं मिल सकता है या कोई काम करना चाहता है लेकिन उसके हाथ में काम नहीं था, गांव के लोगों के साथ है कि खेती के बाद कोई काम नहीं है, भूमिहीन मजदूरों के लिए तो और भी मुश्किल है, कोई उसके लिए काम नहीं है, ऐसे में उन्होंने क्रिएट किया, इस सरकार ने उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को काम दिया जाए, ये मनरेगा के तौर पर एक योजना है।
0: बिल्कुल, इन सब विषयों पे सिंह साहब हम अलग से बात करेंगे। आप दोनों ने एक 360 डिग्री पिक्चर, जो गाँव की सोच में बदलाव आया है, लोगों की जो प्रवृत्ति में बदलाव आया है, इस पर हमने चर्चा की। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है, इस पर थोड़ी डिटेल में अब हम चर्चा करेंगे। दरअसल ग्रामीण भारत में खुले में शौच की समस्या जो थी, केवल एक स्वच्छता का विषय नहीं थी, बल्कि स्वास्थ्य, महिलाओं की गरिमा और बच्चों के भविष्य से भी जुड़ी हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने ग्रामीण जीवन में कहें तो एक तरीके से बिहेवियरल और सोशल चेंज पैदा किया है, इसे आप कैसे बताएंगे?
2: बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2014 का वो दृश्य याद करी, जब उन्होंने कहा था कि पूरे देश को हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150 साल

0: जब मनाएंगे जन्म दिवस का, तो सबसे बड़ी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी कि हम देश को स्वच्छ कर दें, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए। और तब लोगों को लगा था कि ये संभव ही नहीं है। आज आप देखिए लगभग 12.2 करोड़ से ज्यादा जो है शौचालय गांव-गांव में बने हैं, करीब 3 लाख से ज्यादा कम्युनिटी शौचालय, जहाँ पे कम्युनिटी का होता है उसके बने हैं। आज न केवल शौचालय ही नहीं बने बल्कि शौचालय का उपयोग हो रहा है, मैंने लोगों के व्यवहार में विचार में उनके परिवर्तन आए कि हम शौचालय बनेगा तो उससे क्या लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी चीज आपने कहा गरिमा, जो हमारी माताओं बहनों को सड़क पे जाना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था, उनको सांप से डर है, कोई उनकी सुरक्षा उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा से उसको कॉम्प्रोमाइज है, रात के शाम के वक्त या सुबह के वक्त वो जाती थी, दिन भर अपने पेट में उस मल को रखती थी जिससे बीमारियां फैलती,
1: पीड़ा में रहती थी।
0: तो आप सोचिए कि उसको लेकर के ऐसी तमाम सारी स्टडीज हैं जो स्टडी कराएंगे, उसके बाद अब लगता है कि इससे जो है हमारे जो मृत्यु दर है बच्चों का, चाइल्ड डेथ के बारे में, 5 साल के डेथ के बारे में, लोगों के पोषण के बारे में, हर चीज में सुधार हुआ है। जो हमारी डायरियल डिजीजे थी, इतने सारे बच्चों का डेथ होता था उसमें, जो मैंने वाटर बॉर्न डिजीजेस हुआ करती थी क्योंकि उनका जो फीकल स्लज था वो उससे मिल जाता था, तो उन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। अब जो इसके बाद सरकार ने न केवल ODF किया, 100% गांव तो ODF हो गए, ODF प्लस यानी उसको शौचालय न केवल बने बल्कि शौचालय का उपयोग भी हो, और उसके ऊपर जाकर के जो वेस्ट का मैनेजमेंट, आज हर गांव में वेस्ट मैनेजमेंट, जो वहां पे ग्रे वाटर जिसमें तमाम सारे मच्छर पैदा होते हैं, इसको लेकर के मलेरिया से लेकर के तमाम किस्म की बीमारियां होती हैं, डेंगू की बीमारी होती है, उससे लोगों को निजात मिले। तो ये पूरा का पूरा एक स्वच्छता का अभियान जो चला, लोगों के लिए अकल्पनीय है कि ऐसा सक्सेसफुल कार्यक्रम हमारे देश में चलाया गया और उसका रिजल्ट सबके सामने है।
1: बिल्कुल, स्वच्छता मिशन के साथ साथ सिंह साहब अभी आप जल जीवन मिशन की भी बात कर रहे थे कि सिर्फ एक हैंडपंप गाड़ देना किसी गांव में ही जल पहुंचाना नहीं था, लंबे समय तक ग्रामीण महिलाओं और परिवारों के लिए रोज पानी लाना जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा था, इसमें चुनौतियां थी और बहुत वक्त भी उनका बर्बाद होता था। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक जल नल से पहुंचाने के प्रयास ने ग्रामीण परिवारों खास करके महिलाओं के जीवन को बहुत आसान बनाया है, और गांव में हर घर में नल कैसे पहुंचा है और हर नल में जल कैसे आया है, आइए सुनते हैं जल जीवन मिशन पर एक रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, बेहतर जीवन की शुरुआत कई छोटी छोटी जरूरतों से होती है, इनमें सबसे जरूरी है पीने का साफ पानी। गाँव में लंबे समय तक बहुत से परिवारों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था, खासकर महिलाओं को घर के लिए पानी लाने में काफी समय और मेहनत लगती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य है हर ग्रामीण परिवार के घर तक नल से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना। आसान भाषा में कहें तो पहले जिस पानी के लिए परिवार को घर से बाहर जाना पड़ता था, उसे नल के जरिए घर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जल जीवन मिशन केवल पाइप बिछाने की योजना नहीं है, इसका उद्देश्य गांवों में पानी की नियमित और सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए गांवों में पानी के स्रोत, पाइपलाइन, पानी की टंकियों और दूसरी जरूरी सुविधाओं को विकसित किया जाता है। श्रोताओं, घर में नल से पानी आने का मतलब केवल सुविधा बढ़ना नहीं है, इससे परिवार का समय भी बचता है, बच्चों को पानी लाने के बजाय पढ़ाई और दूसरी गतिविधियों के लिए समय मिल सकता है, महिलाओं की रोजमर्रा की मेहनत कम हो सकती है और परिवार को घर के पास पानी उपलब्ध हो सकता है। इस काम में गांव के लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत और स्थानीय समुदाय पानी की व्यवस्था को बनाए रखने और उसकी निगरानी में भूमिका निभाते हैं, यानी पानी की सुविधा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि गांव के लोगों की भी साझा जिम्मेदारी है। हर घर बेहतर जीवन की बात करें तो इसके साथ कई दूसरी योजनाएं भी जुड़ी हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गांवों में स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांवों को बेहतर सड़कों से जोड़ने का काम करती है। ग्रामीण विद्युतीकरण और ज्योतिग्राम जैसी पहलें बिजली की पहुंच और आपूर्ति को बेहतर बनाने से जुड़ी हैं। वहीं स्वामित्व गांवों में लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति से जुड़े अधिकारों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की दिशा में काम करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर केंद्रित है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास पर जोर देता है। श्रोताओं, इन प्रयासों का उद्देश्य अलग अलग जरूर है लेकिन लक्ष्य एक ही है, गांव में रहने वाले परिवारों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके जीवन को आसान बनाना। जब घर तक साफ पानी पहुंचे, गांव तक सड़क पहुंचे, बिजली मिले, स्वच्छता की सुविधा हो और लोगों को अपनी संपत्ति तथा सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिले।

0: गांव का जीवन भी तेजी से बदलता है। यही है हर घर बेहतर जीवन की भावना, जहां विकास का मतलब केवल बड़ी इमारतें या बड़े शहर नहीं, बल्कि गांव के हर परिवार तक जरूरी सुविधाओं की पहुंच भी है।
1: आपको क्या लगता है कि नल का कनेक्शन देना तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ही, उसके साथ नियमितता और पर्याप्तता के साथ गुणवत्ता वाला पानी भी उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी सफलता रही है सरकार की। अब जल जीवन मिशन के सामने क्या कुछ बड़ी चुनौती है या अगला स्टेप क्या है?
2: देखिए, पानी पहुंचाना एक है, लेकिन पानी तो पहले भी लोग पिया करते थे, बिना पानी के तो कोई जी नहीं सकता। पानी पहले भी पहुंचता था, लेकिन शुद्ध पानी पहुंचाना और पर्याप्त पानी पहुंचाना, जितनी जरूरत है एक व्यक्ति की 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। और नल से जब पानी जाएगा टैंक पे चढ़ के, वो साफ होगा और स्वच्छ पानी जब लोगों के घर तक पहुंचेगा तो उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर होगी, स्वस्थ होंगे वो। मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो जल जनित बीमारियां होती हैं, जो पानी जम जाता है उससे मच्छर पैदा होते हैं और पानी में कुछ ऐसी चीजें चली जाती हैं, ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरियल और फंगल चीजें चली जाती हैं, अगर आपके पेट में चली जाए तो डायरिया हो जाए, ढेर सारे तरह के रोग होंगे। और अगर विपत्ति आनी है और गरीबी आनी जिसको कहते हैं ना, तो वो उसके लिए अगर रोग हो जाए, किसी को बीमारी हो जाए, तो वो अपने आप गरीब हो जाता है, गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा। तो अगर स्वास्थ्य को ठीक कर दिया गया तो एक पानी शुद्ध दे करके इस सरकार ने लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है इस सरकार ने, कि कम से कम बीमारी नहीं होगी और गरीबी से निजात मिलने में होगा। दूसरा, बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं होंगे और हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, हमारे ग्रामीण बच्चों की उत्पादकता बढ़ेगी, हमारी सोच बढ़ेगी। तो जो ये सोच थी सरकार की पानी को लेके, वो सोचिए कि 81% गांव तक, इतना बड़ा देश जिसमें 6.5 लाख से ज्यादा गांव हो, और अगर देखा जाए तो बस्तियों को अगर गिनती कर लिया जाए तो हैबिटेट्स को तो ये करीब 10 लाख के आसपास संख्या होगी, और जरा समझिए 2.5 लाख के आसपास पंचायतें हैं और इनमें 81% 82% लोगों तक नल का सप्लाई की लाइन बिछ गई, और हमें लगता है कि 70 से 75% तक पानी सप्लाई भी होने लगा है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में हम सबको पानी नल से देने लगेंगे। नल कहने में बड़ा आसान सा दिखता है, लेकिन कितना खर्च हुआ होगा, कितनी बड़ी सोच रही होगी। और इसका प्रयोग प्रधानमंत्री ने, जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्रित्व काल में अपने गुजरात में इन्होंने इसको लागू करके देखा, जहां पर वाटर डिफिसिट स्टेट्स है, जहां पर पानी की कमी, पीने की पानी की कमी, सिंचाई की कमी, हर तरह के पानी की कमी थी, शुद्ध पानी जल की तो बड़ी मुश्किलें थी। उस स्टेट को नर्मदा बांध से सरोवर, इतने बड़े बड़े बांध बने और नदियों में जो बरसात का पानी हुए, उसे रोक रोक करके जगह जगह चेक डैम बना के वहां से बिजली पैदा करना, पानी को साफ करना, टैंक तक पहुंचाना और साफ कर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना, लोगों के खेत तक पानी पहुंचाना, यानी कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है गांव की। तो गांव को लेके जो कांसेप्ट हमारे प्रधानमंत्री का है, वो हमें लगता है कि बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा नेता मिला है। अभी एक बात और कह रहे थे मिश्रा जी, मैं कहूं देश का नेता खुद झाड़ू लेके अगर मैदान में उतर जाए कि सफाई मैं करूंगा, तो यह देश स्वच्छ ही होगा। और देखिए कितनी सफाई हो गई कि कोई व्यक्ति जरा सा भी हिचकता नहीं सफाई करने में। आप जरा गाड़ी में आप कभी चल रहे हो, बिहेवियरल चेंज कैसे आता है, हमें नहीं लगता कि आप कोई चीज, एक कागज का टुकड़ा भी खिड़की से नीचे कोई फेंकता हुआ मिल जाए, अगर कोई फेंकता हुआ मिल जाए तो पीछे वाली गाड़ी जाकर के उसे रोकती है, क्यों ऐसा किया, उसे अपराध बोध होता है। इस तरह की सोच में परिवर्तन, प्रधानमंत्री या इस देश का जब नेता इस तरह का बिहेव करता है, इस तरह का लीड करता है, तो आम जनता तक बात पहुंचती है और लोग उस पर अमल करते हैं।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बिल्कुल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आज हम ये नजारा नहीं देखते कि गाड़ी से किसी ने केले का छिलका फेंक दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया, तो ये स्वभाव में जो परिवर्तन आया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या हित में नहीं है आम जनता के, ये बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज है। और साथ में मिश्रा जी, आपसे महत्वपूर्ण सवाल अब मुझे ये पूछना है कि 2047 में हम विकसित भारत का लक्ष्य देख रहे हैं, उसे प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं और गांवों की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है, बिजली गांवों में पहुंचाया जाना, क्योंकि डिजिटाइजेशन हो चुका है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, अगर बिजली पहुंचाने की सोच सरकार की आज से 10 साल पहले नहीं होती तो आज शायद गांव में हर हाथ में मोबाइल नहीं होता। तो बिजली की उपलब्धता गांवों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को किस तरीके से बदला है, इसे आप कैसे देखते हैं?
3: देखिए, इसके लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी आगे, दोबारा मैं फिर आपको ले जाऊंगा 15 अगस्त के स्पीच में जो उन्होंने कहा था कि देश में ऐसे तमाम सारे गांव हैं जो आज भी जो सरकारी डेफिनेशन है उसके मुताबिक वहां पे बिजली नहीं पहुंची है, तो कुछ जगह तो बिजली पहुंच भी नहीं सकती, इतनी दुरूह जगह पे पड़े हुए, तो उसके तो हमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की जरूरत है जहां पे बिजली नहीं थी, और उसको अप्रैल 2018 तक सब जगह 100% बिजली पहुंचा दी गई। अब सवाल है बिजली पहुंचाना सरहद में, उससे क्या गांव में बिजली लोगों को मिलने लगती है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती है। कुछ लोगों के पास बिजली का जब खंभा ले जाकर के उनको अपने घर में बिजली लेने के लिए, गांव में कुछ दो चार लोग जो संभ्रांत लोग हैं उन लोगों के पास बिजली पहुंच जाती है, बाकी सब लोग इससे वंचित रहते हैं। एक पूरी मुहिम चली सौभाग्य योजना, उस सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली पहुंचा रहे, जैसे हर घर में नल और हर नल में जल है तो हर घर में बिजली और हर बिजली में से बल्ब उसको जलेगा। मैंने हर घर में जो बच्चे, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, देखे छोटे बच्चे थे हम ढिबरी में पढ़ते थे
1: जी,
3: लालटेन में पढ़ते थे। अब लालटेन ढिबरी से पढ़ने से पढ़ तो लेते थे लेकिन हमारी आंखों में नुकसान पड़ता था, जितना हम पढ़ सकते थे बहुत जल्दी थकान हो जाती थी, उतना नहीं पढ़ सकते थे कि उसकी उतनी पर्याप्त रोशनी नहीं है। अब लोगों को गांव-गांव में घर घर में बिजली पहुंचाना और वहां पे लाइट हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इंचित किंचित कहीं जो बचे हैं, जो लोग नहीं सामने आएंगे, उनको RDSS योजना में कहीं कहीं उनकी पूरी हो जाएगी। और ये उपलब्धि केवल पढ़ने के लिए नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम बिजली गांव में पहुंचाते हैं आप ये समझ लीजिए कि वो हमारा इंडस्ट्री 1.0 था और 2.0 3.0 मतलब वो अगले लेवल पे जो ग्रामीण उद्योग है वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे। जब घर में बिजली पहुंचेगी तो तमाम सारी और चीजें जो हमारे सुख सुविधाएं की चीजें हैं, क्यों शहरी इलाके में लोग रहे, उनके लिए अगर उनको टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध हो, उनको जो है अन्य सुविधाएं जो बिजली चलती है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, गांव में क्यों नहीं उपलब्ध हो। बच्चे जो तमाम सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब बिजली पहुंच गई तो वहां के माध्यम से आज डिजिटली बहुत सारा जो कार्यक्रम होता है वो सारे के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अब गांव में जो PSC है वो गांव के PSC को सीधे कनेक्ट करके उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो बिजली ने पूरी जिंदगी में सुधार कर दी, ग्रामीण व्यवस्था में सुधार कर दी और ये हमारा जो लाभ मिला। और मुझे लगता है इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है जो गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने वहां एक ज्योतिर्ग्राम योजना
1: जी जी
3: उस ज्योतिर्ग्राम योजना में क्या किया उन्होंने कि ग्रामीण का जो एग्रीकल्चर का फीडर है उसको जनरल फीडर से अलग कर दिया। और फीडर के अलग करने से क्या हो कि बिजली का सही प्रकार से आप उपयोग करने लगे, उससे आपको घर भर में बिजली जो है जो 8-9 घंटे मिलती थी वो 20-21 घंटे बिजली मिलनी चालू हो गई, तो बिजली की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। आज तो बहुत सारा जो बिजली के नाम पे आज सोलर लाइट तो इतना उपयोगी हो गई गांव-गांव में, जो है गांव में सोलर लाइट उपयोगी। पहले हम लोग जो सोलर से केवल कुछ कुकिंग का काम कर लेते थे, सोलर के कुछ लैंप को लालटेन के तौर पे उसका यूज कर लेते थे, आज सोलर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हथियार बन गया है। सोनभद्र जिला जो है इतना ज्यादा दूर दूर तक वहां पे गांव फैले हुए, बहुत सारे जगह बिजली के खंभे वहां नहीं पहुंच सकते, पहुंचा बहुत मुश्किल होगा, काफी उसमें एक्सपेंस होगा, बट सोलर के पहुंच करके सोलर के माध्यम से बहुत सारी चीज कर सकते हैं, वो गोबर गैस को यूज करके इसको कर रहे हैं। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव जो हमारे लोगों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
4: सिंह साहब, जैसा अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 13 वर्षों का उनका वहां का अनुभव रहा, उससे उस अनुभव को जो उन्होंने यहां पर कई योजनाओं में लागू किया है, एक गवर्नेंस के तौर पर कहें, योजनाएं बनाकर कहें, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि स्वच्छता हो गया, पानी मिलने लगा, बिजली पहुंच गई, लेकिन गांव की एक्सेसिबिलिटी अगर सड़क ना रहे प्रॉपर तरीके से तो फिर कैसे काम चलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो गांव को बाजार से जिसने जोड़ने का काम किया, इसके बारे में आपकी क्या राय?
2: देखिए, गांव की सबसे बड़ी मुश्किल, मैंने कहा ना, सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति थी कनेक्टिविटी का अभाव, चाहे सड़कों का अभाव हो चाहे संचार साधनों का अभाव रहा हो, ये दोनों अभाव से कटा हुआ जो एरिया होता था हम उसे गांव बोल दिया करते थे। तो जो कनेक्टिविटी को तैयार करने का सबसे बड़ा मुद्दा था, हमारे 2000 में ही अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ग्राम सड़क योजना करके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना करके योजना चलाई थी और उसे जो 1, 2, 3, 4 चरणों में ये पूरे देश में बनी, आज कह सकते हैं कि करीब करीब 7-8 लाख किलोमीटर से ऊपर की बन चुकी है हमारी सड़कें। तो जरा समझिए कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी सड़कों का जाल बिछ गया, उससे फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि गांव में जो खेतिहर किसान, छोटा किसान है, मान लीजिए थोड़ी सी सब्जी उगा लिया, थोड़ा दूध या कुछ और अपना तैयार कर लिया, और जो ऐसी चीजें जो बाजार में बिक सकती हैं तो वो अपनी साइकिल पर, अपने मोटरसाइकिल पर, अपने संसाधनों से, अपनी गाड़ी से, रिक्शे से, जो भी उसके पास साधन है, या किराए के ट्रैक्टर से वो बाजार को पहुंचा लेता है, तो उसको एक काम मिल गया। दूसरा सबसे बड़ी फायदा यह हुआ कि स्वास्थ्य का, मिश्रा जी ने कहा कि अभी तो डिजिटली कनेक्ट होकर के हम कहीं से भी कनेक्ट होकर के हमें सुविधाएं मिल जाती हैं। हम कहते हैं कि गांव का आदमी, मुझे वो दिन याद है कि जब लोग बीमार होते थे तो सड़क नहीं होती थी, तो अब चारपाई पर लेकर के जो भी अस्पताल या डॉक्टर होता था उससे इलाज कराते थे। आज स्थिति नहीं है, आज स्थिति यह है कि आप किसी भी 100-200 किलोमीटर तो बड़ी आसानी से आप यात्रा कर ही सकते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, क्योंकि सड़कों की गुणवत्ता इतनी बढ़िया है कि हमें लगता है कि जो PMGSY की सड़कें हैं वो किसी भी शहर की सड़क से कमजोर नहीं है, क्योंकि जो इसका मानक है बनाने का वो बड़ा सख्त है। जो एजेंसी बनाती है उसी को 10 साल तक के लिए मेंटेनेंस का भी होता है, उसका पेमेंट रोक लिया जाता है, कुछ तभी दिया जाएगा जब वो मेंटेनेंस कंप्लीट करेगा, मेंटेनेंस का हिस्सा भी उसका जोड़ दिया जाता है। यानी इतनी वैज्ञानिक तरीके से ये सिस्टम बनाया गया है कि उसमें बेईमानी की चांसेस बहुत कम है।
1: आपने मिश्रा जी देखा होगा कि लोगों के पास अपनी

0: संपत्ति होती है, अपना जमीन होता है, लेकिन प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स उनके पास बहुत स्पष्ट नहीं थे। तो स्वामित्व, गांव में संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व योजना जो है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें।
1: देखिए, स्वामित्व योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि गांव में जो खेती वाली जमीन होती है उसका तो खतौनी है, खसरा है, उसका नक्शा बना हुआ है। अब तो आज वो सारा सारा डिजिटाइज भी हो गया है, लेकिन जो आबादी की जमीन थी, आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड किसी के पास नहीं था। नतीजन लोगों की आपस में लड़ाई होती थी, मैं तो देखता था फौजदारी होती थी। आज उनको इंडस्ट्री लगानी है, घर पे अपने कोई नया काम करना है, तो उसके लिए उनके पास अगर रिकॉर्ड नहीं है तो फिर वो बैंक से लोन भी नहीं ले सकते हैं। आज जो देखे जैम का जो सबसे बड़ा जो ट्रेनिटी आई है, तो जनधन योजना में हर आदमी का अपना खाता हो गया है, लेकिन खाते में बैंक वाला आपको लोन नहीं देगा आपका रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जो प्रारंभ किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व की योजना, जिसको हम लोग घरौनी भी कहते हैं, खतौनी कहते हैं जो खाता से हो गया, तो घरौनी कहते हैं घर से हो गया। इसमें ड्रोन के द्वारा सर्वे करके पूरे गांव का सर्वे कर,
0: टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल,
1: बिल्कुल बिल्कुल, ड्रोन से सर्वे करते हैं, वहां पे नीचे हर एक का जो लाइनिंग खींच देते हैं उसका सर्वे करते हैं, उसकी फिर ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं, और ग्राउंड ट्रूथिंग करने के बाद गांव सभा का मीटिंग बुला करके वहां पे सबको बुला करके दिखाते हैं, और दिखा कर जब सब सर्टिफाइड हो गए तो उसके बाद उनके जो है इसके जो स्वामित्व के जो डॉक्यूमेंट है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में जब मैं मुख्य सचिव था इसको मैंने बहुत टॉप प्रायोरिटी लिया। आज अगर देखें कि पूरे देश भर में लगभग 3 करोड़ के आसपास, 2.7 करोड़ के आसपास जो आज रिकॉर्ड लोगों को बढ़ चुके हैं, जिसमें से केवल उत्तर प्रदेश में ही केवल 1 करोड़ से ऊपर रिकॉर्ड बढ़ गए। उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट मैं कह दूंगा 90% हमारे गांवों में इसका काम पूरा हो चुका है, इसके जो रिकॉर्ड लोगों को बढ़ गए हैं या बढ़ रहे हैं। तो इसका जो लाभ आने वाले समय में, क्योंकि हमारे गांव की व्यवस्था जो आपने कहा कि शहरों से लोग जाकर के गांव में रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अच्छी जलवायु है, शुद्ध जल है, शुद्ध पानी है, शुद्ध वातावरण है, और वहां रह करके आप अपनी जिंदगी का एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। वहां पे भोजन के लिए भी आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड आज आपको मिलेगा। आज जो गांव और शहर को जो जोड़ा जा रहा है, जो कि दो शहर हमारे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, शहरों की जरूरतें बहुत बढ़ रही हैं, तो वहां पे अब गांव में ऐसे प्रोडक्शन होने लगे जो कि शहरों की आवश्यकता है। अगर होटल में कोई या वहां पे रेस्टोरेंट में अगर कोई किसी प्रकार की सब्जी का एक्सोटिक उसका यूज होता है, अब वो गांव में उसका प्रोड्यूस होने लगा। गांव में जो आबादी कम हुई उनको शहर में जाकर उनको नौकरी मिल गई, लेकिन वो गांव से गांव में प्रोडक्शन करते हैं, उसको शहर में ले जाकर उसको बेच देते। तो ये इसमें जो स्वामित्व योजना जो है, जो घरौनी योजना, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे ग्रामीण भाई बहनों को मिला है,
0: और खास करके महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर।
1: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, उसमें पहला नाम मैंने मकान की मलकिन तो महिला ही है, उसके बाद पुरुष का नाम है, तो महिला का नाम सबसे पहले रहता है।
0: सिंह साहब, हम पीएम जनमन की बात अब आपसे करेंगे। दरअसल भारत के कुछ सबसे वंचित समुदायों तक बेसिक फैसिलिटीज पहुंचाना अभी भी चुनौती रही है। पीएम जनमन ने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी PVTG के विकास के लिए किस तरीके से नीतियां बनाई, किस तरीके का अप्रोच किया?
2: प्रधानमंत्री ने देखा कि वो वंचित क्षेत्र, वो क्षेत्र जो दूर दराज में बसे हुए हैं, जिन दुर्गम क्षेत्रों में जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिनका कोई ध्यान नहीं रखने वाला था, सरकार तो बहुत दूर की बात, सरकारी अफसर वहां जाने को राजी नहीं, कोई भी आदमी जाने को तैयार नहीं। अब ये दिल्ली के नजदीक आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मेवात का क्षेत्र है, हरियाणा में कोई वहां टीचर जाने को तैयार नहीं होता, कोई मतलब ऐसे क्षेत्रों में जिनका खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों में, ऐसे जिलों को, ऐसे ब्लॉकों को, ऐसे गांवों को प्रधानमंत्री ने बाकायदा चिन्हित कराया, हर कलेक्टर से रिपोर्ट मांगा कि ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव और ऐसे ब्लॉक कहां कहां हैं जहां पे सुविधाओं का, खासतौर से बुनियादी सुविधाओं का जहां अभाव हो, ऐसी जगहों को चिन्हित करने के बाद वहां पर स्पेशल मुहिम के तौर पर स्पेशल अभियान चला के उन सुविधाओं को बहाल कराने का काम कराया है प्रधानमंत्री ने। जितनी योजनाओं की हम लोगों ने चर्चा की है, चाहे वो नल से जल हो, बिजली की सप्लाई हो, ये सारी चीजों की उपलब्धता कैसे वहां तक पहुंचाई जाए, ये सुविधा उनको विशेष अनुदान के तौर पर, किसी की कटौती नहीं की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल तौर पर दिया, और वहां पर ऐसे कलेक्टर्स और ऐसे अधिकारी लगाए गए जिनको बाकायदा दिया गया टारगेट कि इन एरिया का हमको हर हाल में बेहतर स्थिति चाहिए, ये कम से कम देश के बाकी हिस्से के बराबर के लोगों तक पहुंचे, और इसका इतना बढ़िया रिजल्ट है कि इससे एजेंसी आएगी, यहाँ पर कभी रिसर्च होगा तो लोग सोचेंगे भला बताइए पहले सुदूर गांव तक ये सुविधा पहुंच गई, ये इस देश में भी संभव है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होगा नेता होगा वही पहुंचा सकता, उसकी सोच पहुंचा सकती है।
0: मिश्रा जी से मैं यही सवाल पूछता हूँ कि आप अपनी जमीनी अनुभव को बताएं।
1: बिल्कुल,
0: PVTGs के लिए
1: नहीं, PVTG देखिए, इट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब अगर हम ट्राइबल्स की देखें तो हमारी अनुसूची जो है उसके मुताबिक 705 ट्राइबल ग्रुप्स हैं। इनमें से 75 ऐसे पीवीटीजी जो कि हमेशा हर चीज से वंचित रहे, चाहे उनकी शिक्षा हो, उनका स्वास्थ्य हो, किस्म किस्म की बीमारियों से जूझते रहे, स्वास्थ्य हो, उनके लिए आवास हो, उनका न्यूट्रिशन हो, उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हो। उत्तर प्रदेश में, मैंने उत्तर प्रदेश में बहुत कम ट्राइबल्स है, ज्यादा ट्राइबल तो हमारे उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, वहां पे ज्यादा ट्राइबल्स, राजस्थान में ट्राइबल्स है। उत्तर प्रदेश जैसे जगह में भी ऐसे तमाम किस्म के जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, ये जो 75 ग्रुप सेलेक्ट किए गए, इनके बारे में इनके एक फोकस अटेंशन सरकार का, ताकि इनको 100% सेचुरेट कर दे। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पढ़ा लिखे ना हो, किसी को जो है स्कूल न जाता, कोई ऐसा ना हो जिसको स्वास्थ्य की वजह से समस्या हो, उनकी जो है न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो, तो हर चीज को पूरा तरह से एड्रेस किया गया। इनकी कनेक्टिविटी भी नहीं थी, मैंने एक तरफ पीएम ग्राम सड़क योजना हो रही थी, तो ये तो इतने दूर थे कि इसको उनका सोचता भी कोई नहीं था। अब इन गांवों को 100% के हर टोले को कनेक्टिविटी भी दी गई, इनके हर घर में बिजली पहुंचाई गई, तो जो सरकार के हर घर में जल पहुंचाया गया, ये एक स्पेशल फोकस अटेंशन है हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से। पीएम जनमन योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, आज उसका लाभ इस स्पेशल ग्रुप को मिल रहा है।
0: बिल्कुल, तो एक तरीके से आप दोनों से बातचीत करके ये एक तस्वीर उभरी है कि भारत के गांव में बिजली से, पानी से, स्वामित्व योजना से, उनकी कनेक्टिविटी से, पूरी की पूरी सोच जो है उसमें समग्रता में एक परिवर्तन आया है।
1: इसमें जोड़ूंगा जी, एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है
0: जी, वाइब्रेंट विलेज,
1: पहले बॉर्डर डेवलपमेंट का उसको करते थे, जो हमारे देश के सबसे अंतिम गांव होते थे, हम उसको कहते देश के अंतिम गांव,
0: वो पहला गांव क्यों नहीं है?
1: मैंने वहां पे जो सोच में परिवर्तन है कि पहले गांव में लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी हो, वहां टूरिज्म की फैसिलिटी हो, वहां पीने का पानी हो, वहां स्वास्थ्य का हर एक सारी सुविधा हो, ये कंप्लीट सोच में परिवर्तन लाना, कि गृह मंत्रालय भी इस प्रकार का काम 662 गांव में कर रहा है, जो कि चाहे वो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड लद्दाख का हो, या उधर हिमाचल प्रदेश का हो, अरुणाचल प्रदेश का, ये पूरे बॉर्डर के जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर है, उन सारे गांव के ऊपर ये कार्यक्रम चल रहा है।
2: ये सारे गांव की सोच का, गांव की और बात बताऊं, ये गांव टूरिज्म के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। अब उनकी रोजी रोटी का भी एक अच्छा साधन हो गया, क्योंकि वहां कनेक्टिविटी हो गई, सारी सुविधाएं हो गई, तो गृह मंत्रालय ने जो इनिशिएटिव लिया है प्रधानमंत्री के निर्देश पर, वो बहुत ही आगे बढ़ रही है और इसका बहुत फायदा मिल रहा है। वहां के लोगों का जीवन स्तर तो सुधरा। कुछ तो गांव ऐसे हैं जहां पे सिर्फ सिंगल गांव है, उसके लिए कोई कनेक्टिविटी का वो नहीं था, वहां नाव से जाया जाता था। हिमाचल प्रदेश के एरिया में कोई गांव है जिसके लिए इतना खर्च किया गया कि एक गांव के लिए इतना करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया कि इसकी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए और सारी सुविधाओं से किया जाए, ताकि इन गांवों को ये न लगे कि वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो ये इस देश के प्रधानमंत्री या इस सरकार की सोच देखिए कि आखिरी छोर पर बसा व्यक्ति भी भारत का अपने को मजबूती के साथ जोड़ सके, और यह देश अगर बढ़ा रहेगा तभी सुरक्षित रहेगा, और सुरक्षित हाथों में है, प्रधानमंत्री है, हमारी अच्छी सरकार है। हमें लगता है योजनाओं को जिस तरह लोगों तक पहुंचाने की योजना थी और पहुंच रही है, इसका लाभ आने वाले दिनों में और अच्छा से दिखेगा।
0: पिछले 10-12 वर्षों में भारत के गांव में जिस तरीके से सकारात्मक परिवर्तन आया है, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, और विकसित भारत 2047 की दिशा में अब जिस तरीके से भारत के गांव भी सहयोग कर रहे हैं, उसमें गवर्नेंस मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिया है वो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डीएस मिश्रा साहब और एसपी सिंह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 8वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा गांव की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार एवं कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: श्रोताव्याप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित माननीय प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के जन सेवा पर विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा। आप इस वक्त बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
5: मन की बात है जन जन की। सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
4: श्रोताओ, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर प्रस्तुत है हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं सिंग इज किंग फिल्म से। ये बेहद खूबसूरत गीत आवाज दी है श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान ने।

0: डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से एक बहुत ही जरूरी सूचना। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश भूकंप या अर्थक्वेक और मल्टी हैजर्ड इमरजेंसी सिनेरियो पर आधारित एक हॉस्पिटल मॉक एक्सरसाइज का आयोजन करने जा रहा है ईटानगर और नाहरलगन के कुछ अस्पतालों में। इस मॉक एक्सरसाइज में आपदा की तैयारी, इमरजेंसी रिस्पांस और डिजास्टर के दौरान हॉस्पिटल्स और अन्य इमरजेंसी एजेंसियों से कैसे संपर्क करना है या कैसे तालमेल रखना है, ये सारी चीजें बताई जाएगी। ये मॉक एक्सरसाइज कब और कहाँ होंगे? ये होंगे 24 सितंबर यानी 24 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे आरके मिशन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे हीमा हॉस्पिटल में, 25 सितंबर 2026 को यानी 25 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे हॉर्मिन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे नीबा हॉस्पिटल में, और 26 सितंबर 2026 यानी 26 सितंबर 2026 को सुबह करीब 11 बजे तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस ट्रीम्स नाहरलगन में। इस मॉक एक्सरसाइज में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अरुणाचल प्रदेश की देखरेख में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और हेल्थ डिपार्टमेंट भाग लेंगे, क्योंकि इस दौरान भूकंप आने से, आग लगने से या अन्य आपदा में जिस प्रकार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं उसी प्रकार से ही की जाएगी। इसीलिए सभी जनरल पब्लिक से ये अनुरोध करते हैं कि वे इस मॉक एक्सरसाइज को असली समझकर घबराए नहीं, और हॉस्पिटल्स के सभी पेशेंट्स और अटेंडेंट से भी निवेदन करते हैं कि वे हॉस्पिटल अथॉरिटी द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करें। ये सूचना डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
1: दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं रूप कुमार राठौड़ की आवाज में फिल्म अनवर से ये बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार, और उसके तुरंत बाद हम लौटेंगे आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड के साथ।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
1: आपकी तरफ उम्मीदों की दृष्टि से देश देख रहा है, युवा पीढ़ी देख रही है, आने वाली पीढ़ियों को भी ये आपकी बातें बहुत काम आने वाली है। आपको मेरा एक और आग्रह भी है कि आप यात्रा पूरी होने के बाद, क्योंकि आप 10-10 रूट के लोग हैं, अभी तो आप जब चल रहे हैं तो 20 लोग हैं, लेकिन जब पहुंचेंगे तब आप 500 लोग हो जाएंगे। जब वडनगर पहुंचेंगे तब 500 लोग होंगे, 7 अक्टूबर को आप पहुंचेंगे। जब काशी पहुंचेंगे वो भी 500 लोग होंगे। इन 500 लोगों ने 2-3 घंटे एक साथ बैठ करके अपने अनुभवों की चर्चा करनी चाहिए।
0: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा कि डेयरी संदर्भ के में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों का नाम, लेवल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और इस में इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान ही राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणादायक है। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते, इसके साथ ही भारत के कुल पदक की संख्या 17 हो गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में बहुत तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi said that Viksit Bharat can be realized only with contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. During the interaction, these Yatris shared their personal experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the Yatris to use their Yatra to make people aware of various government schemes.
1: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है
3: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has highlighted India's expanding engagement with the global economy and its efforts to strengthen participation in global value chains and supply chains. Addressing the leadership dialogue at the 13th PAFI Annual Forum 2026 in New Delhi, Mr. Goyal said India is negotiating trade and economic partnerships from the position of an economy that is expected to grow into a $30 trillion economy.
4: Now when we negotiate, we are looking for fair, equitable and balanced agreements. We start from the Viksit Bharat 2047 story. Today when we negotiate with the world, we put them to notice that we are a $4 trillion economy, but on a PPP basis, we already are a $20 trillion economy, the third largest in the world. That gap is going to get bridged. And with this fastest growing large economy, we will be a $30 trillion economy.
3: The fourth edition of the UP International Trade Show will begin today at the India Expo Center and Mart in Greater Noida, Uttar Pradesh. Union Home Minister Amit Shah and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath will inaugurate the five-day event. Themed Ultimate Sourcing begins here. The exhibition will continue till 29 September, connecting the state's entrepreneurs, manufacturers and exporters directly with the global market. The Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has proposed nationwide ban on manufacture and sale of analog product as paneer. In a notification, the FSSAI stated that the products already licensed or registered under analog in dairy context category shall discontinue the use of the term paneer in their nomenclature, labeling or marketing. Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi has said that Iran has offered a seven-day plan to end the conflict in West Asia, reopen the Strait of Hormuz and resume talks on its nuclear program, according to a report of New York Times. Mr. Araghchi said the proposal was conveyed to the United States through intermediaries and included certain conditions under which the Strait of Hormuz would reopen by the seventh day and nuclear talks would restart. He reiterated Iran's commitment to diplomacy while accusing the US and Israel of military aggression against Iran and criticizing European countries for failing to address alleged violations of international law. Iranian President Masoud Pezeshkian separately blamed US President Donald Trump for the failure to implement an agreement reached in June this year, saying Tehran remains ready for dialogue. The India Meteorological Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and Vidarbha today. According to the weather agency, heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh, Kerala, Mahe and Telangana for the day. In Asian Games, Indian duo Kamaljeet and Suruchi Singh won gold in the mixed team 10-meter air pistol event in Nagoya, Japan today, while the Indian shooting trio of Rudraksh Patil, Aishwarya Pratap Tomar and Neeraj Kumar won silver in the men's 50-meter rifle three positions team event today. Defending champions, India held Azerbaijan to a 2-2 draw in the 8th round of the FIDE Chess Olympiad in Samarkand yesterday. And that is the end of this news bulletin.
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम लौटेंगे आपके पसंदीदा शो रेडियो निमान के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
7: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, SMS के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके SMS का इंतजार रहेगा।
5: नमस्कार प्यारे श्रोताओं, स्वागत है अरुण एफएम पर आप सभी का आपके अपना फेवरेट शो रेडियो ऑन डिमांड के साथ। इस कार्यक्रम में सबसे खास बात यही है कि यहाँ आपकी आवाज भले ही रेडियो पर सीधी सुनाई ना दे, लेकिन आपके टेक्स्ट मैसेजेस जरूर पहुंचते हैं हमारे स्टूडियो तक। तो अपना मोबाइल उठाइए और हमें मैसेज भेजिए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, किस फिल्म का सॉन्ग है, किस सिंगर की आवाज में है, अपना नाम और आप कहाँ से सुन रहे हैं। और अगर ये गाना किसी खास दोस्त या फैमिली को डेडिकेट करना चाहते हैं तब भी आप जरूर बता सकते हैं। तो देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला मैसेज। ये पहला मैसेज हमें आया है टेंशन क्रो, रोजमेरी क्रो, जुनिस तोगबीपी, हेवाली तेरोनपी, मनाई तेरोनपी और सरलोक रोजी का तरफ से, जो हमसे जुड़ रहे हैं लंकांगशाम डिस्ट्रिक्ट कार्बी अंगलोंग से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर और आपने हमें सॉन्ग फरमाइश की है हमको दीवाना कर गई फिल्म का टाइटल ट्रैक को। लीजिए दोस्तों, प्यार और खूबसूरत एहसासों से सजा यह गीत सुनते हैं हमको दीवाना कर गई फिल्म का ये टाइटल ट्रैक। आवाज है सोनू निगम और तुलसी कुमार की।

दोस्तों बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। और ये मैसेज हमें आया है शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता, लिपि, दीपाली गोप की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। आप सभी का अरुण एफएम पर बेहद स्वागत है। और आप सभी ने सॉन्ग फरमाइश की है सलामी फिल्म का, मिले तुमसे बिचर के हम गीत को सुनने का। और इस गीत को गाया है कुमार शानू, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक ने। लीजिए दोस्तों सुनते हैं आप लोगों की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत। बने रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। अगला मैसेज हमें आया है सुनीता बासुमतारी जी का, जो हमसे जुड़ रही है असम से। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। दोस्तों, सुनीता जी ने आज अपनी फरमाइश में चुना है फिल्म पुल का खूबसूरत गीत क्या कहूँ तुझसे मैं, जिसे अपनी आवाज दी है कुमार शानू और साधना सरगम ने। और इस प्यारे से गीत को सुनीता जी ने डेडिकेट किया है अपने खास लोगों अमाल, बिमल, रमेश, लक्की, देवाशीष और बाइकुन के नाम। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए सुनते हैं सुनीता बसुमतारी जी की पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद रेडियो डिमांड का अगले मैसेजेस के साथ, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
2: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
1: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
2: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपका पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड के साथ। और दोस्तों अगला मैसेज हमें आया है बिमल बसुमतारी जी का, जो हमसे जुड़ रहे हैं मैशाखी सापोरी डिस्ट्रिक्ट धेमाजी असम से। बिमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर, और आपने हमें सॉन्ग फरमाइश की है अनारी फिल्म का क्या मौसम आया है गीत को सुनने का, और आपने इस गीत को डेडिकेट किया है आपके दोस्तों के नाम अमाल गागे, रमेश, रूनू, लक्की, रोको, बाइकुन, जोगेंद्र, देवाशीष, हितेंद्र, वीरेन, चुवा की कसीम और सुनीता जी के नाम पर। तो आइए सुनते हैं आप बिमल जी, आपके और आपके दोस्तों के नाम ये प्यारा सा गीत फिल्म अनारी से।

दोस्तों भर्ती है रेडियो ऑन डिमांड के अगले मैसेज की ओर। ये मैसेज हमें आया है हमारे प्यारे लिसनर्स रोमेश पात्रो, रोनू पात्रो और लकी पात्रो जी का, जो हमसे जुड़ रहे हैं गोलाघाट आसाम से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। दोस्तों आज की इनकी फरमाइश है फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का ये बेहद खूबसूरत गीत चांद तारे फूल सबनम, जिसे आवाज दी है तौशीफ अख्तर ने। और इस प्यारे से गीत को डेडिकेट किया गया है इनके खास दोस्तों और अपने लोगों के नाम बाइकुन अमोल, विमल, देवाशीष, सीतेंद्र, जोगेंद्र, सोनाली, अंजलि और सुनीता जी को। तो चलिए दोस्तों आप सुनते हैं इनकी पसंद का ये बेहद खूबसूरत गीत फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का।

0: दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड। हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद इस कार्यक्रम के अगले मैसेजेस के साथ। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में। और दोस्तों, अब अगला मैसेज आया है हमारे प्यारे लिसनर हितेंद्र दास जी का, जो हमसे जुड़ रहे हैं असम से। हितेंद्र जी ने आज एक बेहद खास फरमाइश भेजी है। आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के महान और बेहद लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर SP बाला सुब्रमण्यम जी का, जो और उनकी याद में सुनेंगे उनकी आवाज में एक सदाबहार खूबसूरत गीत। हितेंद्र जी ने फरमाइश की है फिल्म मैंने प्यार किया का एवरग्रीन सॉन्ग दिल दीवाना, जिसे अपनी आवाज दी है SP बाला सुब्रमण्यम जी ने। उनकी आवाज में वो मिठास थी, वो अपनापन था, जो किसी भी गीत को सीधे दिल तक पहुंचा देता था। उनके गाए गीत आज भी संगीत प्रेमियों के बीच उतने ही खास हैं और उनकी आवाज हमेशा हमारे बीच उनके संगीत के रूप में जीवित रहेगी।

दोस्तों बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। और ये मैसेज हमें भेजा है सनितपुर आसाम से कविता एन कागिन सुतार जी की तरफ से। आपने हमें सॉन्ग फरमाइश की है दीवाना फिल्म का पायल या गीत को सुनने का। तो कविता कागिन सुतार जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं आपके फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत को।

0: दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। हम लौटेंगे अगला मैसेज के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद। बने रहिए अरुण FM 103.1 MHz पर।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: HIV के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
5: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
4: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
5: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
4: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
5: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
0: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है रेडियो ऑन डिमांड पर। दोस्तों, बढ़ते हैं इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम मैसेज की ओर और ये मैसेज हमें आया है नाहरलगुन से। भेजने वाले ने अपना नाम लिखा है थोन। उम्मीद करता हूं आपका नाम को मैं सही तरीके से बुला रहा हूं। आपने सॉन्ग फरमाइश की है मेरी सामने वाली खिड़की में इस गीत को सुनने का। तो तोन जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत को सुनते हैं।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होता है। वक्त कमी होने के कारण हम इस गीत को पूरा नहीं सुना पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये अंक आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। तो इसी के साथ अब हम आज के पहली प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो टाटा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर अतर तथा तकनीकी अभिनेता होलीराम ब्रामा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आगे के सफर में आपके साथ होंगे आरजे पूर्व दुनिया जी। और अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के

0: अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुँचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए सेवा, संतुलन, धैर्य, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदनशीलता और संवाद के 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हर भाजपा कार्यकर्ता सेवा भाव के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए मार्ग पर चलने पर गर्व महसूस करता है। सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ यात्रा के अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का भी आग्रह किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों को बनाने और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एनालॉग पनीर का अर्थ है कि जो वास्तविक दूध के बजाय अन्य सामग्री से बनाए जाते हैं। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियमन 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज श्रीनगर स्थित आकाशवाणी केंद्र में उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय चैनल प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें उत्तरी क्षेत्र के आकाशवाणी केंद्रों के कामकाज और प्रसारण की समीक्षा की गई। इस अवसर पर श्री जैन ने कहा कि बैठक का उद्देश्य क्षेत्रीय चैनल प्रबंधकों के सामने आ रही समस्याओं को समझना, उनकी प्रतिक्रिया लेना और समस्याओं के समाधान तलाशना है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में 484.6 अंक हासिल किए। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की जोड़ी ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has said that Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris traveling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service.
1: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है, ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
3: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has highlighted India's expanding engagement with the global economy and its efforts to strengthen participation in global value chains and supply chains. Addressing the leadership dialogue at the 13th PAFI Annual Forum 2026 in New Delhi, Mr. Goyal said India is negotiating trade and economic partnerships from the position of an economy that is expected to grow into a $30 trillion economy.
4: Now when we negotiate, we are looking for fair, equitable and balanced agreements. We start from the Viksit Bharat 2047 story. Today when we negotiate with the world, we put them to notice that we are a $4 trillion economy, but on a PPP basis, we already are a $20 trillion economy, the third largest in the world. That gap is going to get bridged. And with this fastest growing large economy, we will be a $30 trillion economy.
3: The fourth edition of the UP International Trade Show will begin today at India Expo Center and Mart in Greater Noida, Uttar Pradesh. Union Home Minister Amit Shah and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath will inaugurate the five-day event. Themed Ultimate Sourcing Begins Here, the exhibition will continue till September 29th, connecting the state's entrepreneurs, manufacturers and exporters directly with the global market. The Food Safety and Standards Authority of India, or FSSAI, has proposed nationwide ban on manufacture and sale of analog product as paneer. In this notification, the FSSAI stated that the products already licensed or registered under analog in dairy context category shall discontinue the use of the term paneer in their nomenclature, labeling or marketing. Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi has said that Iran has offered a seven-day plan to end the conflict in West Asia, reopen the Strait of Hormuz and resume talks on its nuclear program, according to a report of New York Times. Mr. Araghchi said the proposal was conveyed to the United States through intermediaries and included certain conditions under which the Strait of Hormuz would reopen by the seventh day and nuclear talks would restart. He reiterated Iran's commitment to diplomacy while accusing the U.S. and Israel of military aggression against Iran and criticizing European countries for failing to address alleged violations of international law. Iranian President Masoud Pezeshkian separately blamed U.S. President Donald Trump for the failure to implement an agreement reached in June this year, saying Tehran remains ready for dialogue. The India Meteorological Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and Vidarbha today. According to the weather agency, heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh, Kerala, Mahi and Telangana for the day. In Asian Games, Indian duo Kamaljeet and Suruchi Singh won gold in the mixed team 10-meter air pistol event in Nagoya, Japan today. While the Indian shooting trio of Rudraksh Patil, Aishwarya Pratap Tomar and Neeraj Kumar won silver in the men's 50-meter rifle three-positions team event today. Defending champions India held Azerbaijan to a 2-2 draw in the 8th round of the 5th HS Olympiad in Samarkand yesterday. R. Pragyanan, Arjun Erigesi, D. Gukesh and Vidit Santosh Gujarati were all held to draws by their Azerbaijani opponents. And that is the end of this news bulletin.
5: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को. आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा में। इससे पहले दोस्तों, पहली प्रसारण सभा में आप बने हुए थे RJ कार्ग के साथ। उम्मीद करती हूँ RJ कार्ग के साथ आज का आपका सफर बहुत ही सुहाना और मनोरंजक रहा होगा। अब इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं और शुरू करते हैं हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा। साथ ही बता दूं दोस्तों, इस प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता नंद कुमार। रोजाना की तरह आज भी सभा में हम आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं और पहला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे फिल्म लहर। तो चलिए इस संगीतमय सफर की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ। पहला गाना आप सुन पाएंगे तारा रमपम फिल्म से हे शोना शान और सुनिधि चौहान की आवाजों में।

0: Click on the bell icon to get regular updates from.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz, इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ कार्यक्रम फिल्म में लहर में। तो आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, रामलीला फिल्म से लाल इश्क, अरिजीत सिंह की आवाज में।

दोस्तों के साथ ही फिल्म लहर कार्यक्रम ये समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों आप सुन पाएंगे अगला कार्यक्रम पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम। तो कुछ पल के लिए हिंदी फिल्मी गानों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और एंजॉय करते हैं कुछ सूदिंग वेस्टर्न सॉन्ग्स।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम या आकाशवाणी ईटानगर का RON FM 103.1 MHz से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों

0: में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों को आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस साखना के साथ बैठक में यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभाव तथा बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्धन परियोजना की शुरुआत की। नई दिल्ली में परियोजना के शुभारंभ पर श्री यादव ने कहा कि इससे राज्य वन संस्थानों में नई सुविधाएं विकसित करने और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सिक्किम में ग्यालशिंग जिले के रिम्बी गांव में कल रात मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। श्री तमांग ने स्थानीय अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आज हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मछुआरों को आज समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक हासिल किया। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले मुक्केबाज सचिन सेवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत अब 19 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said Vikasit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colours of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colours of service.
1: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
2: The Prime Minister noted that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. Today, in

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम गजल।

दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गजल कार्यक्रम में। गजल एक ऐसी खूबसूरत कला है जहां अल्फाज सिर्फ सुने नहीं, महसूस भी किए जाते हैं। हर शेर में छुपे होते हैं जज्बात, मोहब्बत की बातें, यादों की खुशबू और कभी कभी तन्हाई का दर्द भी। गजलों की सबसे खास बात ये होती है कि दिल की उन बातों को भी बयां कर देती है जो अक्सर हम लफ्जों में नहीं कह पाते। नरम सुर, गहरी सैयारी और दिल को सुकून देने वाली आवाज के साथ गजल हर दौर में लोगों के दिल के करीब रही है। और जब एक खूबसूरत गजल महफिल सजती है तो लगता है जैसे वक्त भी थोड़ी देर के लिए थम सा गया हो। और आज गजलों के इस खास महफिल में पहला पेशकश है गुलाम अली की आवाजों में। गुलाम अली की आवाज में वो कभी मिल जाए तो क्या कीजिए।

0: नगमों के नरम छाव, अल्फाजों की मिठास और एहसासों की गहराई लिए आप बने हुए हमारे साथ गजलों की इस खास महफिल में, जहां हर गजल दिल की किसी अनकहे बात को आवाज देती है। और गजलों की इस महफिल की अगली पेशकश है फरीदा खानूम की आवाज में, आज जाने की जिद ना करो।
1: आज जाने

दोस्तों, गजलों के महफिल से आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुन पाएंगे हमारे फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीतमाला।

दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फौजी भाई बहनों के लिए सजाया गया इस खास कार्यक्रम गीतमाला में। ये खास कार्यक्रम सिर्फ संगीतों का कार्यक्रम नहीं बल्कि ये हमारी ओर से छोटी सी कोशिश है आप सभी फौजी भाई बहनों को धन्यवाद कहने का, आप सबकी वीरता, समर्पण और देशभक्ति को हम सैल्यूट करते हैं। अब इस देशभक्ति भावना के साथ आइए गीतमाला कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला गाना सुनते हैं लगान फिल्म से चले चलो, श्रीनिवास और ए आर रहमान की आवाजों में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: HIV के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
2: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
1: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
2: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, चौथे सेंट्रल के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीत माला में। आइए अब संगीतों का सिलसिला जारी रखते हैं और सुनते हैं अगला गाना, इकबाल फिल्म से आशा है, सलीम मर्चेंट और KK की आवाज़ों में।

दोस्तों इसी के साथ ही गीतमाला कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार के इस बार मिलेंगे कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4th संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन किया। इस समय गृह मंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: शामिल हो रहा ये 4th संस्करण आते आते पहले संस्करण में यूपी में जो परिवर्तन हुआ है उसका दुनिया ने परिचय किया, दूसरे में यूपी में आना है ऐसा इरादा जताया, तीसरे में यूपी में आए और 4th में यूपी के विकास में सहयोगी बनकर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत के विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि मेक इन इंडिया का अगला लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनाना है, जिससे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में मिक्स 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर भारतीय एथलीट मनु टीएस पुवम्मा, एमआर विशाल टीके और मिथ्या रामराज को बधाई दी है। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में भारत का सामना ईरान और चीनी ताइपेई के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम से होगा। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ियों ने 3 पदक पक्के कर लिए हैं। जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार की जोड़ी मिक्स्ड युगल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris traveling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan.
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है. चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं. इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है. इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी.
3: Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He noted that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. The Prime Minister said the infrastructure in villages has improved considerably, while self-reliance among the women of the country has also increased. Vice President C.P. Radhakrishnan has said, in an increasingly interconnected world, emerging challenges cannot be effectively addressed by nations working in isolation. Interacting with participants of the fourth edition of the International Strategic Engagement Programme, or INSTEP, at the Uparashtrapati Bhavan today, Mr. Radhakrishnan said the Indian ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family and one future, reflects collective well-being of people around the globe. INSTEP is an initiative aimed at promoting regional security and closer cooperation among like-minded nations. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post today, Mr. Modi said the initiative has led to more being made in India, more investment in India and more exports from India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, South African Foreign Minister Ronald Lamola and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira have strongly condemned the Pahalgam terror attack and reaffirmed their commitment to zero tolerance for terrorism. The three ministers met under the IPSA Dialogue Forum in New York on the sidelines of the United Nations General Assembly yesterday and stressed their commitment to the UN Charter, international law and a stronger multilateral system. In a joint statement, the ministers called for a comprehensive reform of the UN Security Council. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav launched the workshop on capacity enhancement for effective forest management project in New Delhi today. On the occasion, the minister said the project holds significant potential for enhancing technical and field level capabilities in forest fire management, biodiversity conservation and climate action. The project has an outlay of over 537 crore rupees, including a contribution of over 440 crore rupees by Japan International Cooperation Agency. The project is being implemented over 7 years and involves all states in India. The government has said 70,000 rural youth across states and union territories will be provided skill training from next month under the Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0. It is a centrally sponsored scheme providing placement-linked skill training to poor rural youth. The Rural Development Ministry said all the 31 participating states and UTs have been allocated more than 9 lakh targets under the scheme for a period of 2 years. The Inter-Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Vidarbh today. According to the Weather Agency, heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh, Kerala, Mahe and Telangana during the day. Indian men's and women's kabaddi teams have entered the finals at the Asian Games after registering comprehensive victories in their respective semi-final matches. The women defeated Nepal 48-24, while the men outplayed Thailand 66-28, keeping their unbeaten run intact. And with that, we end this news bulletin.
4: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जर्नलिस्ट आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे दुनिया। और दोस्तों अब वक्त हो चला है कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का, जहां हम आपको सुनाते हैं 60s, 70s और 80s के कुछ खूबसूरत गीतों को। तो चलिए लौट चलते हैं उन गीतों के पास जिन्हें सुनते हुए चाय ठंडी हो जाती है लेकिन यादें गर्म हो जाती है। लौट चलते हैं उस दौर में जब मोहब्बत आहिस्ता चलती थी और गीत जिंदगी के साथ साथ बड़े हुआ करते थे। तो चलिए पहला गीत सुनते हैं हीरा पन्ना फिल्म से, पन्ना की तमन्ना है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

आपसे पूछूं कि वो कौन सी एक पुरानी फिल्म है जिसको सुनते ही आपको उस फिल्म के सारे कैरेक्टर्स, डायलॉग्स और गाने सब कुछ याद आ जाते हैं। बहुत सारे नाम आपको याद आ रहे होंगे और उनमें से एक जिसके नाम पर शायद आप मेरे साथ हामी मिलाएंगे वो है शोले। जे और वीरू की दोस्ती, गब्बर का खौफ, ठाकुर का बदला, बसंती की बातें और इन सब के बीच वो कहानी जिसे हम आज भी उतनी ही दिलचस्पी से याद करते हैं। और डायलॉग्स का तो क्या ही कहना, कितने आदमी थे, अब तेरा क्या होगा कालिया, कितने सिंपल से डायलॉग्स है ना, लेकिन जिस अंदाज में उन्हें डिलीवर किया गया, उनकी वो आवाज, वो पॉज, वो एक्सप्रेशंस, उन सिंपल लाइंस को भी हिंदी सिनेमा के आइकॉनिक डायलॉग बना दिया। और फिर जे और वीरू की दोस्ती, आज भी जब कोई बहुत खास हो तो हम मजाक में कह देते हैं ये तो मेरी जिंदगी का जे है या मेरी वीरू है। तो सोचिए आपकी जिंदगी में वो जे या वीरू कौन है, कोई ऐसा दोस्त जिसके साथ आपने ना जाने कितनी यादें बनाई, जिसके साथ बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। तो आज का ये गाना आपकी उसी खास दोस्ती के नाम, किशोर कुमार और मन्ना दे की आवाजों में ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

जहनोस तो आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ हिंदी क्लासिक म्यूजिक में। दोस्तों, बॉलीवुड में अगर किसी एक्टर ने अपनी मेहनत, टैलेंट और डांस से एक अलग पहचान बनाई तो वो है मिथुन चक्रवर्ती। एक ऐसा नाम जिन्होंने साबित किया कि सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, हौसला और लगन भी चाहिए होती है। मिथुन दा ने अपने करियर की शुरुआत 1976 की फिल्म मृगाया से की और कमाल की बात यह है कि अपनी डेब्यू फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। ये किसी भी नए कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन देशभर में उनकी असली पहचान बनी 1982 की फिल्म डिस्को डांसर से। आई एम ए डिस्को डांसर और जिमी जिमी आजा आजा जैसे गाने

हर गली, हर मोहल्ला और दुनिया के कई देशों तक गूंज उठे मिथुनदाग के एनर्जेटिक डांस मूव्स और उन्हें इंडिया का पहला असली डांस सेंसेशन बना दिया। इसके बाद कसम पैदा करने वाले की डांस डांस, प्यार चुकता नहीं और अग्निपथ जैसे फिल्मों ने उन्हें एक्शन, रोमांस और ड्रामा हर जोनरा में अपनी चाप चोरी। 90s में जब बॉलीवुड बदल रहा था तब भी मिथुनदा ने लगातार काम किया और बाद में कैरेक्टर रोल्स से भी दर्शकों का दिल जीता। टेलीविजन पर डांस इंडिया डांस के ग्रैंड मास्टर के रूप में उनका अंदाज और उनका मशहूर डायलॉग क्या बात घर घर में पॉपुलर हो गया। आज भी मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि मेहनत, सिंप्लिसिटी और वर्सेटिलिटी की मिसाल माने जाते हैं। उनका सफर हमें ये सिखाता है कि टैलेंट और डेडिकेशन के दम पर हर सपना सच हो सकता है। तो चलिए उन्हीं के फिल्म डिस्को डांसर से सुनते हैं, याद आ रहा है बप्पी लहरी की आवाज में।

0: प्यार दीवाना होता है किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना हिंदी क्लासिक म्यूजिक कार्यक्रम का अंतिम गीत। इसी के साथ ही ये सुरीला सफर यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब वक्त है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का, तो चलिए सुनते हैं हिंदी सिनेमा के वो गीत जो कभी हमारे मुस्कान बन जाते हैं तो कभी यादों की धुन। हर धड़कन हर एहसास के लिए हमें कोई ना कोई गाना जरूर मिल जाता है। तो पहला गाना आप सुन पाएंगे Once Upon a Time in Mumbai दोबारा फिल्म से ये तूने क्या किया जावेद बसीर की आवाज में।
1: इश्क वो बना है, इश्क वो बना है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ

दोस्तों इसी के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त दोपहर के ठीक 2 बजने वाले हैं। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार।

0: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और आरएसएस के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधा कृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के चौथे संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
2: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
4: ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और

0: बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
1: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में हैं। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देशभर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
4: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
3: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया,
5: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिकड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
3: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
1: ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता।

भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्ते।

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड न्यूज एवं दोपहर समाचार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: सभा के इस भाग में अब पेश है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। 90s सिर्फ एक डेकेड नहीं था दोस्तों, बल्कि एक इमोशन था, एक ऐसी वाइव जो हर मेमोरी के साथ जुड़ी हुई है। पहला प्यार हो, दिल टूटने का दर्द हो, या शादी में कजिन्स के साथ डांस, हर मोमेंट के लिए एक स्पेशल 90s सॉन्ग जरूर हुआ करता था। और शायद इसीलिए 90s के गाने आज भी दिल के उतने ही करीब है। सिंपल मेलोडीज, हार्ट फेल्ट लिरिक्स और वो इमोशंस जो सीधा दिल को छू जाता है। तो चलिए ऐसे ही खूबसूरत गीत के साथ हिट्स ऑफ 90s के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुनते हैं ढोलना दिल तो पागल है फिल्म से लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। दोस्तों, जब भी हम 90s के दौर की बात करते हैं तो एक नाम अपने आप जुबान पर जरूर आता है, वो है शाहरुख खान। आज उन्हें किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनके करियर का एक ऐसा पहलू भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है उनका विलेन वाला अंदाज। 90s के शुरुआती सालों में जब अधिकतर नए एक्टर सीधे हीरो की इमेज बनाना चाहते थे, शाहरुख खान ने रिस्क लिया और ऐसे किरदार चुने जो डार्क, ऑब्सेसिव और नेगेटिव शेड से भरे हुए थे। चाहे वो बाजीगर के अजय शर्मा हो, जो बदले की आग में किसी भी हद तक जा सकता था, या फिर दर का राहुल, आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार विलेन मोमेंट्स में से एक माना जाता है। खास बात ये थी कि शाहरुख खान ने इन नेगेटिव रोल्स को सिर्फ विलेन बनकर नहीं निभाया, बल्कि उन किरदारों की साइकोलॉजी को भी स्क्रीन पर जिंदा कर दिया। उनके कैरेक्टर्स डराते भी थे, हैरान भी कर देते थे, और कहीं न कहीं ऑडियंस को उनके बारे में सोचने पर मजबूर भी कर देते थे। इसी वजह से उनके ये परफॉर्मेंस आज भी याद की जाती है। शायद यही वजह है कि जब शाहरुख खान बाद में रोमांटिक हीरो बने तो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और भी खास लगने लगी, क्योंकि दर्शक को पहले ही पता था कि ये एक्टर सिर्फ प्यार का बादशाह ही नहीं, बल्कि हर तरह के किरदार को पूरी शिद्दत से जीने की कला रखता है। आइए अब सुनते हैं शाहरुख खान की एक यादगार फिल्मों का ये जबरदस्त गाना। कुछ कुछ होता है फिल्म का टाइटल सॉन्ग उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों इसी के साथ ही टॉप 90s कार्यक्रम ये समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ देर बाद यानी 2:58 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से न्यूज हेडलाइंस। 3 आप सुन पाएंगे मिश्मी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। हम लौटेंगे 3:30 पर कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। आप सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहां हम करते हैं बात दिल से दिल तक।

नहीं, आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़, मीडियम वेव्स सी पाक सी सिप सी चुमसी मीटर्स हो पाक चेत सिप हा किलो हर्ट्स मै नई चलांग खाम दाई खाम ती हाउने को मायो मने वंची ने लंगनी पी तई सोंग हिंग पाक साउ तु नई इंग ना जे पी मई सोंग हिंग साउ हो निन सेप्टेम्बर नई साउ हावन कौ खाम लुक नंग प्रिया लोंग फॉय मई हनाई थोम तिखा मू नई थोन मा सिप सोंग पी तक अन मेक इन इंडिया नई कचम मा का याओ वन मने मई मू पी सोंग हिंग सिप सी मई इनिशिएटिव नई वा औपिन ग्लोबल हब हंगचा मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन खनसम इनोवेशन मई औसी लॉन्च हगन मा का नम हो इनिशिएटिव नई कचम मूंग इंडिया मई मैन्युफैक्चरिंग ने मई लुक expanding production investment capabilities new industries mai aulai ha make in india nai kacham pin ma song point wa lom si south chit sectors mai sip ha an nai manufacturing khansam sip song an nai services mai focus khan ta nu kan nam so hau ma yo गवर्नर लुटेनेंट जनरल के टी परनायक नई कचम हाउस कंट्रोलर लोकभवन हिची सुबेदार एंड ऑनरेरी लुटेनेंट करण सिंह मई नेयाति लोकभवन ईटानगर वन मंगा अनपोन का ने मई साइटेशन हंगचा डिस्टिंग्विश मिलिटरी सर्विस खनसम एक्जेम्पलरी कंट्रीब्यूशन लाइप अमु साकवाट कनलुई लोक भवन पोंगलुई अन मई आउसी प्रेजेंट कन हमा का नम हो औहोम होम चुम चुम सी गवर्नर मंचाउ नई कचम करण सिंह मई मून डेडिकेशन मून डिसिप्लिन मून इंटीग्रिटी सेल्फ सर्विस अन इंडियन आर्म फोर्स नई यंग निसी पे हमा निसी कॉन्ग्रेचुलेट हे कन हगन मा का याओ फन तोन मुक या हिची बिगोनिया नीलम ओरंग नई कचम चेला कई पन्योर अनमंग अरुणाचल प्रदेश ताई नमहोई कई रिवर कने सी लेवल थाउजेंड मीटर्स मई नई कनका निसी लौखई मा का याओ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हिची चौना मे इन मनाई मई ची मुक या नई कचम नीलम क्लैन अन निशी कम्युनिटी मई मत यमसी हगन का निशी लौखमा नम हो निशी कम्युनिटी मई ची तोनमुक या नई लोकली वा नई कोबीर होपा बाप राय निशी हुटोंगन मा का नम हो अन एशियन गेम्स अन इंडियन डुओ हिची कमलजीत खनसम सुरुचि सिंह नेखाउ कचम गोल्ड मेडल अन सिप मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट मई मु एशियन गेम्स सोंग हिंग साउ हुक खनसम हिची नीरज कुमार ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर खनसम

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ताई खांग के श्रोताओं का कार्यक्रम। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी नगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और दोस्तों आप बने हुए हैं मेरे साथ यानी आपके रेडियो साथ ही RJ दुनिया के साथ। अब वक्त है कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का।

तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के बॉलीवुड अपडेट के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और बॉलीवुड में इन दिनों कुछ पर्सनल स्टोरीज, सेलिब्रिटी स्टेटमेंट्स और इंडस्ट्री से जुड़े डेवलपमेंट्स काफी चर्चा में हैं। सबसे पहले एक इमोशनल अपडेट से शुरू करते हैं। बेहतरीन एक्टर मुश्ताक खान का निधन 24 सितंबर को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद हुआ। मुश्ताक खान ने 4 दशक से ज्यादा के करियर में कैरेक्टर और कॉमिक रोल्स के थ्रू अपनी अलग पहचान बनाई। वेलकम, गदर एक प्रेम कथा, आशिकी, हीरा पेरी और स्त्री जैसे फिल्मों में उनके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को ऑडियंस ने याद रखा। उनके निधन के बाद राजपाल यादव ने बताया कि वो मुश्ताक खान से उनकी मौत से सिर्फ कुछ घंटे पहले हॉस्पिटल में मिले थे। अनीस बजमी और सनी देओल जैसे उनके कोस्टार्स ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रिब्यूट दिया। और अब बात करते हैं गोविंदा की, जिनकी पर्सनल लाइफ पिछले कुछ दिनों से लगातार हेडलाइंस में है। गोविंदा को लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए उनकी कोस्टर रानी स्वर्णकर के साथ देखा गया था, जबकि सुनीता आहूजा अलग से दर्शन करने पहुंची थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके रिलेशनशिप को लेकर स्पेकुलेशन और बढ़ गई। 24 सितंबर को गोविंदा ने इस पर अपनी तरफ से बात रखते हुए कहा कि उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर जो डिस्कशन हो रहा है वो उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने की एक प्लान्ड एफर्ट का हिस्सा है। रानी स्वर्णकर के साथ रिलेशनशिप के रूमर्स को दोनों ने पब्लिकली कंफर्म नहीं किया है। और गोविंदा से जुड़ी इस कॉन्ट्रोवर्सी पर अनुपम खेर का स्टेटमेंट भी आया है। अनुपम खेर ने गोविंदा के साथ अपने प्रोफेशनल इक्वेशन को याद करते हुए उन्हें एक फाइन एक्टर बताया और कहा कि उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ और हैबिट्स को अपने काम पर हावी नहीं होने देने चाहिए। उनका ये कमेंट गोविंदा की पर्सनल लाइफ को लेकर चल रही रिसेंट डिस्कशन के बीच आया है। और अब चलते हैं रणवीर सिंह की तरफ। 19 सितंबर को रणवीर और दीपिका ने अपने सेकेंड बेबी गर्ल को वेलकम किया था और 24 सितंबर को रणवीर ने बेबी के बर्थ के बाद पहली बार पब्लिक अपीयरेंस दी। वो हंगकार की स्क्रीनिंग में नजर आए और पेपराजी से इंटरेक्ट भी किया। बेबी के बर्थ के बाद दीपिका और रणवीर ने अपने फैमिली लाइफ को लार्जली प्राइवेट रखा, इसलिए उनका ये पब्लिक अपीयरेंस नेचुरली एंटरटेनमेंट मीडिया में अटेंशन का सेंटर बना। ऐसे बीच परिणीति चोपड़ा भी अपने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट को लेकर हेडलाइंस में बनी रही। न्यू मदर्स को बॉडी और स्ट्रेच मार्क्स के लिए ट्रोल किए जाने पर परिणीति ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स को नेगेटिव चीज की तरह क्यों देखा जाता है। यह स्टेटमेंट उनके खुद मदरहुड एक्सपीरियंस के बाद सामने आया है और उन्होंने स्पेसिफिकली न्यू मदर्स को टारगेट करने वाली बॉडी शेमिंग पर बात की। और शाहरुख खान के फैंस के लिए एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। 24 सितंबर को पारा खान ने मैं होना के सीक्वल को लेकर चल रही स्पेकुलेशन पर बात की। ये डिस्कशन तब शुरू हुआ जब अर्जुन कपूर ने पब्लिकली मैं होना 2 की डिमांड रखी और फराह खान के रेस्पॉन्स को सीक्वल के पॉसिबल हिंट के तौर पर देखा गया। फिलहाल इसे कन्फर्म सीक्वल अनाउंसमेंट नहीं कहा जा सकता, लेकिन शाहरुख खान और फराह खान के आइकॉनिक कोलैबोरेशन को लेकर डिस्कशन जरूर

दोबारा शुरू हो चुकी है और एक नाम जो कुछ दिनों से हेडलाइंस में रहा वो है सूरज पंचोली। एक्टर ने दिशा सेलियन केस से जुड़ी कंट्रोवर्सी के कॉन्टेक्स्ट में डेथ थ्रेट्स मिलने की बात कही और कहा कि वो डरने वालों में से नहीं है। ये स्टेटमेंट उनके केस से जुड़े पुराने कंट्रोवर्सी के दोबारा डिस्कशन में आने के बीच सामने आया है।

तो दोस्तों बॉलीवुड अपडेट से आज बस इतना ही। कल हम फिर कुछ बॉलीवुड से जुड़े खबरों के साथ लौटेंगे। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से तू जाने ना आसिफ असलम की आवाज़ में।

दोस्तों इसी के साथ ही बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे वंचू श्रोताओं का समाचार। आप बने रहे हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का समाचार। दोस्तों बता दूं, अगर आप वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के द्वारा भी हमारे अरुण FM और मीडियम वेव के सारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स।

दोस्तों, कभी कभी दिल को किसी वजह की जरूरत नहीं होती है, बस दिल करता है कि खुद की धुन में ही चलने को, हवाओं के साथ बहने का और हर पल को थोड़ा और जीने का। तो आज इस खूबसूरत शाम में उन सभी आवारा ख्यालों के नाम जो बिना किसी मंजिल के भी हमें खुशियों तक ले जाते हैं, सुनते हैं ये एवरग्रीन मेलोडी है अपना दिल तो आवारा।

दोस्तों, इसी के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम ही समाप्त होते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे

अभी आप सुन रहे थे वांछो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोता लीजा प्रस्तुत है ईदू मिशिमी श्रोताओं का कार्यक्रम।

0: एच आकाशवाणी ईटानगर चेलापुची जानोलो हिमांगा मिट्टू बेली नि एतानीचे इदुमिशमी आहोला के जी दरगालंबो औताची आंजी लोमी एम इंडिया माने आजिगा ओदाला ने आहा इनु एजाका होलपी माचिनु लातिया कोकोमाने इजी उंजिखे गे आंजी आचितेगा बागुमी मे अले लातिया कोकोमाने उखो जपगाला दाने गवर्नमेंट मे आकाशवाणी माची आहो चोलाएगा लाकेगा ने आ प्रोग्राम को कोमाने अन्य हो यूं जो कमा जो पगला दा ला होगा आरो अतिकाची आकाशवाणी चैनल आलम्ब्रो में काजी आम आयोगा आज पुआ अतु सोचा आकाशवाणी माची डायरेक्टर जनरल आजा राजीव कुमार जैन में ओना ईटानगर ची आकाशवाणी माने अतु सुवे मीटिंग जिने वमा आरो अतिका मा खागा आकाशवाणी चैनल मा माची हेता लम्ब्रो में गिगा बता ला होगा आ चैनल मम्मा काजी रुगा मिगा थोपुची पुआ बु आ मीटिंग माने चिचा ओगला दा ला होगा अरुणाचल प्रदेश के पन्नर डिस्ट्रिक्ट के माचिम रचे एजारी गे मीटर यू अम्बा पने शांति सानब्रु में मेगोन्या नीला मोरम लाएगा असी ब्रह्मे गे अलातिगा बचा है प्रण प्रभुदा ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर टूर्नामेंट में लगाने निशीमा ची नीलाम एबा अमू माने आ आशीब्रा अमू आखगा बचा है प्रभुदा लगादा आओगा हाँ इंडिया अतिका एम मा मंगा कापी बेगोनिया आसीब्रा ब्राता छिंगामा अरुणाचल प्रदेश माचे बेगोनिया नीलामरम आसीब्रा बु ख्या प्राओ बचा है प्रभुदा ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर में लाओगादा आओगा बहा राजपूताना राइफल्स मा इग ने कारगिल आंदोगा महो अतिका के बने ना ही हुबे ही बचिता ला ने ईटानगर लॉकडाउन माचे हाउस कंट्रोलर सुबेदार दो ने ऑनरिक लेफ्टिनेंट कौन सिंह है अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पारनायक में बुनी ईटानगर से लॉकडाउन माने नया सर्टिफिकेट आज अपरा हा बदा आओगा आ मैं आहा इनु एचर का अंजो का सो माचे नुचे शुअलापू ईटानगर माचे लॉकडाउन मा हाउस कंप्यूटर जॉइमु माने तांदो प्रांबा जगदा ने गवर्नर में नर ओगादा आहोगा अरुणाचल प्रदेश माचे डिसेस्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एतनी ने अब एचला पुची जानवर ही माचे ने लिबा ईटानगर ने नाहलगन माचे तमको मामा अचाचा आदुनी काची इगा महो बुती तो दो ने आरवताओ ची पुआ ट्रेनिंग आही पगाम बदा आहोगा लीरू गे अमरु हुशु गे ऐदो ने इकशा आदुनी काची योगे महो काजी एपुए मिंगा नंब्रो दो ने इकशा तमको ची मुआ नंब्रो मैं आशा का ही नाव के बने अली आहिगा जिदा ला होगा तिराप डिस्ट्रिक्ट मचे अम्बेका बुए उताची के ने आ डिस्ट्रिक्ट मचे न्यू टॉपी अतिकाची अम्बापा हिंगथोंग फाउंडेशन लाएगा ऑर्गेनाइजेशन के में कैमरा आखा के ने अम्बेका काजी इगा सुपगला दा ला होगा चाजो लवांग ने सरा खोंगसाई में अम्बेका बुचिपुआ लिबाचा मंगानो लिबा जोगा चिदा ला होगा पपुम परे डिस्ट्रिक्ट माचे कृषि विज्ञान केंद्र में केंद्र दो ने साबुन आजूची पुआ ईटानगर जुलांग अतिको ने अब ऐचला पुची जानू ही माचे नीली बागे बने आही पगाम बमा बोरम ब्लॉक माचे अन्यरो मंगा सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर आलम्ब में आही तोगा मुदा ला होगा एशियन गेम्स ताऊ मंगा अहोमा कमलजीत ने सुरुचि सिंह याकुमेया अपगला इंडिया माचे टीम में मीटर पिस्तुल ओमगा माचे गोल्ड मेडल आने तेगा बमाहो नीरज कुमार ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमार धोने रुद्राक्ष पाटिल अप्रगला टीम में सिल्वर मेडल एदोने टेबल टेनिस माब मेडल चिवदा ला होगा हॉकीमा इंडिया माचे याको लंबर में जापान आने एदोने कबड्डी माब इंडिया में नेपाल आने का बदा आहोगा एतनसी इदमिश्मी आहो अलीमाओ दबाए
1: HVM

0: HIV embe chipo asawe auda kaga
1: HIV hembe he HIV gila mingi iyu gadoga ga kandune jituga ga HIV hembe gila injection tapo BGG thadoga ga mane HIV ki ali oda HIV hembe gila nani me a ga mane kha dogai
0: HIV embe he japa ji ge akonwe ga ge japa hatuga ge ai oda ne arondo me thoba mane HIV embe ki gumi
1: Aline HIV hembe gi jingaji tamako atusuwe arunda kaga hembe gi obojama asaga geigo aboengo yabu ijiga atuchitoga hiwe HIV hembe yijimi kaba asaga alaziji tamako agutene atusuji icha HIV hembe chipuma ichibu asawoda ugaibuya he National AIDS helpline chi number kage jiro kini uma call eji icha koba he Arunachal Pradesh State AIDS Control Society, Department of Health Services, Nahalagan Machi Me Lahega.
2: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें इर्द मिश्री भाषा में इस वक्त अपने हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर जहां हम करते हैं दिल से दिल तक और अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स तो चलिए गानों का सिलसिला शुरू करते हैं और सुनते हैं कुछ नए पुराने गाने फिल्मों की कहानी हो या जिंदगी का कोई हसीन पल गाना हर एहसास को और खूबसूरत बना देते हैं कभी प्यार का इजहार कभी जुदाई का दर्द कभी दोस्ती की मस्ती बॉलीवुड के गाने हमारी यादों का एक खास हिस्सा है तो चलिए शुरू करते हैं कोई मिल गया फिल्म का टाइटल सॉन्ग से पुनीत नारायण और KS चित्रा की आवाज में

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों इस गीत के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 4 बजे आप 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। साथ ही बता दूं दोस्तों इसी के साथ ही हम आज के दूसरी प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता नंद कुमार। और साथ ही बता दो दोस्तों इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा में। और तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएंगे आपके अपने RJ नूरी। तो दोस्तों अब मुझे यानी आपके रेडियो साथी RJ दुनिया को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz जहां होती है दिल से दिल की बात। साथ में एक और बार बता दो दोस्तों अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार।

बेस जंगर और को फाउंडर मई नई कंजर्वेशनिस्ट मई वाई चाजो लोवांग रनई सारा खोंसाई कंजर्वेशन कामवांग नंग लोकल मई थयोग मतानरो कचाई पांग बंगा मसो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कौनंग काम सोम रंगो फांद एशियन गेम्स नंग 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम कंपटीशन नंग इंडिया वंग कमलजीत रनई सुरुचि सिंह गोल्ड मेडल लाभद पर मेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन खेल नंग फंगलांग नीराज कुमार नई ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर रा रुद्रांग पाटिल सिंह सिल्वर मेडल लाभद पर जो इंडिया रो टेबल टेनिस खेल नंग नई स्क्वास खेल नंग दो मेडल लाभद आरो वोमेन्स हॉकी टीम रो फंगलांग जापान पर 3-1 गोल्ड में चेतुंगो रोड रुंगलांग इतना थुमरा

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।
2: दोस्तों, हर शाम अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है और बस हमें जरूरत है उस उम्मीद को महसूस करने की। श्रोता दोस्तों, तांसा श्रोताओं के समाचार के बाद आप सभी का इस खुशनुमा समय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी ईटानगर के तीसरी प्रसारण सभा में। उम्मीद है कि दिन भर की भागदौड़ के बाद अब आप अपने इस रेडियो साथी के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताने के लिए तैयार होंगे। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी RJ बामिन सुम्पी का, जिन्होंने अपना प्रसारण संपन्न करते हुए स्टूडियो को जिम्मेदारी से मुझे यानी आप सबकी अपनी RJ नूरी, हमारे प्रसारण अधिकारी श्री पी डोले और तकनीकी अभियंता श्री गोलो कोलो को सौंपी है। तो आइए शाम के इस सफर को शुरुआत करते हैं खबरों, इतिहास, उपयोगी जानकारी और जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने वाली कुछ खूबसूरत बातों के साथ। गुड इवनिंग ईटानगर के साथ।
3: गुड इवनिंग ईटानगर।
2: तो श्रोता दोस्तों, सफर शुरू हो चुका है आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी तीसरी प्रसारण सभा की और मैं हूं आप सबके साथ चलने को तैयार RJ नूरी। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग ईटानगर और अब समय है अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख खबरों से आपको रूबरू कराने का। दोस्तों, सबसे पहले राजधानी ईटानगर से कुछ महत्वपूर्ण खबर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर में 40 चयनित अरुणाचली विद्यार्थियों को सोमनाथ यात्रा के लिए रवाना किया। यह यात्रा शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के उद्देश्य से आयोजित की गई है। विद्यार्थियों को गुजरात में सोमनाथ सहित विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों से परिचित होने का अवसर मिलेगा। अब बात आपदा प्रबंधन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल की। अरुणाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ईटानगर और नाहरलगुन के 5 अस्पतालों में हॉस्पिटल मॉक एक्सरसाइज शुरू की जा रही है। भूकंप और बहुआपदा जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस अभ्यास में राहत, बचाव, निकासी और सामूहिक हताहतों से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा। इस अभ्यास में NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्वास्थ्य विभाग की टीमें शामिल होंगी। विभाग ने आम जनता और अस्पताल में मौजूद मरीजों तथा उनके परिजनों से अपील की है कि वे वास्तविक आपदा न समझें और अभ्यास में सहयोग करें। अब शिक्षा से जुड़ी खबर। ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन यानी ANSU द्वारा 24 सितंबर को ईटानगर कैपिटल रीजन में 12 घंटे के बंद का आयोजन किया गया था, जिसका असर राजधानी क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पर पड़ा। संगठन ने शिक्षा से जुड़े कई मुद्दे उठाए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बंद को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए शिक्षा संबंधी चिंताओं पर बातचीत के लिए छात्र संगठन को आमंत्रित किया है और शिक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया है। वहीं सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण खबर। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने वास्तविक बैंक हड़ताल को देखते हुए सितंबर माह के वेतन, मजदूरी और पेंशन का भुगतान अग्रिम रूप से जारी करने का निर्णय लिया है। यह भुगतान नियमित कर्मचारी

के साथ साथ कैजुअल संविदा कर्मचारियों और परेशान पेंशन भोगियों के लिए भी है। बैंकिंग सेवाओं में 28 से लेकर 30 सितंबर के दौरान संभावित व्यवधान को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज के अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें समाचार पत्रों के हवाले से। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग ईटानगर। चलिए अगले सेगमेंट से जुड़े, उससे पहले सुनते हैं प्यारा सा गीत।

श्रोता दोस्तों, आप बने हुए हैं आप सबकी अपनी आवाज अरुणाचल की अपनी आवाज अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर, जहां खबरें हैं आपके शहर की और आवाजें हैं आपकी और किस्से कहानियां हैं और गीत संगीत हैं। दोस्तों, अब समय है हमारे अगले दिलचस्प सेगमेंट की, आज का इतिहास का। तो चलिए जानते हैं जब 25 सितंबर की तारीख इतिहास के पन्नों में अपने साथ क्या क्या खास लेकर आई है। दोस्तों, आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने सतत विकास के लिए दो

2030 एजेंडा को अपनाया था। इसी एजेंडे के तहत दुनिया को बेहतर, अधिक समान और टिकाऊ बनाने के 17 सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए गए। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन उन फार्मासिस्टों के योगदान को सम्मान देने का अवसर है जो दवाइयों के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, भारत के लिए भी 25 सितंबर एक महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। उनके जन्म दिवस को भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मूल भाव है समाज के लिए अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याण का लाभ पहुंचाना। और अब एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य। 25 सितंबर 1858 को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच पहली सफल ट्रांस अटलांटिक टेलीग्राफ केबल के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान हुआ था। सोचिए, आज जब संदेश कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच जाता है, उस दौर में समुद्र के पार संदेश भेजना कितना बड़ा तकनीकी चमत्कार रहा होगा। तो दोस्तों, इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है, वह हमें यह समझने का अवसर देता है कि आज हम कहां हैं और कल हमें कहां जाना है। इसी सोच के साथ श्रोता दोस्तों, आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ईटानगर के FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर। अगले सेगमेंट की ओर बढ़े इससे पहले लीजिए सुनिए एक प्यारा सा गीत, और इस प्यारे से गीत के बाद हम आपके साथ साझा करेंगे आसान और खुशहाल जिंदगी की छोटे छोटे राज़।

0: तो दोस्तों, गीत संगीत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और लाइफ हैक्स का यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आज की शाम आरजे नूरी के साथ। दोस्तों, शाम हो चुकी है। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या अच्छी जिंदगी का मतलब सिर्फ अच्छी नौकरी, अच्छा घर और बैंक बैलेंस है? शायद हाँ या कभी कभी शायद नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे पास होते हुए भी अगर रिश्तों में सुकून नहीं है तो मन में शांति नहीं है और हम हर समय तनाव में हैं तो जिंदगी थोड़ी अधूरी सी लग सकती है। इसलिए आज के लाइफ टिप्स में बात करेंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतों की जो हमारी जिंदगी को सिर्फ आसान नहीं बल्कि खुशहाल भी बना सकती है। दोस्तों, टिप नंबर वन है कि अपने लोगों के लिए समय निकालिए। दोस्तों को हमेशा लंबी कॉल की जरूरत नहीं होती, कभी एक छोटा सा संदेश भी काफी होता है। कैसे हो, बहुत दिन हो गए, याद आ रही थी। रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें थोड़ा समय, थोड़ा ध्यान और कभी कभी बस एक फोन कॉल चाहिए होता है। दोस्तों, अगला टिप हम बात करेंगे, परिवार को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। हम अक्सर बाहर की दुनिया में सबसे ज्यादा विनम्र होते हैं और घर पहुंचते ही अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं। याद रखिए, घर वो जगह है जहां हमें अपना बेहतर रूप दिखाना बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ अपना थका हुआ रूप। कभी माँ बाप से बैठकर बात कीजिए, बच्चों से पूछिए कि उनका दिन कैसा रहा, जीवन साथी से पूछिए कि आज तुम्हारा दिन कैसा था। कभी कभार हम घर की स्त्री को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कहते हैं करती ही क्या है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वही स्त्री भले ही बाहर काम ना करे, टेबल पर खाना लाने का कोई वो काम ना करे, लेकिन उन्होंने आपके घर को संभाला है, पूरे संसार को संभाल के रखा है ताकि आप थका हुआ हरा हुआ आए तो सुकून की चेन घर में ले सके। तो उनसे भी जरूर पूछिए कि आज तुम्हारा दिन कैसा था। अगर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो आपके दिल को भी सुकून जरूर मिलेगा। तो छोटे सवाल लेकिन रिश्तों में बड़ी गर्माहट ला सकते हैं ये छोटी छोटी चीजें। तो दोस्तों, हर बात पर सहमत होना जरूरी नहीं है, लेकिन असहमति भी सम्मान के साथ व्यक्त की जा सकती है। किसी वरिष्ठ की उम्र, अनुभव या पद का सम्मान करना हमारी अपनी परवरिश और व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। और याद रखिए, सम्मान देने से हमारी हैसियत छोटी नहीं होती बल्कि हमारा व्यक्तित्व बड़ा दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, ये थे जिंदगी को बेहतर बनाने के कुछ लाइफ टिप्स। तब वक्त हो चला है हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनने का और उसके बाद नोक्ते में समाचार सुनने का। बने रहे आकाशवाणी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान

0: से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। अरुणाचल प्रदेश के कई पान्योर जिले में एक नए पुष्पीय पौधे की प्रजाति बेगोनिया निलमोरम की खोज हुई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पारनायक ने ईटानगर स्थित लोकभवन में सूबेदार एवं मानद लेफ्टिनेंट करण सिंह हाउस कंट्रोलर लोकभवन को राज्यपाल प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। अरुणाचल प्रदेश सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग आज से 28 सितंबर तक ईटानगर नाहरलगन के 5 अस्पतालों में अस्पताल मॉक एक्सरसाइज आयोजित कर रहा है। तिरप जिले में समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हिंगथोंग फाउंडेशन ने न्यू तुपी गांव में सामुदायिक वन में रहने वाले वन्य जीवों के दस्तावेजीकरण और निगरानी के लिए कैमरा ट्रैपिंग पहल की शुरुआत की। तवांग जिले के मागो और सेला क्षेत्रों में उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों के आसपास तथा उनके निचले इलाकों में रहने वाले समुदायों की तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के जोखिमों पर 5 दिवसीय जागरूकता एवं संवेदनशील कार्यक्रम आयोजित। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबसे योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा।
0: श्री मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांव में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिनमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पेश है ये रिपोर्ट।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और RSS के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
0: अरुणाचल प्रदेश के कई पान्योर जिले में एक नए पुष्पीय पौधे की प्रजाति बेगोनिया निलमोरम की खोज की गई है। ये प्रजाति समुद्र तल के करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर कई नदी के किनारे पाई गई है। उप मुख्यमंत्री चौहान मेन ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा है कि इस पौधे की नई प्रजाति

0: का नाम निशी समुदाय के नीलाम वंश के नाम पर रखा गया है। स्थानीय स्तर पर इसके कोबिर होपू बाबराय के नाम से जाना जाता है। श्री मैन ने कहा है कि इस खोज के साथ पूर्वोत्तर भारत में दर्ज की गई बेगोनिया प्रजातियों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। उन्होंने कहा है कि यह खोज अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता को रेखांकित करती है और अपनी प्राकृतिक विरासत के दस्तावेजीकरण तथा संरक्षण में स्थानीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाती है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टायट केटी पारनायक ने ईटानगर स्थित लोकभवन में सूबेदार एवं मानद लेफ्टिनेंट कर्ण सिंह हाउस कंट्रोलर लोकभवन को राज्यपाल प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। यह सम्मान उन्हें उनके विशिष्ट सैन्य सेवा और लोकभवन के कुशल प्रबंधन में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। उन्हें बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा है कि सूबेदार एवं मानद लेफ्टिनेंट कर्ण सिंह समर्पण, अनुशासन, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा जैसे मूल्यों के प्रतीक है जो भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपराओं को परिभाषित करते हैं। कारगिल युद्ध के अनुभवी और राजपूताना राइफल्स के गौरवान्वित सैनिक कर्ण सिंह ने चुनौतीपूर्ण ऑपरेशनल परिस्थितियों में साहस और प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र की सेवा की है। अरुणाचल प्रदेश सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग आज से 28 सितंबर तक ईटानगर और नाहरलगुन के 5 अस्पतालों में अस्पताल मॉक एक्सरसाइज आयोजित कर रही है, जिसका उद्देश्य भूकंप और बहुआपात स्थिति के दौरान आपदा से निपटने की तैयारियों, आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा अस्पतालों और विभिन्न प्रतिक्रिया एजेंसियों के बीच समन्वय को परखना और मजबूत करना है। इस अवसर पर और इस अभियान के दौरान भूकंप, बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने, आग लगने, खोज और बचाव अभियान, निकासी तथा बड़े पैमाने पर हताहतों के प्रबंधन सहित विभिन्न आपातकालीन स्थितियों को कृत्रिम रूप से अभ्यास किया जाएगा। आम जनता और मरीजों से अनुरोध किया गया है कि वे इन कृत्रिम आपातकालीन परिस्थितियों को वास्तविक आपदा न समझें और न घबराएं। तिरप जिले में समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिंगतोंग फाउंडेशन ने न्यू तूपी गांव में सामुदायिक वन में रहने वाले वन्यजीवों के दस्तावेजीकरण और निगरानी के लिए कैमरा ट्रैपिंग पहल शुरू की है। हिंगतोंग फाउंडेशन तिरप जिले में स्थित एक पंजीकृत गैर लाभकारी संस्था है। इसके सह संस्थापक और संरक्षणवादी चाजो लोवांग तथा सारा खोंगसाई पिछले 5 वर्षों से जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तवांग जिले के मागो और सेला क्षेत्रों में उच्च जोखिम वाले हिमनद झीलों के आसपास तथा उनके निचले इलाकों में रहने वाले समुदायों की तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF के जोखिमों पर 5 दिवसीय जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का समापन लुंगला के दोंगसेन मैंग स्थित SSB आउटपोस्ट में हुआ, जिसमें सशस्त्र सीमा बल के जवानों और स्थानीय समुदायों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए तवांग जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी गेंदन सोमो ने संवेदनशील निचले इलाकों में रहने वाले समुदायों के बीच ग्लोव के जोखिमों को लेकर जागरूकता और तैयारी के महत्व पर जोर दिया। मेक इन इंडिया पहल आज 12 वर्ष पूरे कर रहे हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किया गया था। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान में नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीत लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। वहीं पुरुषों के 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय इंदु चुकू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड दैट विकसित भारत कैन बी रियलाइज्ड ओनली विद द कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. Mr. Modi highlighted

श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के ईटानगर द्वारा प्रसारित हिंदी, अंग्रेजी तथा नोक्ते भाषाओं में समाचार सुनने के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं आकाशवाणी के एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर, जहां होगी दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। और आज के सफर में शाम को और भी खुशनुमा बनाने के लिए आप और मैं यानी कि आरजे नूरी चलेंगे साथ साथ। और कार्यक्रम इस वक्त आपके लिए जो पेश करेंगे वो है इवनिंग ड्राइव।

0: समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।
1: तो दोस्तों, शाम का वक्त है। दिन भर के भागदौड़, काम की थकान और जिम्मेदारियों के बीच शायद अब आप भी अपने घर की ओर लौट रहे होंगे या फिर किसी सफर पर होंगे। ऐसे में आज इवनिंग ड्राइव में कुछ ऐसी बातें, यानी कि ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और रिश्तों को थोड़ा और खूबसूरत बना सकती हैं। दोस्तों, पड़ोसी सिर्फ वो व्यक्ति नहीं है जिसका घर आपके घर में, यानी कि घर के बगल में है। कई बार मुश्किल वक्त में सबसे पहले हाल पूछने वाला, सबसे पहले मदद के लिए आगे आने वाला कोई पड़ोसी ही होता है। इसलिए कभी मिलते हुए एक छोटी सी मुस्कान, एक नमस्ते, त्योहार पर एक शुभकामना, या कभी कभी बस इतना पूछ लेना कि सब ठीक है, यकीन मानिए रिश्ते बनाने के लिए हमेशा बड़े जेस्चर्स की जरूरत नहीं होती, यानी कि बड़े बड़े गिफ्ट्स देने की जरूरत नहीं होती। बस दिन भर में अगर कहीं मिल जाए तो ये बस पूछ लेना कि आप सब ठीक हो ना, बस ये काफी होता है एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। दोस्तों, काम की जगह पर कंपटीशन होना बहुत स्वाभाविक है। कौन बेहतर है, कौन बेहतर कर सकता है, या अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और बॉस के चहेते बनना चाहते हो तो कंपटीशन तो बनता है। लेकिन हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा भी झेल रहा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं अंग्रेजी में अनसीन बैटल्स। इसलिए किसी भी या किसी की गलती देखकर तुरंत आलोचना करने के बजाय कभी एक बार पूछकर देखिए, क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूं या कर सकती हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के जमाने में एम्पैथिक, यानी कि एम्पैथी रखना, एम्पैथेटिक होना, शायद ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा गुण है जो हम अर्जित ही नहीं कर पा रहे हैं, या एक ऐसा टैलेंट है जिसको हम अपना ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, एम्पैथी रखना, एम्पैथेटिक होना, अपने कलीग्स के साथ साझेदारी निभाना बहुत बड़ा टैलेंट नहीं है, बस थोड़ा सा महसूस करना जरूरी होता है। और हाँ, अगर किसी सहकर्मी ने अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। भले ही वो आपसे बेहतर है, कंपटीशन में आपसे जीत गया, लेकिन उससे आपको सीखने को भी तो कुछ तो मिला ना। इसलिए थैंक्स बोलना कभी मत भूलिए, और साथ ही साथ उसे तारीफ एक चेहरे पर एक प्यारी से मुस्कान के साथ अगर हम तारीफ करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, और उनकी चेहरे पर जो मुस्कान है ना, उसकी वजह से हमारे दिल में भी सुकून आ जाता है। दोस्तों, इसलिए किसी की उपलब्धि की सराहना करने से आपकी अपनी चमक कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ने लगता है। बल्कि एक अच्छा शब्द किसी के पूरे दिन को बेहतर बना सकता है, और किसी के दिन को बेहतर बनाकर आप बेहतर महसूस न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ट्राई कीजिए, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया हो, अगर आपके वर्क प्लेस पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है और कॉम्पिटिशन के बावजूद भी अगर आपके मन में प्यार लेकर अगर आप किसी कॉलीग को इस तरह से ट्रीट करते हैं तो कैसा महसूस होता है और आपको वापस क्या मिलता है, ये भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं इवनिंग ड्राइव मेरे साथ, यानी आप सबकी अपनी रेडियो साथ ही आरजे नूरी के साथ कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में, और आप सबके चहेते चैनल, आप सबकी आवाज अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। बातें तो होती ही रहेगी, क्योंकि बातें करना मुझे भी अच्छा लगता है, और भले आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये गाना आपको जरूर अच्छा लगेगा।

ही है। अगर ये हमसे कोई कहे तो एक सवाल मन में आता है कि सच में हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। चलिए मान लेते हैं किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपकी आलोचना कर दी यानी कि क्रिटिसाइज कर दी, या किसी ने आपको गलत समझ लिया, तो क्या हर बात का जवाब देना जरूरी है? आप कह सकते हैं हाँ जवाब देना तो जरूरी है, लेकिन किसी बहुत ही समझदार व्यक्ति ने कहा है कि शायद नहीं। कभी कभी सबसे समझदार जवाब होता है एक गहरी सांस, एक छोटी सी मुस्कान और थोड़ी सी खामोशी, क्योंकि हर बहस जितना जरूरी नहीं, कभी कभी अपनी शांति बचाना ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि आपके मन को शांत रखने के लिए और मन को सुकून में रखने के लिए कभी कभी बहस करना जरूरी नहीं होता। यानी कि बहस करना मतलब हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। मान लेते हैं कि आपको बुरा लगा, लेकिन बुरा लगा और आपने भी दो बातें सुना दी, फिर सामने वाले ने भी आपको चार सुनाई, तो इस तरह से तो ये बहस बढ़ता ही जाएगा। इसलिए हर बहस जीतना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी शांति बचाना, मन का जो सुकून है उसे बचाना ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों आप सभी तो जानते ही हैं थैंक यू यानी कि धन्यवाद और माफ कीजिए यानी कि सॉरी कह देने में देर मत कीजिए। कहते हैं ना दो बहुत छोटे शब्द लगते हैं, आई एम सॉरी बोलना या थैंक यू बोलना, लेकिन इन दो शब्दों में रिश्तों को संभालने की बहुत ताकत होती है। किसी ने आपकी मदद की है, दिल से धन्यवाद कहिए। आपसे गलती हुई है, बिना ईगो के माफी मांग लीजिए, और माफी मांगना कमजोरी नहीं, ये भी आपके दिल में जरूर रखिए, बल्कि यह दिखाता है कि आपके लिए रिश्ता आपके ईगो से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए रिश्ता यानी कि रिश्ता कायम रखना ज्यादा जरूरी है या अपने ईगो को बनाए रखना ज्यादा जरूरी है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और आजकल हम सभी मोबाइल से बहुत प्यार करते हैं। हम ये कहते हैं ना कि अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, अपनी महबूबा से बहुत सारा प्यार करते हैं, लेकिन अपने बाद शायद अगर हम आज बहुत सारा प्यार करते हैं तो वो है हमारा मोबाइल। इसलिए कहते हैं मोबाइल को रिश्तों के बीच दीवार मत बनने दीजिए, क्योंकि दीवार बनता जा रहा है। जरा एक तस्वीर सोचिए, यानी कि एक ऐसा सीन सोचिए, एक कमरे में चार लोग बैठे हैं और चारों अपने अपने मोबाइल में व्यस्त है। साथ तो है लेकिन एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कभी कभी फोन को थोड़ा नीचे रखिए, सामने बैठे इंसान की तरफ देखिए और सचमुच उसकी बात सुनिए, क्योंकि ऑनलाइन कनेक्शन बहुत है लेकिन दिल से जुड़े कनेक्शंस आज भी बहुत खास हैं। भले ही हम सोचे कि क्या जरूरत है, जो वर्चुअल दुनिया है उसी में खुश हूं, लेकिन जब हम असलियत में आते हैं तो अपने ही काम आते हैं। और जब हमारी बारी होती है कि हमें कोई सुने तो सुनने वाला चाहिए होता है, तो जब हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा हो जो हमें सुने, तो हम भी शुरुआत करते हैं सुनने वाला बने। ये आकाशवाणी का अरुण FM 103.1 MHz पर आप बने हुए हैं आरजे नूरी के साथ इवनिंग ड्राइव कार्यक्रम में। चलिए बातों ही बातों में एक और गीत के वक्त का हो गया है।

दोस्तों से, अपने अपनों से, बुजुर्गों से, अपने कॉलीग्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, उनके सम्मान करना, उससे प्यार से बात करना, मुस्कुरा कर बात करना, अगर कुछ अच्छा करे तो उसे सराहना, और आपकी मदद की तो थैंक यू बोलना, और आपसे गलती हो जाए उनके प्रति तो सॉरी बोलना। ये तो बहुत लोग बात करते हैं कि लोगों के साथ मीठे बोल बोलो, टोल मोल के बोलो, अच्छी तरह बोलो, अच्छे से मिलो। कई बार जो भी बोलते हैं तो ऐसा ही बोलते हैं कि दूसरों से अच्छे से मिलो। क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम अपने आप किससे कैसे मिलते हैं, अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं? कभी खुद का सम्मान करते हैं? कभी खुद से सॉरी बोला है? या कभी आपने आप को ही आई लव यू बोला है? बहुत अटपटा सा लगता है, लेकिन बहुत जरूरी है दोस्तों। अपने आप से प्यार करना, अपने आप को माफ करना, अपने आप को सराहना देना कि तुमने अच्छा किया आज। अपने आप से रिश्ता पहले अच्छा बनाओ तो लोगों के साथ का रिश्ता भी अपने आप सुधर जाएगा। ये मेरा मानना है, आपका मानना अलग हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि पहले अपने आप से प्यार करो, अपनी इज्जत करना सीखो, अपने आप को कभी गलती हो जाए तो माफ करना सीखो। तो जिंदगी में लोगों को माफ करना, लोगों को थैंक यू बोलना और लोगों को माफ करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए कहते ना, दूसरों के लिए समय निकालते निकालते कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद को ही समय देना भूल जाए। थक गए हो तो थोड़ा आराम कीजिए, गलती हुई हो तो खुद को हमेशा दोष देते मत रहिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, यानी कि पीपल प्लीजर तो बिल्कुल नहीं बनना है, क्योंकि खुशहाल रिश्तों की शुरुआत अक्सर एक स्वस्थ रिश्ते से होती है, अपने आप से। एक क्लीन रिलेशनशिप अपने आप से हो तो सारे रिश्ते अपने आप ही क्लीन हो जाते हैं, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों, आज की इवनिंग ड्राइव की छोटी सी लाइफ टिप्स को एक बार फिर याद कर लेते हैं। दोस्तों को समय दीजिए, परिवार को महत्व दीजिए, वरिष्ठों का सम्मान कीजिए यानी कि बुजुर्ग का सम्मान कीजिए, पड़ोसियों से अपनापन रखिए, सहकर्मियों की सराहना कीजिए, गलती हो तो माफी मांगिए, मदद मिले तो धन्यवाद कहिए, और सबसे जरूरी, खुद को कभी मत भूलिए। अपने आप से प्यार करना, अपने आप से माफी मांगना, ये बहुत जरूरी है। अपनी इज्जत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। कभी एक फोन कॉल, एक मुस्कान, एक धन्यवाद, एक माफ कीजिए, या फिर बस 5 मिनट किसी अपने के साथ बैठकर बात करना काफी होता है। तो जहां भी हैं आप, आज शाम किसी एक अपने को जरूर याद कीजिएगा, शायद एक

छोटी सी बातचीत आपकी और उनकी शाम दोनों को थोड़ा बेहतर बना दे। तो दोस्तों, मैं हूं आप सबकी रेडियो साथी आरजे नूरी और आप सुन रहे हैं इवनिंग ड्राइव अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी ईटानगर पर। शाम को थोड़ा खूबसूरत बनाइए, रिश्तों को थोड़ा मजबूत बनाइए और जिंदगी को थोड़ा आसान बनाइए। जुड़े रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ, जहां होती है अच्छी अच्छी बातें, दिल की बातें गीतों के माध्यम से, और सुनते हैं कई सारे खूबसूरत गीत जो आपके दिन को, आपकी शाम को और आपकी रात को भी बेहतर बनाती है। चलिए सुनते हैं ये कार्यक्रम का आखिरी गीत, और आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे शाम की महफिल कार्यक्रम मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, शाम का वक्त कुछ ऐसा ही होता है जब दिन भर की व्यस्तता धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है और मन को मिलता है कुछ पल ठहरने का, कुछ पल सोचने का और कुछ पल बस महसूस करने का। आज की शाम के महफिल में हम बात करेंगे कुछ बस एक ऐसे शब्द की जो छोटा सा है।

लेकिन अपने भीतर भावनाओं की पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मन की, हमारे मन की। कभी मन चंचल होता है, कभी बेचैन, कभी किसी के इंतजार में, कभी किसी की याद में, और कभी बिना किसी वजह से खुश हो जाता है। तो आइए आज के गीतों के सफर में मन के कहीं अलग अलग रंगों को महसूस करते हैं। हिंदी सिनेमा के गानों में दिल, मन, सनम, ये कई सारे शब्द होते हैं जिसके बिना शायद कोई गाना बन ही नहीं सकता था। तो आज हम बात करते हैं कि फिल्मों में, यानी कि फिल्मी गानों में ऐसे कौन से गाने हैं जिसमें मन सेंटर थीम है। चलिए, हमने शुरुआत कर दी बुद्धू सा मन है के साथ। अगला गीत है जुबिन गर्ग की आवाज में, ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से एक बहुत ही जरूरी सूचना। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश भूकंप या अर्थक्वेक और मल्टी हैजर्ड इमरजेंसी सिनेरियो पर आधारित एक हॉस्पिटल मॉक एक्सरसाइज का आयोजन करने जा रहा है ईटानगर और नाहरलगन के कुछ अस्पतालों में। इस मॉक एक्सरसाइज में आपदा की तैयारी, इमरजेंसी रिस्पांस और डिजास्टर के दौरान हॉस्पिटल्स और अन्य इमरजेंसी एजेंसियों से कैसे संपर्क करना है या कैसे तालमेल रखना है, ये सारी चीजें बताई जाएगी। ये मॉक एक्सरसाइज कब और कहाँ होंगे? ये होंगे 24 सितंबर यानी 24 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे आरके मिशन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे हीमा हॉस्पिटल में, 25 सितंबर 2026 को यानी 25 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे हॉर्मिन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे नीबा हॉस्पिटल में, और 26 सितंबर 2026 यानी 26 सितंबर 2026 को सुबह करीब 11 बजे तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस ट्रीम्स नाहरलगन में। इस मॉक एक्सरसाइज में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अरुणाचल प्रदेश की देखरेख में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और हेल्थ डिपार्टमेंट भाग लेंगे, क्योंकि इस दौरान भूकंप आने से, आग लगने से या अन्य आपदा में जिस प्रकार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं उसी प्रकार से ही की जाएगी। इसीलिए सभी जनरल पब्लिक से ये अनुरोध करते हैं कि वे इस मॉक एक्सरसाइज को असली समझकर घबराए नहीं, और हॉस्पिटल्स के सभी पेशेंट्स और अटेंडेंट से भी निवेदन करते हैं कि वे हॉस्पिटल अथॉरिटी द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करें। ये सूचना डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

श्रोता दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है शाम की महफिल में। और आप सुन रहे हैं शाम की महफिल मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, मन को समझाना शायद दुनिया की सबसे मुश्किल कामों में से एक है। दुनिया को हम बहुत कुछ समझा लेते हैं, दूसरों को सलाह भी दे देते हैं, लेकिन जब बात अपने मन की आती हो तो कहीं मन अपनी ही धुन में चला जाता है। इसी बेचैन मन को एक बेहद खूबसूरत गीत के रूप में ढाला है। चलिए आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम शाम की महफिल में।

सचमुच मन को धैर्य सिखाना आसान नहीं है। कभी वो बीते कल में अटका रहता है तो कभी आने वाले कल की चिंता में। शायद किसी जिंदगी का संगीत भी इसी उतार चढ़ाव से बनता है और कभी कभी मन को कोई वजह भी नहीं चाहिए, बस मौसम थोड़ा सुहाना हो, रात थोड़ी खामोश हो और कोई पुरानी याद दस्तक दे दे तो मन अपने आप बहकने लगता है। दोस्तों, ऐसे एहसास को आवाज देता है ये बेहद खूबसूरत गीत। चलिए शाम की महफिल में अगला गीत मन की।

दोस्तों, कुछ गीतों में कहानी कम होती है लेकिन एहसास बहुत गहरा होता है, और यह गीत भी मन की उसी अनकही हलचल को बड़ी खूबसूरती से छू लेता है। दोस्तों, मन का रूप और भी है जब वह किसी की तलाश में हो। यह तलाश किसी इंसान की हो सकती है, किसी मंजिल की, किसी जवाब की, या फिर किसी ऐसी शांति की जिसे हम शब्दों में समझा नहीं पाते। अब सुनिए एक ऐसा गीत जिसमें मन की तरफ अपनी पूरी गहराई के साथ सुनाई देती है।

तो मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, आज की शाम की महफिल हमने सजाई थी एक छोटे से शब्द के नाम मन। लेकिन इस छोटे से शब्द ने हमें कितनी दूर तक पहुंचा दिया, कभी प्रेम तक, कभी यादों तक, कभी तन्हाई तक और कभी उम्मीद तक। शायद मन की यही खूबसूरती है, यह हर एहसास को जगह देता है। इसलिए अगर आज आपका मन कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात जरूर सुनिएगा, क्योंकि दुनिया की भीड़ में हम अक्सर सबकी सुनते हैं, बस अपने मन की आवाज कहीं पीछे छूट जाती है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ श्रोता दोस्तों, मैं कार्यक्रम शाम की महफिल को बस यही तक समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों, सफर अभी जारी है आकाशवाणी के रेड एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। अगला कार्यक्रम है बैक टू बैक बॉलीवुड सॉन्ग्स को सुनने का। चलिए आइए शुरू करते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 MHz पर आप आनंद उठा रहे थे बैक टू बैक बॉलीवुड सॉन्ग्स फिल्म तहजीब से। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार, तो बने रहे आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 MHz पर।

श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र द्वारा प्रसारित आदि श्रोताओं के समाचार के बाद आपका स्वागत करते हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ एरवन एफएम पर, जहां आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के कलाकार। दोस्तों, आज के कलाकार कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं ऐसे कलाकारों को जिन्हें आप जानते हैं या कुछ ऐसे जो भूले बिसरे से हैं, लेकिन आज हम ऐसे कलाकार की बात करेंगे जो आज के दिलों का धड़कन है। जी हाँ, एक ऐसा लड़का जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसके सामने एक अच्छी खासी नौकरी का रास्ता था, जिसके पिता पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम थे, लेकिन उस लड़के ने तय किया नौकरी नहीं कैमरा चुनना है, यानी कि कैमरे के आगे आना है। और दिलचस्प बात यह है कि फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद भी उसने सीधे कैमरे के सामने आना पसंद नहीं किया। पहले कैमरे के पीछे खड़ा हुआ, फिल्म बनते हुए देखी, कहानी को समझा और फिर एक दिन खुद कहानी का हिस्सा बन गया। आज वही लड़का हिंदी सिनेमा के उन अभिनेताओं में शामिल है जिन्होंने कभी एक सैनिक बनकर, कभी स्वतंत्रता सेनानी बनकर, कभी दोस्त बनकर, तो कभी एक आम इंसान के किरदार में दर्शकों को अपने अभिनय से प्रभावित किया है। और शायद उनकी सबसे खास बात यही है, यानी कि विकी कौशल को देखकर अक्सर लगता है कि हम अभिनेता को नहीं किरदार को देख रहे हैं। और अब इस बात का साबित फिल्म सैम बहादुर देखकर हो जाता है। हमें ऐसा नहीं लगता कि विकी कौशल खड़े हैं सामने किरदार में, हमें ऐसा लगता है कि सैम बहादुर खुद पर्दे पर है, ऐसे दमदार अभिनेता है। लेकिन इस अभिनेता की कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। एक साधारण से बचपन से शुरू हुआ यह सफर, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, एक छोड़ी हुई नौकरी, फिल्मों के पर्दे के पीछे की दुनिया और फिर मसान से मिली पहचान तक पहुंचा। इसके बाद राजी, संजू, उड़ी, द सर्जिकल स्ट्राइक, सरदार उधम, सैम बहादुर जैसे किरदारों ने यह साबित किया कि विकी कौशल सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक हर एक नए किरदार के साथ खुद को नए सिरे से गढ़ने वाला कलाकार है। तो आखिर क्या था उस लड़के में जिसने इंजीनियरिंग की डिग्री तो हासिल की लेकिन अपना भविष्य किसी ऑफिस में नहीं बल्कि फिल्मों की दुनिया में देखा। आज के कलाकार कार्यक्रम में जानेंगे कहानी विकी कौशल की और सुनेंगे फिल्म जुबान, एक खास फिल्म है विकी कौशल की, उस फिल्म के कुछ हसीन नगमे आप तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों, एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जिसने मंजिल पाने से पहले फिल्मी दुनिया को बहुत करीब से समझा, संघर्ष किया और फिर अपनी पहचान अपने अभिनय के दम पर बनाई। तो आइए खोलते हैं विकी कौशल की फिल्मी जिंदगी के कुछ ऐसे पन्ने जहां संघर्ष भी है, सफलता भी और कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से भी जो शायद आपने पहले न सुने हो। तो मैं हूं आप सबकी अपनी रेडियो साथी आरजे नूरी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से। चलिए शुरू करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, विकी कौशल का जन्म 16 मई 1988 को हुआ। उनके पिता श्याम कौशल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्शन डायरेक्टर हैं, जबकि उनके छोटे भाई सनी कौशल भी अभी नेता हैं। फिल्मी माहौल से जुड़े परिवार में जन्म लेने के बावजूद विकी का बचपन बेहद साधारण सा रहा। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उनके सामने एक स्थिर नौकरी का रास्ता था तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका मन किसी ऑफिस की नौकरी में नहीं बल्कि अभिनय की दुनिया में है, और यहीं से शुरू हुआ उनके सपने का असली सफर। कैमरे के सामने आने से पहले कैमरे के पीछे विकी ने सीधे अभिनेता बनने की जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने फिल्म निर्माण को बहुत करीब से समझने के लिए निर्देशक अनुराग कश्यप के साथ काम किया। साल 2012 में आई गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया, यानी अभिनेता बनने से पहले उन्होंने फिल्म बनाने की प्रक्रिया को करीब से देखा और समझा। शायद यही अनुभव आगे चलकर उनके अभिनय की बारीकियों को समझने में भी काफी काम आया। साल 2015 में आई फिल्म मसान विकी कौशल के करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनी। फिल्म में उन्होंने दीपक कुमार का किरदार निभाया, एक छोटे शहर का युवा, उसकी भावनाएं, उसके सपने, उसका प्यार और उसके संघर्ष। विकी ने इस फिल्म को इतनी सहजता से निभाया कि दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने उनके अभिनय को सराहा। मसान के बाद लोगों को महसूस हुआ कि हिंदी सिनेमा को एक ऐसा अभिनेता मिल गया है जो सिर्फ संवाद बोलने के लिए नहीं बल्कि किरदार को जीने के लिए तैयार है। इसी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू सहित कई सम्मान मिले। दोस्तों, आगे भी कई

दोस्तों आज के कलाकार, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के कलाकार कार्यक्रम में विकी कौशल की। अगर उनकी करियर की बात करें तो विकी कौशल के लिए साल 2018 बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस एक साल में उनकी कई अलग अलग भूमिकाएं दर्शकों के सामने आई। राजी में उन्होंने एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी इकबाल सैयद का किरदार निभाया। इसके बाद आई संजू, इस फिल्म में उन्होंने कमली का किरदार निभाया जो संजय दत्त के बेहद करीबी दोस्त के रूप में दिखाया गया था। यह भूमिका इतनी प्रभावशाली रही कि फिल्म के मुख्य किरदार के साथ साथ विकी का अभिनय भी खूब चर्चा में रहा। फिर आया साल 2019। साल 2019 में रिलीज हुई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में ने विकी कौशल को देश भर में बड़े स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। फिल्म में उन्होंने मेजर विहान सिंह शेरगिल की भूमिका निभाई। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, संवाद अदायगी और दमदार अभिनय ने दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। फिल्म का संवाद हाउस द जोश तो जैसे युवाओं की जुबान पर ही चढ़ गया। हर कार्यक्रम में कोई ना कोई इस जोश दिलाने वाले स्लोगन का इस्तेमाल जरूर करता है। और इस फिल्म ने विकी कौशल को बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिलाया। दोस्तों किरदार बदलते गए और अभिनेता निखरता गया। विकी कौशल की खासियत रही कि उन्होंने खुद को किसी एक तरह के किरदार में बांध कर नहीं रखा। सरदार उधम में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह का किरदार निभाया। फिल्म के लिए उनकी तैयारी, उनके भाव और उनकी गंभीर प्रस्तुति को काफी सराहना मिली। इसके बाद सैम बहादुर में उन्होंने फिल्म मार्शल सैम मानेकशॉ की भूमिका निभाई। यह किरदार उनके लिए सिर्फ वर्दी पहनने के या पहन लेने तक सीमित नहीं था। उन्हें सेम मानेकशॉ की बॉडी लैंग्वेज, आवाज और व्यक्तित्व को समझने पर विशेष ध्यान देना पड़ा। फिर दंकी, जरा हटके जरा बचके, बैड न्यूज जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय के अलग अलग रंग दिखाए। विकी कौशल ने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें बचपन से ही गहरे पानी से डर लगता था, लेकिन मसान के दृश्य में उन्हें पानी में उतरना था, इसलिए उन्होंने तैरना सीखा और अपने डर का सामना किया। यानी किसी चीज से डर लगता है या किसी चीज से डर लगता था, उसी को उन्होंने अपने काम के रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया और शायद यही बात विकी कौशल के सफल सफर को और दिलचस्प बनाती है। डर हो सकता है, लेकिन सपने उससे बड़े होने चाहिए। यानी कि डर के आगे जीत है, इस बात को उसने सचमुच जिया। फिल्मों के अलावा विकी कौशल अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी अक्सर काफी चर्चा में रहते हैं। उन्होंने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से 9 दिसंबर 2021 को शादी की। दोनों की शादी राजस्थान सवाई माधोपुर में हुई और यह समारोह काफी निजी रखा गया था। तो श्रोता दोस्तों, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से एक असिस्टेंट डायरेक्टर तक, एक संघर्ष करने वाले अभिनेता से मसान के दीपक तक, संजू के कमली से उरी के मेजर विहान तक, सरदार उद्धम से मेजर सैम बहादुर तक, विकी कौशल का सफर यही बताता है कि अभिनय केवल शहरी के पहचान नहीं बल्कि किरदार को समझने, उसमें उतरने और उसे ईमानदारी से पर्दे पर जीने का नाम है। और शायद इसी वजह से आज जब पर्दे पर विकी कौशल का नाम आता है तो दर्शकों को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक ऐसे किरदार देखने की उम्मीद होती है जो सच में ऐसा लगे कि ये विकी कौशल नहीं बल्कि वो किरदार जिस को पहनकर, जिसको पूरा निगल कर वो आया है, वो निखर कर आता है और लोगों को उम्मीद रहती है कि अच्छा जरूर होगा। इसी के साथ श्रोता दोस्तों, आपको बता दो आज के कलाकार में विकी कौशल की कहानी से हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, लेकिन विकी के कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि अपनी कमजोरी को और अपने डर को अपने मंजिल के बीच न आने दे, उसे भी अपना बनाकर मंजिल को पा लेने का जुनून होना चाहिए। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जुबान से। दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में यानी कि ठीक 7 बजे का समय रहेगा नेशी श्रोताओं के समाचार का, तो बने रहे आकाशवाणी के और एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगले कलाकार के साथ फिर मुलाकात होगी कल, लेकिन सफर आकाशवाणी के और एफएम पर जारी रहेगा। हम केवल आपसे इजाजत लेते हैं आज के
कलाकार कार्यक्रम से।

मित्र क्लास 675 किलो हर जोड़े सब है नस्यागम का मोदा निरख दुकान तन बमुलेंगम लिखता हूँ मृदन है और तो चौंग ने तपाता है नस्य पुयम हो कक तपाता है स्वयं का तंगा मालबो नस्य बेमिनम पुरा पोलिक सोलिग लोली चेम्नी लिटले लोंग आल ग न्यायो आल ग ओयम का कन मोदक नस्य पुयम नलदन तबायम का अगम होगा तपाता है न स्वयं का नस्य पुयसी Solo make in India bonaga nyirab ga kena maga anyinga nyili le nying duku hal hoga soga bon sam 2014 anyi ho India ga da sab global hub go with the design manufacturing hoga innovation ga bonam nyirab gal industries lo ay jago pulin jil acha amina lum han nga mga da ga uru soga pulin balin da ba mul nyirab ga kena mhal hoga anyi nyi uru soga puyam akaswani ga correspondent tulu ga gotam guma soga nyitu ka rolo ga nyitu lo ga tengkatain pal bila bon ka nyi gal sil sok sil lagta lam tangam ka apanyak num hal hog laga make in india 2.0 ga urilo apo so chem ni tel ah kan sectors urilo bona ni mel ali le ah gona manufacturing ho ho ga ali le ani gona service ga ta cho nim de ko hulin jik ko hal puye be pa do solo akashvani ga director general tup rajiv kumar jain akashvani srinagar ho north zone tul ga regional channel managers hit logo review dokum go dog yak nu kwa hal hoga so ga dokum so akashvani regional channels north zone tul ga bon kan ni nam anam pa go ho hoga think tan pak bak pa go ho gol bil tup rajiv jain begam regional managers hidam munye ga decentralized framework nim dab pav palin jinam ham al jab ni gnyat ka hal hoga regional managers ahi ga bon niklo hog nik ase ha hum hech chempa na mam rub ham gotam nyal hata den modam bunam se sob nig ak dukub dokum sim dok pakun help ye be pado अरुणाचल प्रदेश के कई पन्यर डिस्ट्रिक्ट के कई पबु बैर के 1000 मीटर सी लेवल आओ हो नितवो बेगोनिया अपू अक नीला

morum hala amina namgo kapale melin gan kubahal hoga soga pui sam deputy chief minister tupchona main hempel social media ho hil gole libab ne degam so pu sam kai panyor ge holunga kovir kovir bopu babrai hal chendo hab map di sam nisiro loga nilam nyovam pali pachile begonia nilam morum hal aminam pois pakon hal hoga sam notice india so hikom le begonia ga lunga cham cham til apinu kuba hal hoga sammalin melin jigam gab arunachal ga albo biodiversity gab la natural heritage ga mal jab le do bo nyok ak arunachal ga da se nil dot ku hal puye be pado मोहिला ईटानगर के लोक भवन हो गवर्नर तूप लेफ्टिनेंट जनरल के टी पटनायक गवर्नर साइटेशंस गाकेम हाउस कंट्रोलर सुबेदार ला ऑनरेडी लेफ्टिनेंट तूप करण सिंह ने मेग लोक भवन हम आज जब चुमल पाल ला रखिल दोग जिगम गब अकेम केस गन को बहल होगा तूप करण सिंह और योगी हिनाम पोत अलबो राजपूत रैपस के उरी लो बोन नील दोल होगा यूनम कारगिल वार हो हाकम अल बोन नील गदा गब सिली तो लीजिल बोन नील दोक वो हल पुए बे पादो तन बहुदन आकाशवाणी ईटानगर सो गन सुपुयम ताल दो दो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट एक डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सो पोल गलोली चमिले लो पीन आल हानम गब ईटानगर ला नहर लगन उरे लो आंगो हॉस्पिटल सोन्योमा मोद निदो इस दिदे रचे छि एम न्योबि हयम इस गुयम होगु हे निकिन अकिन देन हो पगो हो मॉक ड्रिल निल बरे नितम कातम ताइन हल हो गब सोसम निदुल अदुल दोयम हॉस्पिटल उरे ला लग्या हो दानिब दोन्या बो नि हे दनुला बोसिल हांग अचिया मा बका हेल्प गो दगो गोलिन जिग्नुक वा हेल्प ये वेपादो तिरप डिस्ट्रिक्ट न्यू तुपी नामपिन ग न्योरो उरु हो न्योरो एच अमीन कुबु पता सुदुम सरसत पातिग ऐ एच आंगाम चंद भनला डॉक्यूमेंटेशन गब कैमरा ट्रैपिंग ग बोनम निरब ग नुकवाहल होग सोग बोनसम नित निलेल हिंतोंग फाउंडेशन ग निग निग पकोन हल होगा सो ग फाउंडेशन सम कई काचल बन निग वो छाजो लवांग ला सारा खोंगसाई बुने बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन ग भन नाम पिन नि तुलु लगम अनि निंग दुकु बन नि दोले दो दो दुकुन हल पुये बे पादो कृषि विज्ञान केंद्र पापुम पारे गए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम गो कैंडल ला सोप मेकिंग पुलिन बलिन नाम गो तमसिर हो निग बोनम जुलंग बोलो निग अग्ञाग नुकवाह होगा सो ग ट्रेनिंग प्रोग्राम सो बुरुम ब्लॉक ग चमनी तिल आंगो सेल्फ हेल्प ग्रुप ग दन निबुम अगुम याग नुकवाह होग लगाव सो ग बोनसी सो पोली पोली ग लोली चमनी तिल लोह कन आल हानम ग बदन दुलुंगम अचामिन पुलिन लायल पोल बुल तिंक ताइन पाल अतिग नाम रंगोंगम कली कादाल दोला गम दकम निग अग जिताय कुन हेल्प ये विपादो एशियन गेम्स के सोका मिन्स को हो इंडिया गदा ग कमल जीत ला सुरुच सिंह बुनिये 10 मीटर्स एयर राइफल मिक्स्ड टीम ग अपका मिन्स को हो अविया लाइल गोल्ड मेडल ग अकेम पाग नुक बहल होगा तूप तूलु 50 मीटर राइफल ट्री पोजीशन टीम ग सोक हो नीरज कुमार ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर रुद्राक्ष पातिल बुल्ला सिल्वर मेडल ग अकेम पाग नुक बहल होगा इंडिया का टेबल टेनिस लस्कवा सोक होगा रुब अके पाक नुमहल होग लगा वेमेन्स हॉकी टीम ग जापान गम कम सोया गन कुबहल होगा वेमेन्स कबड्डी टीम कम नेपाल गदा गम सेमीफाइनल हो सोरी दुकु भन 13-17 पॉइंट्स हो गए लीड मुदु दुकु हल पुए विपादो स्विम गने से पुया है दुकु आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगा हर्ज होगा मीडियम वेव 444.4 मीटर गला 675 किलो हर्ज गए तन बहुत नुले नुसे अगम गए मोदाम तो दुदन सो को के मुले तंगम अल्बो स्विम गए नुसे बेमिन लो बर्म नाम हल्तुप बामंग लोरम गए बेनम लो अक्ता चू

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें

0: नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे हैं इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं फरतनाज। नमस्कार, आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरतनाज। आज का भारत युवा भारत है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और ये युवा सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, सपने पूरे करने वाला है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे मैदानों की जहां भारत दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। एक है खेल का मैदान और दूसरा है अंतरिक्ष का मैदान। जी हां, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं जो इस समय हमारे साथ हैं, इसरो के पूर्व निदेशक जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष सपने को सच होते हुए देखा है, डॉक्टर प्रमोद काले जी। नमस्कार प्रमोद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
8: नमस्कार।
7: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं खेल जगत के जाने माने विश्लेषक श्री जी राजा रमन जी। नमस्कार राजा रमन जी।
9: शुक्रिया फरहत।
7: तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रमोद जी से सबसे पहला सवाल करते हैं। सर, आपने इसरो को साइकिल पर रॉकेट ले जाने के दौर से देखा है, आज हम चंद्रयान के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा, और मंगलयान हमने पहली ही कोशिश में बहुत कम बजट में कर दिखाया। ये यात्रा युवाओं को क्या सिखाती है?
8: जो भी कुछ सपने होते हैं वो सच होने के लिए बहुत परिश्रम लेने पड़ते हैं, और तरक्की जब हमारे देश ने जो की है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है
7: जी।
8: एक तो जब हमने शुरुआत की हमारे सब टीम भी बहुत ही छोटी थी, पैसे भी कम थे, लेकिन सपने बड़े थे और आगे जाके क्या करना है इसका हमें पूरी तरह से ख्याल था।
2: जी सर।
8: चंद्रयान 3 जब चंद्र पर जाके उतरा अच्छी तरह से, उसमें से एक रोवर भी निकला, प्रज्ञान रोवर भी निकला, तब मैं तो सिर्फ टेलीविजन पे देख रहा था यहाँ घर बैठे, और तब मैं सोचता था कि इतने सालों में जो काम किया उसकी सफलता देखने को मिली है।
2: तो अब हम आगे बढ़ते हैं और राजारमन जी आपके पास चलते हैं, खेल की बात करते हैं। पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन आज कहा जा रहा है जो खेलेगा वही खिलेगा, तो ये बदलाव कैसे आया?
9: खेलोगे तो बनोगे लाजवाब, ये भी बोलने लग गए। अच्छी बात है कि 2014 के बाद एक सोच में बदलाव आया है, युवाओं में एक भरोसा आ गया है कि अगर हम खेलते हैं तो हमारा निजी जीवन बहुत बढ़िया चल सकता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट टॉप एथलीट्स के लिए बहुत है और युवाओं में एक एक्स्ट्रा ऊर्जा पैदा हो गया, पहले नहीं था ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन आज की पीढ़ी को ये समझ आ गया कि देश उनका बहुत इज्जत करता है, देश के नेता उनको बहुत इज्जत करते हैं, और इतना सम्मान और प्यार शायद खिलाड़ी को पहले कभी नहीं मिला।
2: सर ये बताइए आप कि सरकार खेलो इंडिया, मेरा युवा भारत, खेल महाकुंभ, फिट इंडिया और नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जैसी कई योजनाएं लेकर आई है, और इनसे क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या गांव के बच्चों को भी अब ओलंपिक का सपना देखने का मौका मिल रहा है?
9: प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने संबोधन में, ये कहा कि 5 से 15 साल के बच्चों को टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और फिर 2036 ओलंपिक गेम्स के लिए हम तैयारी करेंगे, अब से शुरू करेंगे। ये सोच बहुत अच्छी सोच है, पहले भी होता था टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, लेकिन अभी एक साइंटिफिक तरीके से होने लगा है, और युवाओं को ये समझ आया कि खेलने से इंसान की सेहत बनती है और शायद भविष्य भी बन जाती है।
2: बिल्कुल। और अब हम प्रमोद जी के पास वापस लौटते हैं और चांद की बात कर लेते हैं कि आज हम चांद से आगे निकल गए हैं, आदित्य L1 सूरज की स्टडी कर रहा है और 2035 तक हमारा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, तो इस भविष्य को आप कैसे देखते हैं?
8: बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। आदित्य जो है वह पृथ्वी से बहुत ही दूर है, लेकिन सूरज की जो स्टडी करनी है तो उसके लिए वहां जाकर ही करनी अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे तक हम सूरज को देख सकते हैं। अभी अपने जो एस्ट्रोनॉट है उनको जो हम भेज सकेंगे अगले साल अंतरिक्ष में, तो वो बता सकेगा, वो प्रयत्न जो होगा वो हमें बता सकेगा कि ये भारत का जो स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है वो अच्छी तरह से चलेगा कि नहीं, क्योंकि उसके लिए पहले हमें अपने भारतीय एस्ट्रोनॉट को अपने ही यान से अंतरिक्ष में भेजना है, और वो अगर कर सकेंगे तो हम उसके आगे जाकर बहुत ही काम करना है। अभी चंद्रयान 4 का भी काम चल रहा है, और भी एक लैंडर जो है जापानीज एजेंसी के साथ उनका जो काम चल रहा है उसमें उसका उपयोग हो जाएगा। तो ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो युवा जो है उन्हें ये प्रयत्न करना चाहिए कि पहले तो क्या सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए। अभी जो मैं सोच रहा था कि स्पोर्ट्स की जो बात आ गई, तो स्पोर्ट्स और उसका जो संबंध जो है वो मुझे तो पहले तरह से ही पता है, क्योंकि जब नासा ने पहला उनका सैटेलाइट SINCOM-3 1963 में भेजा था, उसका उपयोग 1964 साल के टोक्यो ओलंपिक्स वो अमेरिका में लाइव देख सके
2: जी।
8: और उसके बाद जो प्रगति हुई, जो हमने देखा कि 1982 में INSAT-1 का हमने प्रक्षेपण किया था वो असफल रहा, लेकिन दूरदर्शन ने रशियन सैटेलाइट स्टेशनर का उपयोग करके पूरे एशियाड गेम्स सब जगह पे दिखा सके, और एशियन गेम्स जापान में चल रहे वो हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं। ये कैसे होता है? तो इसके लिए जो दूरदर्शन की जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ऑल इंडिया रेडियो की ट्रांसमिशन सिस्टम है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाग आज हमारे उपग्रह है, जो उपग्रह का उपयोग करके हम ये सब काम कर सकते हैं।
2: जी, तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, जब एक अंतरिक्ष का जो शख्स है वो खेल की बात करता है तो मुझे लगता है कि अपने आप में इंटरेस्ट जाग जाता है, क्योंकि खेल में भी एक सेकंड की चूक मेडल छीन लेती है और अंतरिक्ष में ठीक वैसी एक सेकंड की चूक मिशन फेल कर देती है, तो दोनों में मुझे लगता है अनुशासन और फोकस बहुत जरूरी है। तो राजारमन जी आपसे हम पूछना चाहेंगे, कैसा अनुशासन चाहिए?
9: बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है और ग्लोबल सुपर पावर बनना है स्पोर्ट में, जैसे हम मुझे लगता है डॉक्टर कले और ऐसे लीडर्स हमारे स्पेस प्रोग्राम को बहुत आगे ले चुके हैं। वहां आप देखिए, एक बार हम शायद 500 सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कुछ साल पहले। ऐसे ही कोई नहीं सोच सकता था कि नीरज चोपड़ा मेडल जीतेगा, गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड मेडल, एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल आया था। एक महिला हमारी एक ही ओलंपिक गेम में दो मेडल हासिल कर सकती है, मनु बाकर की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन अब संभव हो गया है सब कुछ। अब हमारी सोच शायद छोटी थी, अब सोच को विस्तार करने का एक मौका मिला।

0: और फिर उस सोच को आगे चल के प्लान में और एक्शन में बदलने का एक मौका मिला है भारत को। और हमारी युवा पीढ़ी शायद वो अनुशासन दिखाने लगी है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या हॉकी का मैदान हो या शूटिंग हो या कुश्ती हो या मुक्केबाजी हो या फिर तीरंदाजी हो, ऐसे खेलों में हम बहुत ज्यादा अनुशासन दिखा रहे हैं, खास करके हमारे टॉप एथलीट।
1: राजीरमन जी, पहले दिव्यांग बच्चों की जब बात आती थी तो अक्सर लोग निराश हो जाते थे कि कुछ नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में दिव्यांग बच्चे ही खेलों में आगे बढ़ रहे हैं।
0: वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि दीपा मलिक की बात कीजिए, पहली ऐसी महिला बनी भारत से जो पैरालंपिक गेम्स में मेडल हासिल की है, और कई ऐसे एथलीट हैं, शीतल देवी की जितनी तारीफ की जाए कम, उनके हाथ नहीं है लेकिन पैर से तीर चलाते हैं और फिर विश्व में बहुत ही विख्यात पाई है, शी इज वेरी फेमस एथलीट। ऐसे बहुत सारे एथलीट हैं जो बाकियों का हौसला अफजाई करते हैं। पहले होता था जब हम विकलांग को देखते थे तो तरस का एक सोच आता था, अब तरस नहीं समझ की बात होने लगी है। ये बदलाव अभी देखने को मिला है पिछले 10-12 साल में, और हमारे खिलाड़ी, विकलांग खिलाड़ी पैरा स्पोर्ट जो खेलते हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और फिर बाकियों को भी प्रोत्साहित करते हैं।
1: बिल्कुल राजीरमन जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम गगनयान मिशन पर हमारी एक खास रिपोर्ट सुन लेते हैं।
2: श्रोताओं, आज का युवा सिर्फ खेल के मैदान में ही देश का नाम रोशन नहीं कर रहा है, बल्कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नई उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज हम बात करेंगे भारत के गगनयान मिशन की। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजना और लगभग 3 दिन के मिशन के बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। लेकिन श्रोताओं, इंसान को अंतरिक्ष में भेजना आसान काम नहीं है। इसके लिए रॉकेट, अंतरिक्ष यान, जीवन रक्षक प्रणाली, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने की व्यवस्था जैसी कई तकनीकों का विकास करना पड़ता है। भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल यानी मानव को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट HLV-M3 के सभी प्रोपल्शन स्टेजेस और स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट और ग्राउंड टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी से जुड़ी डिक्लेरेशन सिस्टम की जांच के लिए 2 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट भी सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। अब गगनयान कार्यक्रम के अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। गगनयान का पहला अनक्रूड एक्सपेरिमेंटल मिशन 2026 की चौथी तिमाही में लक्षित है। इस मिशन में व्योमित्रा यानी एक हाफ ह्यूमेनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य उन तकनीकों की जांच करना है जिनकी आवश्यकता भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए होगी। इसके बाद 2 और अनक्रूड मिशन की योजना है और मानव मिशन को 2027 के लिए लक्षित किया गया है। श्रोताओं, गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये देश में कई नई तकनीकों और रोजगार के अवसरों का रास्ता भी खोलता है। अंतरिक्ष यान बनाने से लेकर रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, संचार और दूसरे क्षेत्रों में विशेषज्ञता की जरूरत होती है, और यही वजह है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका एक उदाहरण युविका यानी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी है। 2026 में युविका कार्यक्रम में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 456 मेधावी विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन विद्यार्थियों को इसरो के 9 केंद्रों पर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक की जानकारी दी गई। उन्हें वैज्ञानिकों और गगन यात्री से बातचीत, रॉकेट लॉन्च देखने, रोबोटिक्स, चंद्रयान 3 DIY किट और मॉडल रॉकेट जैसे व्यावहारिक अनुभव भी दिए गए। श्रोताओं, भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब केवल चंद्रमा या मंगल तक सीमित नहीं है, देश भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। भारत की योजना लगभग 2035 तक 5 मॉड्यूल वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को ऑपरेशनलाइज करने की है। इसके पहले मॉड्यूल BAS-1 को 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी आज का युवा जिस विज्ञान को किताबों में पढ़ रहा है, आने वाले समय में उसी विज्ञान का इस्तेमाल अंतरिक्ष में नई उपलब्धियां हासिल करने में कर सकता है। खेल के मैदान में युवा अनुशासन, मेहनत और टीम भावना से देश को गौरवान्वित करता है। वहीं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में युवा अपनी जिज्ञासा, ज्ञान और तकनीकी क्षमता से देश के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। इसलिए युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर केवल एक विचार नहीं, बल्कि युवाओं की क्षमता को देश के विकास से जोड़ने की दिशा है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा आगे बढ़ रही है और इस यात्रा में आज के युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और विद्यार्थी आने वाले भारत की नई कहानी लिख सकते हैं।
1: तो अब हम वापस लौटते हैं प्रमोद जी के पास, और प्रमोद जी, हम आपसे जानना

0: आगे काम करते हैं। स्पोर्ट्स में भी जो मैंने देखा है कि टीम स्पिरिट जो होना चाहिए, वही टीम स्पिरिट ये स्पेस के हमारे काम में भी बहुत महत्वपूर्ण है।
1: प्रमोद जी, आप ये बताइएगा कि भारत का स्पेस प्रोग्राम मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों के नेतृत्व में हमेशा आगे बढ़ा, लेकिन अब स्टार्टअप्स की बात की जाए या फिर प्राइवेट कंपनियों की, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो इस बदलाव के सबसे बड़े अवसर और चुनौतियां क्या हैं?
0: पहले से ही हम देख रहे थे कि जब हमने काम हाथ में लिया था तो सभी जो काम है वो पूरा काम इसरो में ही हो सकता नहीं है। जब इसरो ने काम चालू किया SLV-3 लॉन्च व्हीकल के लिए, तब ध्यान में आया था कि इसके लिए जो काम है उसको इंडस्ट्री में ही करना चाहिए, जो बड़ा काम करना है वो। और तभी से 40 साल हो गए, अभी सभी इंडस्ट्रीज हमें उसके साथ मदद करती है। आज जो देखें तो मुझे लगता है कि 25% काम जो है वो अपने यहाँ के इंडस्ट्री में हो रहा है, और अगर जो ये इंडस्ट्री आगे जाकर ये काम खुद अपने ही हाथ से करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जब अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए जो काम करना है तो वो इसरो कर सकती है, और लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है वो जो हमारे अभी के जो छोटे जो लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो इंडस्ट्री में जो बन सके तो बहुत ही अच्छा होगा। ये स्टार्टअप ने हमें दिखा दिया है, स्काई रूट का जो V1 जो उन्होंने लॉन्च किया बहुत ही अच्छी तरह से काम हुआ है, और ये काम और आगे जाकर वो कर सके पूरी तरह से। उसके लिए जो ईंधन लगा था वो इसरो में ही बना था, तो जो काम इंडस्ट्री कर सके इसरो के बाहर वो जो अपने हाथ में ले ले तो बहुत ही अच्छा होगा। और इस काम में नए इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
1: और अब राजा रमन जी, आपके पास वापस लौटते हैं, हम बात करते हैं फिट इंडिया की। तो फिट इंडिया सिर्फ एक नारा है या लोगों की आदत वाकई में इससे बदली है?
2: इससे पहले मैं डॉक्टर काले ने जो बात कही है हारने की और जीतने की, वहां से सीख लेने की, ये आपको खेल के मैदान में देखने को मिलता है फरज जी, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप ज्यादा हारते हैं और हार से जो सीख मिलता है वो शायद जीत में नहीं मिलता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग खेलें और सीख लें कि आज हार भी जाए तो अपने आप को कैसे उठाएं, और इसरो ने वो कर दिखाया।
1: हाँ, और पुरानी कहावत भी है, हार में ही जीत है।
2: बिल्कुल है। और अगर हम फिट इंडिया की अभी बात करते हैं, हाँ, तो फिट इंडिया एक सिर्फ स्लोगन नहीं रह गया, अभी लोगों के जहन में बैठ गया है कि ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मुहिम है लोगों को समझाने का कि अपना सेहत बना के रखो, और सेहत बनाने का एक तरीका है खेल, और आधा घंटा अगर आप खेलते रहेंगे दिन में तो आपकी सेहत बन सकती है। एक बहुत बड़ा चुनौती आने वाला है भारत के सामने, जहाँ पे लाइफस्टाइल डिजीज बहुत बड़े पैमाने पे शायद हमको सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत सरकार ने सोचा है कि फिट इंडिया एक ऐसा मुहिम बनाते हैं, लोगों को समझ आएगा और लोग अपने आप ही अपने सेहत बेटर करने की ओर चल पड़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्लोगन नहीं हमको मिशन मानना चाहिए।
1: जी अच्छा, अगर हम बात करें कुछ राज्यों की, जैसे उत्तर पूर्व हो गया या हरियाणा, ये छोटे राज्य हैं लेकिन सबसे ज्यादा मेडल यहीं से आते हैं, तो इसका क्या राज?
2: वहाँ के लोगों के अंदर एक शायद भूख है, जो छोटे शहरों में, सिर्फ इन प्रांतों की नहीं बात करता, आप पूरे देश में देखिए, जो छोटे शहर से आते हैं या गांव से जो आते हैं खिलाड़ी, उनके अंदर एक भूख होता है, कुछ कर दिखाने का मादा होता है, और वो कर दिखाते हैं। शायद थोड़ा अगर एजुकेशन लेवल बेहतर हो जाता तो खिलाड़ी और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये कहना होगा कि जो खिलाड़ी आए हैं और जो भारत का नाम रोशन किए हैं, उन सब में एक ही बात है कि उनके अंदर एक भूख है। हुनर तो है ही, हुनर चाहिए, उसके साथ कोशिश भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात उनके अंदर भूख है कि वो कुछ करना चाहते हैं और फिर अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने गांव को सुधारना चाहते हैं।
1: जी अच्छा प्रमोद जी, मैंने कुछ समय पहले अखबार में खबर पढ़ी थी कि चेन्नई के दो युवाओं ने, अग्निकुल और हैदराबाद के युवाओं ने स्काई रूट बनाया, तो इसरो इसमें कैसे उनकी मदद कर रहा है?
0: उसकी टेस्टिंग के लिए और उसका जो ईंधन जो है वो ईंधन इसरो ने दिया था, प्रोपेलेंट जिसे कहते हैं वो, और जब उसको लॉन्च किया विक्रम 1 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया था। जो भी कुछ प्रोग्रेस हुआ है वो अच्छी तरह से हुआ है, और जो काम वो कर रहे हैं उसे और भी ज्यादा तरीके से, सिर्फ एक जगह पर नहीं लेकिन भारत में 3-4 जगह से इस तरीके से काम होने की जरूरत है।
1: तो अगर हम आज से 20 साल आगे भारत के स्पेस प्रोग्राम की कल्पना करें, तो आप भारत को कहाँ देखना चाहेंगे?
0: चंद्रमा पे जाकर वहाँ से अच्छी तरह से वापस आना, ये महत्वपूर्ण बात होगी।
1: वापस आना, और वापस आकर मुझे लगता है खेल जगत की दुनिया में दोबारा चलना। राजरमन जी,
2: 20 साल की अगर बात करें तो अगर हम ओलंपिक के टॉप 10 देशों में हो जाए तो मेरे लिए बहुत सुनहरा सपना साकार हो जाएगा। अगर हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा खेल की ओर बढ़ जाते हैं, ज्यादा लोग बढ़ते हैं, और जो शिक्षक है वो और थोड़ा मेहनत करते हैं, सिर्फ 10-12 खिलाड़ी में नहीं फोकस करके 400-500 खिलाड़ी में फोकस करें।

0: से चैंपियन पैदा करे शिक्षक जो कोचेस है, अगर वो हो जाता है तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। अभी थोड़ा सा सोच में हमारा बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन चाहे लिएंडर पेस हो या अभिनव बिंद्रा हो या राज्यवर्धन राठौर हो या मनु बाकर हो या नीरज चोपड़ा हो, इन लोगों ने उस सोच में बदलाव लाने का बहुत बहुत योगदान दिया है।
1: तो राजन जी, 2036 की अगर बात की जाए, हम आगे ओलंपिक भारत में लाने की बात हो रही है, तो अगर ओलंपिक भारत में हुआ तो इससे युवा शक्ति को क्या फायदा हो?
0: एक बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है और कईयों को नौकरी लग सकती है। हम समझते हैं कि खेल सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है, लेकिन आप देखिए एक पूरा इंडस्ट्री बनता है खेल के इर्द गिर्द, चाहे वो टूरिज्म हो या लेबर फोर्स हो, जो स्टेडियम बनाने का लेबर फोर्स हो, कई सारे लोग जुड़ जाते हैं इसमें और युवाओं के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी बनता है। खिलाड़ी के लिए तो है ही, लेकिन और भी युवा जुड़ सकते हैं खेल के माध्यम से और उनका भला हो जाएगा।
1: और अब वापस लौटते हैं और अंतरिक्ष की बात कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चों का भविष्य है अंतरिक्ष में आगे के लिए, प्रमोद जी, क्या होना चाहिए?
2: जहाँ भी वो सीखते हैं ये बच्चे, उनको पहले से ही थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले कि छोटा रॉकेट किस तरीके से बना सकते हैं, छोटा सैटेलाइट किस तरीके से बना सकते हैं और उसमें जो टीम जो है वो किस तरीके से काम कर सकती है। मैंने यहाँ पुणे में देखा था एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कोई स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पूरा प्रयत्न करके एक उपग्रह बनाया जिसका नाम था स्वयं। और रिटायर होने के बाद जब मैं यहाँ आया पुणे में तो मैंने उनको मदद की थी और मैंने देखा कि उनके अंदर जो ऊर्जा थी ये काम वो कर दिखा सकते हैं। वो टीम जो पहले थी वो अंत तक नहीं रहे थे क्योंकि ये तो स्टूडेंट थे, उनके 3-4 साल पूरे होने के बाद वो कॉलेज छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, मगर ये कॉलेज ने करके दिखाया था। और इस तरीके से का काम जो है जिसमें लगातार काम करने की जरूरत है, ये ध्यान में रखकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बड़े दूसरे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने पहले से इस तरीके के काम के लिए उनके जो विद्यार्थी है उनको तैयार करना चाहिए।
1: प्रभु जी, लेकिन अभी तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, इंटरनेट है और बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां पर हम मदद ले सकते हैं, लेकिन जब भारत के अंतरिक्ष यात्रा का सफर शुरू हुआ था तब सीमित संसाधनों से इसकी शुरुआत हुई थी, तो अगर पीछे मुड़कर देखें तो वो कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव थे जिन्होंने भारत को एक शुरुआती अंतरिक्ष कार्यक्रम से आज एक सक्षम अंतरिक्ष शक्ति बनने तक पहुंचाया?
2: एक तो पहले हम जब काम करते थे तो पहले 3-4 साल तक जो रॉकेट्स थे वो रॉकेट्स अमेरिका से, फ्रांस से आए थे। उसके बाद में जब हमने अपना खुद का ईंधन जो है वो तैयार किया, सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट जो है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में तैयार हुआ, तो वो प्रोपेलेंट जो है उसी के लेकर हम आगे जाकर काम कर सके। उसके बाद में लिक्विड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में काम किया, उसके बाद में जाकर क्रायोजेनिक्स में भी काम किया। तो ये जो आत्मनिर्भर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सिर्फ कोई इंटरनेट से जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो उसमें से कुछ ज्ञान मिलता है, लेकिन आगे जाकर ये हमें खुद को करना पड़ता है और ये जो खुद को करना पड़ता है ये देखकर हम आगे चले गए हैं।
1: खुद को देखकर करना पड़ता है राजा रमन जी। तो अगर आप खेल की हम बात करें तो इसमें भी हम वही चीज अपनाना चाहेंगे कि सीमित संसाधन उस समय हुआ करते थे, लेकिन आज बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से कई सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो बच्चों को आगे आने का मौका देती हैं, तो ऐसे में आप इसमें क्या कहना चाहेंगे?
0: बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है आपने। हाल ही में मेरी बात हो रही थी कुछ शूटर्स के साथ जो निशानेबाज है, राइफल शूटर्स, उनको एक बॉडी आर्मर सूट पहनना होता है। वो सूट पहले आप इंपोर्ट करते थे, अभी भारत में जो बनता है वही दुनिया भर में चलता है। तो भारत में काम शुरू हो गया है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात होती है या आत्मनिर्भरता की बात होती है, तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और खेल में भी आगे आई है। और ये अच्छी बात है कि खिलाड़ी भी आपको अभी समझ में आया कि विदेश में ही नहीं ट्रेन करते हैं, हमारे पास पटियाला में हो या बेंगलोर में हो या त्रिवेंद्रम में हो, वहां पे भी ट्रेनिंग करके आप विश्व में चैंपियन बन सकते हैं। और ये दिखाया है कि आपके पास अभी सारे संसाधन है, आपकी तैयारी अगर सही हो तो आप विश्व में जाके एकदम कम्पीट कर सकते हैं किसी के साथ।
1: तो एक महिला होने के नाते मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि महिलाओं की भूमिका या फिर महिलाओं के लिए क्या चीजें की जा रही हैं स्पोर्ट्स के लिए?
0: 1970 में कमलजीत संधु पहली ऐसी महिला बनी जो एशियन गेम का गोल्ड मेडल जीती है भारत के लिए, और आज बहुत माहौल बदल गया है और हमें ये समझ आया है, पूरे हिंदुस्तान को समझ आया है कि हमारी महिला शक्ति बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत सारे पदक हासिल करते हैं, एशियन गेम में हो या राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर ओलंपिक खेल हो, यहाँ पे हमारे महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है। तो एक कोशिश ये है, अगर आप खेलो इंडिया की बात करें उसके अंदर अस्मिता लीग करके एक शुरू हुआ है सिर्फ महिलाओं के लिए, ये हमारे समझ में आया है कि महिला हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम बना है अस्मिता, वहां से खेलो इंडिया में चलते हैं, खेलो इंडिया से फिर टॉप्स में आते हैं, बहुत सारे अभी रास्ते खुले हैं हमारे महिलाओं के लिए और एक इज्जत मिलने लगा है सोसाइटी में जब वो खेलते हैं और फिर भारत का नाम रोशन करते हैं. दे आर रेस्पेक्टेड अ लॉट मोर, पहले जैसा नहीं, लेकिन अच्छी बातें हो रही है भारत के अंदर और मुझे लगता है कि महिला ही हमें बहुत आगे और लेके जाएंगे.
1: अगर खेल की हम बात करते हैं तो उसमें डोपिंग और एज फ्रॉड जैसे मुद्दे भी शामिल हो जाते हैं, तो युवाओं का जो करियर पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, इस चीज को कैसे रोका जाए?
0: डोपिंग के लिए कानून बना है और जब एथलीट डोप करता है या करती है तो एक 4 साल का बैन लग जाता है उनपे, लेकिन जो उन्हें कराते हैं उनको क्रिमिनलाइज करके अभी भारत सरकार एक कानून बनाई है. अगर कोई खिलाड़ी को जबरदस्ती डोपिंग की ओर लेके जाता है तो उन्हें जेल हो सकती है. और ये अच्छी बात है, डोपिंग रोकने का एक बहुत बड़ा तरीका है, ये है कि सप्लाई चेन को आप काट दें, तो ये डोपिंग के मामले में वो सही हो गया है. एज फ्रॉड का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत में है, अगर स्पोर्ट करप्शन की बात करें शायद डोपिंग से ज्यादा एज फ्रॉड है. और इसमें चाहिए जो पेरेंट्स हैं, जो स्कूल के अध्यापक हैं, जो कोचेस हैं, इनको चाहिए अनुशासित होना और फिर सोचना है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो एज फ्रॉड नहीं करना है. अगर सही एज में खेलेंगे तो हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर कैटेगरी में भी अच्छा करने लगेंगे, अब सिर्फ जूनियर में करते हैं हम.
1: राजा रमन जी, आपने अनुशासन की बात की तो प्रमोद जी से हम पूछना चाहेंगे कि किसी भी चीज के लिए चाहे वो अंतरिक्ष हो या फिर खेल, अनुशासन बेहद जरूरी है. तो अगर बात की जाए डॉक्टर विक्रम साराभाई की या फिर डॉक्टर अब्दुल एपीजे कलाम की, तो उनसे कौन सी ऐसी बात सीखने की मिली है कि जो आज के युवाओं को जानना होगा?
2: एक तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हमारे टीचर थे, उनसे मैंने देखा था कि जब सुबह उठते हैं एक काम करते हैं, कभी दूसरा काम करते हैं, कभी तीसरा, मगर पूरा दिन अच्छी तरह से काम करते रहते, उनका सब्जेक्ट चेंज कर रखते थे, ये हमें सीखना मिला उनके पास से. और एपीजे अब्दुल कलाम जब हमारे साथ में काम करने के लिए आगे 1963 में, तो उसके बाद मैंने देखा था पहले ही जब हमारी मुलाकात हुई बाकी सब इंजीनियर्स और 7-8 लोग हम थे, एपीजे अब्दुल कलाम ओनली एयरोनॉटिकल इंजीनियर थे. उनसे हमें बहुत सीखने को मिला कि उनका विषय था एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, हमारा विषय था कम्युनिकेशंस, जो भी कुछ हम करते थे उसी में रस लेते थे, हमारे साथ चर्चा करते थे. और आगे जाकर हम जब SLV का काम करना चालू कर दिया तो तब तक मैं देख रहा था कि वो किस तरीके से काम करते हैं. वो पहले से ही काम करते थे, पूरा रस लेके काम करते थे, पूरी जो उन्होंने टीम बनाई थी वो टीम के साथ वो किस तरीके से काम करते थे और कितनी शांततापूर्वक, इतनी सभ्यतापूर्वक वो जो काम करते थे वो सीखने को मिला. तो जब आज मैं सोचता हूँ कि हमारे जो नए इंजीनियर से, नए साइंटिस्ट है, इंडस्ट्री में काम करते हो या इसरो में काम करते हो, तो सबको एक ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो काम है ये पूरे टीम का काम है, कोई एक इंडिविजुअल का काम नहीं है ये. और इसी ये जो टीम स्पिरिट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काम कर देता है.
1: जी, टीम स्पिरिट मुझे लगता है बहुत जरूरी है राजा रमन जी हर चीज के लिए.
0: बिल्कुल है, और खेल में ज्यादातर देखने को मिलता है, चाहे आप क्रिकेट टीम की बात करें या फिर हॉकी टीम की बात करें, लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट में भी फरज जी आजकल टीम आ गया है. एक खिलाड़ी के साथ कोच है, फिर फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनका भी एक टीम बन गया है. युवाओं को भी समझ आया है कि वो भी अपना एक टीम बनाए, चाहे आप धावक हो, स्प्रिंटर हो, या मिडिल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो, या फिर आप मुक्केबाज हो, आप सबको चाहिए टीम. और खेल दिखाता है जब आप मिलके करते हैं तो मुट्ठी बन जाते हैं और फिर ताकत अपने पास आती है. और खेल बहुत सारी सीख देती है सबको. सबसे बड़ी बात यह है कि आप जमीन से जुड़े रहते हैं, आप जितना भी आप अच्छा कर लेते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के और भारत रत्न भी है, उन्होंने सिखाया कि आप कितने भी बेहतर हो जाए और बेहतरी हो सकती है, कीप ट्राइंग टू इम्प्रूव, हर रोज आप बेहतर हो सकते हैं. ये उनके रिटायरमेंट तक वो इम्प्रूवमेंट की कोशिश में लगे रहे. परफेक्शन इज यूटोपियन, और वो दिखाएं कि हर रोज मेहनत करने से आप थोड़ा और बेहतर हो सकते हैं.
1: और अगर बात अब 2047 की करते हैं तो हम आप दोनों मेहमानों से ये पूछना चाहेंगे कि 2047 विकसित भारत के लिए आप लोगों का क्या लक्ष्य होना चाहिए? जी प्रमोद जी, सबसे पहले आप बताइए.
2: जब मैंने पहले पढ़ा था, गांधी जी ने जो लिखा था इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, और जो उन्होंने विलेज स्वराज के लिए जो बात की थी, वो सीखने के बाद मुझे ध्यान में आया है कि अगर जो हमें आगे जाकर कुछ करना होगा तो ये एक अच्छी तरह से हमारा जो देश है उसको आगे ले जाने के लिए हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो एजुकेशनल सिस्टम इतनी अच्छी तरह से बने कि सभी को पूरा ज्ञान मिल सके.
1: जी राजा रमन जी,
0: कई साल तक हम बिजली पहुंचाते रहे, पानी पहुंचाते रहे गांव में, अब वो समय आ गया है कि अगर गांव में बच्चों को खेलने का सुविधा मिल जाए तो देश का बढ़ावा हो जाएगा और शायद विकसित भारत का एक बहुत बड़ा सपना ये होगा कि हर बच्चा खेलने लगेगा और फिर हम अच्छे स्टार्स बनेंगे।
1: तो हमने जैसे जाना कि

0: खेलो इंडिया का जो युवा पोडियम है, जब तिरंगा फहराता है वहां पर और इसरो का युवा रॉकेट लॉन्च करता है, तो दोनों ही एक ही लक्ष्य को पूरा करते हैं और वो है युवा शक्ति से विकसित भारत। तो प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे युवा शक्ति के बारे में?
1: ये युवा शक्ति जो है उसको जानना जरूरी है, वो क्या कर सकते हैं, वो जो हमें ध्यान में आ जाए तो उनसे प्रेरणा लेकर हमारा काम और भी कर सकते हैं। उनको कहाँ जाना है इसकी थोड़ी तो उनको जो कल्पना हो, और वो कल्पना हो तो उसके लिए पूरा सपोर्ट उन्हें देना चाहिए। ये पूरा सपोर्ट अगर जो उनको मिल जाए उनके टीचर्स के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ से, तो ये आगे जाकर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। आगे जाकर जो भी कुछ स्पेस में करना है, स्पोर्ट्स में करना है, तो पहले से ही उनको अच्छी तरह का गाइडेंस मिलना चाहिए। ये जो युवा शक्ति है उन्हें भी एक देखना है कि उनके रोल मॉडल्स क्या है और वो आगे जाकर क्या कर सकते हैं, थोड़ी तो उनको कल्पना होनी चाहिए। ये जो प्रेरणा हो तो उनको बढ़ावा देकर उनका प्रोग्रेस बहुत अच्छी तरह से हो
0: जी
1: सकता है।
0: प्रमोद जी, देखा जाए तो आजकल के जो युवा हैं उसमें डिप्रेशन के बहुत ज्यादा मामले सामने आते हैं। वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं कोई चीज हार गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब बहुत जल्दी वो हार मान जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने अनुभव से उनको क्या सीख देना चाहेंगे?
1: हमने जब इनसेट वन लॉन्च किया था तो लॉन्च करने के बाद एक थोड़े ही दिन में ध्यान में आ गया कि अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, इसीलिए हमने इनसेट वन बी का भी जो काम था उसमें भी अच्छी तरह से ध्यान देकर काम किया। इतनी हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसे भी फेल्यूर्स हो जाते हैं और आगे जाकर हमें फिर से उठकर आगे दौड़ना है। यही मैं तो देखता हूँ। आपने डिप्रेशन की जो बात की, ये डिप्रेशन ज्यादा होता है आज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हर समय जो मोबाइल देखते रहते हैं, बाकी के लोग क्या करते हैं वो देखते रहते हैं और उनको ध्यान में आता है कुछ अच्छी तरह से नहीं कर पाते, दूसरे को ही कर पाते। तो ये जो डिप्रेशन की जो बात है, ये एजुकेशन में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, हमारे काम में भी है, तो एक ध्यान में रखना चाहिए कि थोड़ा सा तो उन्हें सेल्फ स्टडी का जो है वो करना चाहिए कि किस तरीके से ये अभ्यास करके अपने खुद को अच्छी तरह से आगे जाकर क्या कर सकते हैं वो उनके ध्यान में आ जाएगा।
0: जी राजा रमन जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे?
2: अगर डिप्रेशन की बात करें
0: जी
2: तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे को लगता है कि ये आप किसी से बात कर लें, किसी से मदद मांगना कमजोरी का निशाना नहीं होता है। बहुत सही टाइम पे आप अगर मदद मांग लेते हैं तो डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। और एक और तरीका दूर करने का डिप्रेशन को, खेलना होता है।
0: जी
2: जब आप सुबह में आधा घंटा या शाम को आधा घंटा खेल लेते हैं तो आपके मन को एक शांति मिलती है, सेहत बनती है, फिर आप अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जिनका उम्र हो गया वो टहल सकते हैं, लेकिन युवाओं को खास करके ये कहूंगा कि स्कूल में पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ना जरूर, लेकिन साथ साथ खेलना भी,
0: जी
2: और दोनों को आप बैलेंस करेंगे तो लाइफ आपका सेटल हो जाएगा और डिप्रेशन नाम की चीज बहुत दूर
0: जी
2: रहेगी।
0: राजन जी, भारत सरकार ने खेल प्रतिभाओं को कम उम्र में पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत भी करी है। तो प्रतिभा की पहचान से लेकर अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने तक, एक युवा खिलाड़ी को किस तरह की पूरी व्यवस्था की जरूरत होती है?
2: बहुत जरूरी है। पहले मुझे याद है फरज जी,
0: जी
2: मैं बहुत ही युवा था तब, तब एक हेडलाइन आया था कि हमारे 700 मिलियन लोग हैं और एक भी पदक नहीं। 1976 ओलंपिक गेम्स में से हम खाली हाथ लौट के आए थे। लेकिन आज माहौल बदल गया है, आबादी बढ़ी है, लेकिन सवाल बदला है। सवाल पूछते हैं कि कम मेडल क्यों आते हैं। कम मेडल इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे बहुत ही कम खिलाड़ी खेलते हैं। तो एक मुहिम बना है, चाहे वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का हो, पिछले साल खेल मंत्रालय ने कुछ 2 लाख बच्चों के असेसमेंट्स किए हैं, हो सकता है वहां से कुछ निकल के आए। एक साइंटिफिक तरीके से जीन पूल को लेके टेस्टिंग हो रहा है, एक खोज में लगे हैं। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो देन वी विल फाइंड द क्लू के हम कौन से स्पोर्ट में और अच्छा कर सकते हैं। 7 या 8 खेल है जहां हम बहुत ही बेहतर तरीके से खेलते हैं। क्रिकेट अभी ओलंपिक में आया
0: जी
2: है, शतरंज में हम शानदार हमारे खिलाड़ी हैं,
0: जी
2: कई ऐसे खेल हैं, लेकिन ओलंपिक खेल की हमेशा बात होती है। वहां पे एथलेटिक्स में अभी हम गॉट अ ब्रेक थ्रू, और खास करके शूटिंग हो या रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, वेटलिफ्टिंग हो, वहां से तो हमें अच्छे अंजाम आए हैं। लेकिन तैराक अगर कुछ मेडल लाते हैं या जिम्नास्टिक से कुछ मेडल आ जाते हैं तो भारत का भला हो सकता है। इसी का खोज शायद वो 5 से 15 की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा
0: जी
2: है वो अगर सच हो जाता है, उसको हम सही तरीके से उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं तो देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशंस टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स।
0: बिल्कुल, जो खेलेगा वही खिलेगा। मुझे लगता है अब ये बात बिल्कुल साकार हो गई है। तो श्रोताओं, अंत में चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि युवा शक्ति के लिए उनका क्या संदेश है कि वो किस तरीके से आगे बढ़े?
1: मुझे तो ऐसे लगता है कि सिर्फ किसी का सुन के आगे नहीं जाओ, अपना खुद का

0: सेल्फ स्टडी का एक रेजिम बनाए और इस तरीके से जो भी कुछ उनके मन में हो, वो जो भी कुछ विषय उनको सीखना हो, तो आगे जाकर उनके आगे के करियर में भी काम आएगा। जब वो सीखते हैं कुछ भी, तो उनकी शिक्षा जो है वो
1: जी
0: कॉलेज पूरा हो जाने के वहां से खत्म नहीं होती। उनको लाइफ लॉन्ग स्टडी करने की जरूरत है, सीखते रहना चाहिए और खुद को अच्छी तरह से वो आगे जाकर कुछ भी जो करना है उसके लिए एक सेल्फ स्टडी करने का जो है वो एक रेजिम बनाना चाहिए।
1: राजनंदन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की युवा शक्ति के लिए खेल क्षेत्र किस तरह रोजगार और नए अवसरों का माध्यम बन सकता है?
2: एक बहुत बड़ा बन सकता है। कईयों को गलतफहमी है कि सिर्फ खेलना ही एक माध्यम है रोजगार का। यू कैन बिकम अ कोच, आप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारे रूट्स है आपको स्पोर्ट्स से जुड़ने का। आप अगर पुराने भी खिलाड़ी हैं तो यू कैन ज्वाइन इन और आप फिर वर्कफोर्स में रह सकते हैं, खेल से जुड़ सकते हैं। अगर आप युवाओं की बात करें तो मैं सिर्फ उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप खेलते रहें, पढ़ते रहें और अपना जो आत्मविश्वास है उसको किसी को कम करने का मौका ना दें।
1: जी
2: वो नशीले पदार्थों से दूर रहिए और फिर जब आपका कोई दोस्त या साथी कुछ अच्छा कर दिखाता है तो आप उसका भी आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपनी हार को जीत में बदलें और कभी भी डिप्रेशन में ना जाएं, बल्कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद आप दोनों का।
0: थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे थे इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी फरतनाज।

0: श्रोता दोस्तों, स्पेशल सीरीज कंप्लीशन ऑफ 25 इयर्स ऑफ पब्लिक सर्विस ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित। अब वक्त हो चला है फिर से चलने का गीतों के सफर में आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और वक्त है अगला कार्यक्रम सुनने का, हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
2: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
1: जी लोकेंद्र जी, कहिए कैसे हो आप?
2: बस बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आपके आकाशवाणी केंद्र से जुड़े हुए रहते हैं। बिल्कुल
1: जी जी जी, इसी तरह से हमेशा जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से बात करते हुए।
2: जी सर, हमें भी बहुत अच्छा लगता है।

0: तो इस गीत को सुनना पसंद करेंगे आप?
1: यह गीत सबसे पहले तो आकाशवाणी के लिए रहेगा, और हमारे शारदा प्रसाद जी हैं, भगवान सिंह जी हैं, प्रेम सिंह जी हैं, श्रीपाल गोयल जी हैं, उदयलाल टेलर साहब जी हैं, दिलीप पाहुजा जी हैं, सुनील झा जी हैं, और रामबाबू मालवीय भोपाल से हैं, तुकाराम जाधव जी हैं, और हमारे मित्र हैं गौतम जी हैं, उनके लिए भी यह गीत रहेगा और आकाशवाणी के लिए यह गीत रहेगा कि याद आ रहा है तेरा प्यार।
0: तेरा प्यार, क्या बात है जी। जी लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना डिस्को डांसर फिल्म।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार,
1: बहुत दिन से मेरा फोन लगाया, मुझे बहुत खुशी हो रही है सर जी।
0: जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: मैं महाराष्ट्र ग्रामखंड जिला सातारा से तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ सर जी।
0: जी तुकाराम जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए कैसे हो आप?
1: हम ठीक है, आप कैसे सर जी?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, ठीक हूँ।
1: आपका ईटानगर परिवार?
0: जी ईटानगर परिवार सब बहुत ही बढ़िया।
1: अभी मौसम का क्या हाल है ईटानगर में?
0: हाँ मौसम अभी बढ़िया है।
1: ठीक है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी बढ़िया मौसम
1: बहुत सुहाना है।
0: ओके जी, सुहाना मौसम का लुत्फ उठाइए, आनंद लीजिए।
1: जी जी
0: जी तो इस सुहाने मौसम में हम आपको कौन सा फिल्म का गीत सुनाए तुकाराम जी?
1: फिल्म का नाम है राजा और रंग।
0: ओके राजा और रंग।
1: और गीत बोले संग बसंती रंग बसंती छा गया मस्ताना मौसम आ गया।
0: मस्ताना मौसम आ गया, क्या बात है जी जी जी। हाँ जी जी
1: मस्ताना है तो।
0: हाँ गाना भी मस्ताना ही चुना है आपने
1: जी जी।
0: जी और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस मस्ताने गीत को?
1: सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे मित्र गौतम राय बोले जी, लोकेंद्र वर्मा जी, धीरज भाई रवारी जी, सुनील दास जी, दिलीप पौजा जी, रामचरण विश्वकर्मा जी, अरेन पाटिल जी, पी एस आई राव शेड़के जी, उत्तन पवार जी, रमेश जाधव जी, विजय पाटिल सारू पर जी, हम सब गीत सुनना चाहते हैं।
0: ओके इन साथियों के साथ आप सुनना चाहते हैं इस गीत को जी। ओके वो कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रंग बसंती रंग बसंती।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। हेलो फरमाइश
1: जी। मैं अनूप कुमार भट्टाचार्या बात कर रहा हूँ।
0: जी अनूप जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी, आपको भी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है जी। और कुछ नाम दिल से मिटाए नहीं जाते, कोई दोस्तों के चेहरे भुलाए नहीं जाते। मुलाकात हो और ना हो, लेकिन ए मेरे दोस्त, दोस्ती के चिराग बुझाए नहीं जाते।
0: दोस्ती के चिराग बुझाए नहीं जाते। जी जी जी, क्या बात
1: जी,
0: है।
1: बहुत। तो आज एक गाने का मेरा फरमाइश है
0: जी।
1: फिल्म का नाम है लम्हे।
0: लम्हे,
1: और गाने का बोले से, गुड़िया रानी बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुमार जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। ऐसे करके गाने हैं।
0: ओके जी।
1: और कुछ दोस्तों को मैं याद करता
0: जी। जरूर जरूर। हाँ जी।
1: पहले है हमारे दोस्त थे बोके बागेरा जी और मैडम नूरी मैडम के लिए
0: जी धन्यवाद।
1: और लुकेटी फ्रॉम उज्जैन मध्य प्रदेश और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी, अविनाश जी और प्रेमजी चक्रवर्ती जी है, श्रीकांत जोशी जी है, अमर सिंह साहू जी है, बसंतीलाल सूर्यवंशी जी है और है हमारे बहुत अच्छे दोस्त है उसका नाम देवजीत दास और बापन आचार्य और हमारे धर्म पत्नी सुपा भट्टाचार्य जी के लिए।
0: ओके।
1: तो मेरे दोस्त, बातचीत को यही पे विराम देता हूँ और फिर से आपको शुक्रिया और शिव के आशीर्वाद आपके पर और हमारे दोस्तों के पर मंगलाते रहे, ये मेरा प्रार्थना।
0: जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे लिए भी आपने प्रार्थना की, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: ओके थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश।
1: परम आदरणीय वागरा साहब को शाद सुप्रीम प्यार है नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार हमारी ओर से भी आपको, और कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी ईटानगर के माध्यम से हमारे बहुत अच्छे दोस्त ओगी वागरा साहब से। सर आप कैसे हैं?
0: जी शारदा प्रसाद जी बहुत ही बढ़िया हूँ मैं, और आशा करता हूँ आप भी बहुत ही अच्छे होंगे।
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, और रेडियो सुनना तो मेरा शौक है। आप लोगों से वार्तालाप करके जो खुशी प्रसन्नता आनंद की अनुभूत करता हूँ वो तो अद्वितीय है, शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन हम महसूस अवश्य कर सकते हैं आप की तरह हम भी अच्छे हैं स्वस्थ हैं।
0: शारदा प्रसाद जी आज हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं।
1: स्वागत है
0: जी। हम ये जानना चाहते हैं कि आपका सफर रेडियो में कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ, थोड़ी सी जानकारी दीजिए।
1: मैं तो रेडियो बहुत ही बचपन से सुनता था, लेकिन इतना शौक नहीं था क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम रेडियो खरीद सकें। और फिर धीरे धीरे हमारे बड़े भैया ने 1973 में एक रेडियो खरीदा था मर्सी का, उसको हम लोगों को छूने नहीं देते थे, जो वो चलाते थे हम कभी कभी सुन लेते थे।
0: अच्छा,
1: लेकिन क्या हुआ 1993 के बाद जो मेरा शौक हुआ 1995 में मेरी धर्म पत्नी ने एक फ्लिप का रेडियो ले आके दिया।
0: अच्छा,
1: मुझे
0: जी।
1: और उस रेडियो से फिर मेरा शौक ऐसा हो गया कि मैं उस वक्त तो सिर्फ विविध भारती और मीडियम वेव भी चलते थे, तो लोकल स्टेशन विविध भारती को सुनते रहता था।
0: अच्छा।
1: लेकिन जब मैं मथुरा में आया 2015 में, तो आकाशवाणी मथुरा वृंदावन को सुन रहे थे, और सुनते सुनते 2017 मेरी एक ऐसी इच्छा हुई कि हम भी क्यों ना आकाशवाणी में फोन लगाएं और अपनी कुछ फरमाइशें करें और तो बात करें, बताओ तो अपनी बात पहुंचाएं। तो सन 2017 में यही फिर मैं फोन लगाना शुरू कर दिया और फोन लगाते रहा, लोगों से बातचीत करते रहा, और फिर हमारे कुछ और रेडियो श्रोता मित्र हमसे जुड़े और लोकेंद्र वर्मा और स्वर्गीय शिवाराम माने, ये सब जो हमारे संपर्क में आए और बहुत सारे केंद्रों की जानकारी दी, और इस तरह से हम अनेकों आकाशवाणी केंद्रों से रेडियो स्टेशन से जुड़ते चले गए। और बहुत ही अच्छा लगता है इस दिन भर रेडियो सुनते हुए, हमारा समय कब सुबह से शाम हो जाता है पता ही नहीं चलता है, इतना सूचना शिक्षा मदद भरपूर कार्यक्रम आते हैं और एक से एक जानकारियां दी जाती है, आप लोगों से इतना नेह स्नेह प्रेम मिलता है, वो बहुत ही चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न करता है।
0: क्या बात है शारदा प्रसाद जी। और पहला कॉल आपने कौन सा स्टेशन में किया था, याद है कुछ?
1: आकाशवाणी मथुरा वृंदावन।
0: अच्छा अच्छा, और कौन से गीत की फरमाइश की थी?
1: गीत की फरमाइश उस वक्त हमने किया था, फिल्म का नाम था शेहरा।
0: ओके।
1: और लता जी की आवाज में पंख होते तो उड़ आती रे।
0: क्या बात है क्या बात है।
1: और मानव बताना चाहता हूँ कि उस वक्त जब मैंने फरमाइश की तो आदरणीय हमारे देव राज कृष्ण दीक्षित जी आरजे थे।
0: अच्छा
1: और
0: जी।
1: अभी भी वो आरजे हैं वृंदावन में।
0: ओके।
1: और उनसे बात करते करते मैं एड़ी से चोरी तक पसीने से तरबतर हो गया, इतनी घबराहट मैं
0: जी जी जी
1: हो गया।
0: ओके।
1: पहली बार बात की तो साहब मेरे दो फोन लगा था मैंने काट दिया, मैंने कहा क्या बात करूंगा।
0: अच्छा।
1: इसके बाद तीसरी बार मैंने साहस और हिम्मत करके बातचीत शुरू कर दी, लेकिन बातचीत करते करते मैं जानता हूँ कि मैं से चोरी तक पसीने से तरबतर हो गया, हालांकि थोड़ी थोड़ी ठंड का वातावरण था।
0: अच्छा जी, पहला कॉल में तो घबराहट होती ही है जी।
1: जी
0: तो चलिए आज आप कौन सा फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आकाशवाणी?

0: ईटानगर में।
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि किशोर कुमार का गाया हुआ एक गीत है, फिल्म का नाम है झुमरू, ये चांदनी सुहानी ऐसा करके गीत है।
0: अच्छा जी, हाँ जरूर सुनाएंगे, और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: इसमें शामिल करता हूँ बाबरा साहब को सारे समर्पित करता हूँ।
0: धन्यवाद जी।
1: और हमारे ब्रज रेडियो श्रोता मित्र हैं, सर श्री लोकेंद्र वर्मा है, राजू यादव है, अविनाश जी, आशुतोष जी है, राकेश कुमार जी, पुरुषोत्तम जी हैं, पुष्कर नाथ जी हैं, पंछी राम जी हैं और पूरन वर्मा है, साथ में गोल्डी है और अर्जुन प्रधान जी हैं, केशव प्रसाद शर्मा है, सतीश रघुवंशी जी हैं। इन सभी दोस्तों के साथ साथ में चौधरी महेंद्र सिंह राजू लवानिया को भी मैं याद करता हूँ इस गीत के साथ में।
0: जी तो शारदा प्रसाद जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: जी हृदय से धन्यवाद, आभार। मंगलमय हो, सदा नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में।
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश
0: जी। रानू जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद। आपके क्या हाल चाल है?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ।
1: जी जी ओके। और मुझे ना एक गाना सुनना है, मूवी का नाम है इश्क विश्क।
0: ओके।
1: कार्तिक आर्यन वाली मूवी है, उसी
0: अच्छा।
1: में एक सॉन्ग है सोनी सोनी।
0: ओके
1: ओके
0: जी। तो रानू जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: नमस्कार सर, मैं रंगापाड़ा सोनीतपुर असम से अमल बसुमतारी।
0: जी अमल बसुमतारी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप?
1: मैं तो अच्छा हूँ।
0: अच्छा,
1: मैं भी घर पे बैठ के प्रोग्राम सुन रहा हूँ अभी।
0: अच्छा, आज आपने सुना अरुण एफएम
1: रेडियो ऑन डिमांड प्रोग्राम सुन रहे थे?
0: अच्छा अच्छा
1: जी। और अंदाज फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ।
0: अंदाज?
1: हाँ
0: ओके, गाने के बोल।
1: ये अक्षय कुमार वाला अंदाज है, इसमें गाने के बोल रहेगा। कितना पागल दिल है, कैसे ये मुश्किल है, बेबजह किसी को इंतजार करे।
0: अरे वाह अमल जी, आप तो बहुत बढ़िया गाते हैं। जी
1: लेकिन ये कुमार सानू वाला गाना को मैंने रेडियो ऑन डिमांड पे कल या परसों डेडिकेट किया है, और फीमेल वाला गाना अलका याग्निक जी की आवाज में सुनना है अभी।
0: अच्छा, इसी गाने को अलका याग्निक की आवाज में?
1: हाँ,
0: ओके ओके, हाँ जी जरूर सुनाएंगे। और
1: दोस्तों को डेडिकेट करना चाह रहा हूँ।
0: हाँ,
1: सबसे पहले आपको डेडिकेट रहेगा।
0: थैंक यू।
1: और नूरी मैम को, आरजी दुनिया को, आरजी करगे को, और होलेराम ब्रह्मा को, और हमारे आरजी, बहुत सारे आरजी होते हैं ओरन एफ एम के।
0: जी जी, हाँ
1: आरजी का नाम मैं भूल गया हूँ, सभी आरजी को और पूरी ओरन एफ एम के इंजीनियरों को भी डेडिकेट कर रहा हूँ। और मेरे दोस्त रहेगा भाईकोन मुंडा, बिमोल बसुमतारी, रमेश पात्रो, रोनू पात्रो, लाकी लवण्य पात्रो, और सौरभ द्वारा, और नीलोत्पल द्वारा, गागी राभा, और पुतुल बोरुआ, और रहेगा हमारा देवाशीष हजूरिका, हितेंद्र दास, और प्रेमजीत चक्रवर्ती, अनुप कुमार, और त्रिपुरा से है आशुतोष देवनाथ, संगीता देवनाथ, अविनाश तेली, और उधर भगवान सिंह परमार रहेगा, रमेश प्रजापति, और हमारा पुष्कर नाथ शर्मा भद्रवा से, जम्मू कश्मीर से, और भद्रवा से रहेगा पुरुषोत्तम कुमार, और राकेश, और गोल्डी, सबको सुनाना चाहता हूँ।
0: इन सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं इस गीत को?
1: जी,
0: तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और हमारा चोरायडियो सुनारी असम का एक दोस्त था, उनका नाम हर रोज भूल जाता है, जिसका
0: अच्छा,
1: नाम है सोनजोई मुंडा, उसको
0: अच्छा,
1: भी डेडिकेट रहेगा।
0: ओके जरूर, उनको भी सुनाएंगे। तो अमल जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: जी सर, मैं धेमाजी मिसाकी सबर मुल्क सुनर कोई है सर।
0: ओके बिमल दा कॉल करा कने बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही कहो के कौन तो फिल्मों गाना आपने हुनी हो।
1: अजी सर मु हुनाई दिवो क्या कहना र क्या कहना इतु जानतो हुनाई दिले हुबो।
0: अच्छा टाइटल सॉन्ग है आपने हुनी हो।
1: होय होय मैं लोग रे एकदम नाम को सर।
0: ओके ओके हां हां हां।
1: हमार सबसे पहले से अमोल बसुमतारी, फाइकन मुंडा, रमेश पात्र, लाखी, देवाशीष हजारिका, हितेंद्र दास, आरो आसे रमेश प्रजापति, राकेश गोल्डी, पूरण वर्मा, शिवा लोहार, ভগবান সিং পরমার, প্রেম সিং সুসুদিয়া, আর যান শুনি আছে সবকু
0: শুনাব আপনি না
1: সবকু শুনাইছো আপনার শুনাইছো।
0: ওকে থ্যাংক ইউ মুকু ডেডিকেট করার কারণে। তো বিমল দা শুনো আপনার পছন্দের গানা কল করার কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्कार जी, नमस्कार
0: जी, नमस्कार। और कहिए, कैसे हैं आप
1: जी। मैं तो बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर
0: जी? मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। तो हो जाए परिचय
1: जी। मैं सिक्किम से अर्जुन प्रधान बात कर रहा हूँ
0: जी। अर्जुन
1: जी,
0: प्रधान जी
1: पता तो जानते होंगे
0: जी, हमारे प्रिय श्रोता, सभी लोग तो जानते ही हैं, फिर भी नाम तो बताना जरूरी होता है ना
1: जी,
0: जी। जी
1: परिचय
0: सर,
1: देना
0: हाँ जी,
1: पड़ता है ना
0: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी।
0: तो अर्जुन जी, कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं
1: सुना दीजिएगा, मोरा प्रेम से टिपू टिपू बरसा पानी
0: और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी। सबसे पहले तो आपके लिए
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद जी, और पूरे ईटानगर परिवार पर दिल के थे। और
0: जी
1: हम मेरा दोस्त श्रीकांत जोशी महाराष्ट्र से, लुकिंदा वर्मा जी है, मूलचंद लोधी जी है, गौसदास लोधी जी है, ओम प्रकाश जी है, और हरिनारायण गुर्जर जी है, दीपेन कोठारी जी है, गोलू कुमार जी है, गणेश दास जी है, बिहार से विमल ऋषि जी है, और हमारे पूनम जी कानपुर से हैं,
0: जी।
1: और हमारे मांगीलाल चंदेल भैया जी हैं, है ना, और जितने भी दोस्त हैं सभी के लिए
0: सभी
1: दिल
0: को
1: के थे
0: आप
1: मेरे
0: जी
1: तरफ
0: सुनाना
1: से।
0: चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी कॉल करने के लिए। सुनते हैं मोहरा फिल्म का गाना। कॉल करने

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर जी।
1: सुनाइए क्या हाल है सर
0: जी? मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो, आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: जी यहाँ का मौसम तो इस समय गर्मी बहुत है जी।
0: अच्छा जी।
1: हाँ जी पंजाब में बहुत गर्मी है।
0: अच्छा जी, आप पंजाब से कॉल कर रहे हैं हमें?
1: हाँ जी हाँ जी, पंजाब से मैं सोनू बात कर रहा हूँ जी।
0: अच्छा सोनू जी, ओके जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, काफी दिनों के बाद आपने हमें याद किया।
1: जी जी जी, जब से ट्राई करते रहते हैं मगर
0: अच्छा
1: फोन ही लगता
0: है। ओके चलिए आज लग गया, बातें करते हैं
1: जी।
0: तो आज कहिए सोनू जी, कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: मुझे आपने गाना सुनाना है जी, नमक हलाल मूवी का।
0: ओके
1: उसने गाना है जी पग घुंघरू बाल।

आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर।

राम राम जपना पराया माल बना, वतन का खाया नमक को नमक हलाल बनो।

0: हेलो फरमाइश। हेलो
1: हेलो।
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: नमस्ते सर। नमस्ते, मैं
0: नमस्ते
1: जवाहरलाल बर्मन बोल रहा हूँ, कछार जिला से।
0: जी। जवाहरलाल जी कहाँ गायब हो गए थे आप? बहुत दिनों के बाद आपने कॉल किया है।
1: नहीं सर, काफी दिनों से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के दिन में,
0: अच्छा
1: लेकिन
0: अच्छा
1: इतना कोशिश करता हूँ मेरा फोन नहीं लगता, लेकिन मैं हमेशा बोके बगरा जी को याद करता हूँ
0: बहुत बहुत
1: और
0: धन्यवाद।
1: हमेशा हेलो फरमाइश प्रोग्राम सुनता हूँ,
0: अच्छा
1: क्योंकि
0: अच्छा
1: आपका सुरीली आवाज और आपका मीठी मीठी बातें हम सबको प्रेरणा देते हैं।
0: क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जवाहरलाल जी।
1: जी हाँ।
0: इसी तरह से प्यार
1: तो
0: बनाए रखिए हमारे साथ।
1: जी हाँ,
0: जी हाँ जी। तो आज
1: तो
0: कहिए
1: आज
0: कौन सा फिल्म
1: जी
0: का गाना
1: आज
0: आप सुनाएं।
1: मुझे आज एक गाना सुना दीजिए।
0: हाँ जी।
1: 1977 में रिलीज हुआ अदालत फिल्म से, अमिताभ बच्चन और नीतीश सिंह जी ने अभिनय किया है वो गाना। लता जी और मोहम्मद रफी जी के जुगल सर में सुना दीजिए
0: ओके।
1: वो।

0: इस गाना को माय दम से मैं आकाशवाणी ईटानगर के हमेशा याद करता हूँ सर।
1: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया गीत आपने चुना है जी।
0: ये
1: और
0: गाना मुझे डेडिकेट करना चाहता हूँ सर, पहले तो आपके
1: बहुत बहुत
0: और
1: धन्यवाद।
0: प्रेम जी चक्रवर्ती है, आशुतोष देवनाथ है, भाई अविनाश है, आज सुनने वाले सब लिसनर्स के लिए।
1: ओके, तो जवाहरलाल जी इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो
1: मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, आप आनंद उठा रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां पर होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। दोस्तों, गीतों का सफर जारी रहेगा, लेकिन हम बदलेंगे थोड़ा सा धुन और स्टाइल और आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह

11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

श्रोता दोस्तों, रात्रि के 9 बज चुके हैं और दिन का शोर अब थोड़ा धीमा पड़ने लगा है। काम की बातें पीछे छूट रही हैं, मोबाइल एक तरफ रखा जा रहा है और शायद अब आपके पास अपने लिए कुछ पल है। ऐसे ही पलों में न जाने क्यों पुराने गीत बहुत अपने लगने लगते हैं। किसी गीत को सुने बरसों हो गए हो, फिर भी उसकी पहली धुन सुनते ही चेहरे याद आ जाते हैं। कोई पुरानी शाम याद आ जाती है या फिर जिंदगी का कोई ऐसा दौर जिसमें जिसे हम पीछे छोड़ तो आए हैं लेकिन पूरी तरह भूल नहीं पाए हैं। यही तो खूबसूरती है पुराने गीतों की। वे बीते हुए समय को वापस नहीं लाते लेकिन उसकी एक खूबसूरत सी झलक जरूर दे जाते हैं। नमस्कार श्रोता दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी अपनी आरजे नूरी और आप सुन रहे हैं हमारे साथ भूले बिसरे गीत अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र पर। तो आज की इस रात थोड़ा ठहरते हैं, थोड़ा सुनते हैं और थोड़ा उन यादों के साथ चलते हैं जो शायद कहीं बहुत पीछे छूट गई थी। शुरुआत करते हैं फिल्म हिमालय की गोद में से लिए गए ये खूबसूरत गीत जिसमें मोहब्बत की तुलना चांद की खूबसूरती से की गई है।

रात के सुकून भरे समय में ऐसी ही कोई पुरानी धुन आपको किसी खास इंसान की याद दिला रही हो तो उसे रोकिए मत। यादों का भी अपना एक मौसम होता है। कुछ लोग आज हमारे साथ हो या ना हो, उनकी यादें फिर भी हमारे साथ चलती रहती है। और अब एक और खूबसूरत गीत पत्थर के सनम से।

दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है ना कि पुराने गीतों की बात, जैसे मुझे लगता है कि हमेशा खास लगती है, वे अपनी बात कहने की जल्दी में नहीं होते। धुन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, शब्द अपना असर छोड़ते हैं और हम सुनते सुनते जाने कब उस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। अगर आज कोई आपसे पूछे, आखिर तुम्हारी तकदीर में क्या है, शायद जवाब आसान ना हो। फिल्म हरियाली और रास्ता से सुनते हैं बोल मेरी तकदीर में क्या है, जिसे गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, अब तकदीर के सवालों से निकलकर एक अब बात करते हैं दिल की। टूटना और कोई बात नहीं, लेकिन हर दौर ने उस दर्द को अपने अपने तरीके से महसूस किया है और हिंदी फिल्म संगीत ने तो दिल की खामोशी को भी आवाज दी है। अब आपके लिए पेश कर रहे हैं पूरब और पश्चिम से कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रिय साथी आरजे नूरी के साथ भूले बिसरे गीत। दोस्तों कभी कभी कोई गीत हमें दुखी नहीं करता बल्कि हमारे भीतर जमा हुई किसी पुरानी भावना को बह जाने का रास्ता दे देता है और फिर मन थोड़ा हल्का लगता है। अब माहौल में थोड़ी सी गर्माहट घोलते हैं रिश्तों की, साथ की और उस प्यार की जिसकी कोई बड़ी परिभाषा नहीं होती। फिल्म शोर का सदाबहार गीत एक प्यार का नगमा है।

कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते हुए हमें अपनी कहानी याद आती है, कोई चेहरा, कोई जगह, कोई पुराना घर पर, या शायद परिवार के साथ बिताया कोई साधारण सा दिन। और अजीब बात यह है कि तब वह दिन बिल्कुल साधारण लगा था, लेकिन आज वही सबसे खास याद बन चुका है। इसी एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से ये खूबसूरत गीत आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में।

तो श्रोता दोस्तों, आज की रात की हमारी ये छोटी सी संगीत मुलाकात अब इसी गीत के साथ यही ठहरती है, लेकिन शायद कुछ गीत आपके साथ अभी थोड़ी देर और रहेंगे। किसी धुन की तरह, किसी याद की तरह, या फिर उस मुस्कान की तरह जो बिना किसी खास वजह से चेहरे पर आ जाती है। भूले बिसरे गीत शायद इसलिए भूले बिसरे गीत कहलाते हैं क्योंकि हम उन्हें रोज नहीं सुनते, लेकिन जब सुनते हैं तो एहसास होता है हमने इन्हें कभी सचमुच भुलाया ही नहीं था। आज की इस रात में अपना समय और अपनी यादें हमारे साथ बांटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आप सबकी अपनी आरजे नूरी और आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी ईटानगर पर मेरे साथ। अब रात को थोड़ा और सुकून दीजिए, अपने लोगों के पास बैठिए, या अगर आप अकेले हैं तो अपनी पसंद की कोई पुरानी धुन सुन लीजिए, क्योंकि कभी कभी

0: एक अच्छा सा गीत पूरी रात का साथ बन जाता है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मुझे यानी आरजे नूरी और मेरे साथ प्रसारण अधिकारी पी डोले तथा तकनीकी अभियंता गोलो कोलो को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि और हाँ, पुरानी यादों को कभी फिर से सुन लिया कीजिए।
1: Spotlight.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों को आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफ्स्पा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
2: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी AK-203 एसल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड ने व्यापारियों के कल्याण, कारोबार सुगमता, डिजिटल सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, केंद्र राज्य समन्वय और निर्यात संवर्धन से जुड़े उपायों की समीक्षा की है। बोर्ड की 11वीं बैठक में वस्तु और सेवा कर, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, व्यापारियों की शिकायतों के निवारण, खुदरा विक्रेताओं, निर्माताओं, निर्यातकों तथा सेवा प्रदाताओं के लिए संस्थागत सहयोग मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड सिकल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में

0: 14 युवा महिलाएं और 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। जापान एशियाई खेलों के आज सातवें दिन भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक जीता। कुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction today with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadanagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said Vikasit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadanagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service.
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: During the interaction, these Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the Yatris to maintain a diary and record their experiences during the Yatra. Prime Minister Narendra Modi today highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the initiative has led to more being made in India, more investment in India, and more exports from India. He said, this transformation is visible across sectors. The Prime Minister said, Make in India is about creating infrastructure, enterprise and innovation that allow India to grow and prosper. The center has extended the Armed Forces Special Powers Act 1958 in disturbed areas of Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh for a period of 6 months with effect from the 1st of October. In Manipur, the Ministry of Home Affairs extended AFSPA in the entire state, excluding the areas falling under the jurisdiction of 13 police stations. In Nagaland, AFSPA has been extended in 9 districts. These districts are Dimapur, Niuland, Chomoi, Kedima, Mon, Khipire, Noklak, Phek, Peren and Meluri. In Arunachal Pradesh, AFSPA has been extended in Tirap, Changlang and Longding districts and the areas falling within the jurisdiction of Namsai, Mahadevpur and Chaukham police stations in Namsai district bordering Assam. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that meaningful UN reform requires text-based negotiations, warning that talks without a text would only amount to buying time and a delay in the process. He stated that growing global frustration over delayed structural changes at the United Nations indicates that opponents of reform are merely exploiting the institution rather than supporting it. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Uttar Pradesh and Uttarakhand tomorrow. According to IMD, heavy to very heavy rainfall is likely over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. In Asian Games, India's overall medal tally has reached 23 with 2 gold, 9 silver and 12 bronze in Japan. Indian duo Kamaljeet and Suruchi Singh won gold in the mixed team 10-meter air pistol event in Nagoya, Japan today. The pair shot 484.6 in the final to finish 6.6 points ahead of South Korea's Seo Hyun Hong and Gao Chun, who took silver with 478. In table tennis, Indian mixed doubles pair of Diya Chitale and Manush Shah settled for a bronze medal after losing to world champions and Chinese combination Wang Huiqing and Xing Ning Sha 0-3. And that is the end of this news bulletin.
3: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी मुख्य समाचार भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में खाड़ी लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त की कहा ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर आईबीएसए संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की ईरान ने अमेरिका के साथ संघर्ष समाप्त करने और 7 दिनों में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने का प्रस्ताव रखा और जापान में आयोजित एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की भारतीय जोड़ी ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता भारत के कुल पदकों की संख्या 23 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण 9 रजत और 12 कांस्य पदक शामिल हैं अब समाचार विस्तार से भारत ने आज खाड़ी लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त की कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं डॉक्टर जयशंकर ने भारत का नेतृत्व करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासभा के 81वें सत्र के दौरान जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह के उद्घाटन बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने के लिए भारत और लाइबेरिया द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई एक नई पहल की घोषणा की उन्होंने ओमान की खाड़ी में एंटीगुआ और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी केप डाओ पर हुए हालिया हमले का उल्लेख किया जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी डॉक्टर जयशंकर ने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया जिस पर होर्मुज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और जिसमें एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था विदेश मंत्री ने काला सागर में नागरिक जहाजों पर हुए हमले की ओर भी ध्यान दिलाया जिसमें एमवी ओमोर्फी और एमवी गोल्डन लियो से जुड़े हमले शामिल है डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि समुद्री व्यापार को बाधित करने और नागरिकों की जान लेने वाले हमलों का बचाव नहीं किया जा सकता है और उन्होंने देशों से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए न्यूयॉर्क में है डॉक्टर जयशंकर कल उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है ये मिशन समुद्री सहयोग और देशों के बीच संचालन व्यवस्था को मजबूत करता है जो एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति क्वाड की साझा प्रतिबद्धता का परिचायक है विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के

0: अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल करने वाला तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी AK-203 असोल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
0: जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जनभागीदारी की महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
2: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान अपने संघर्ष को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की कोशिश में है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए अमेरिका को नाकाबंदी और अन्य आर्थिक प्रतिबंध हटाने होंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि ईरान ने मध्यस्थों के जरिए एक प्रस्ताव भेजा है जिसके अंतर्गत शर्तों के पूरा होने पर जलडमरू मध्य को खोल दिया जाएगा। इनमें 7 दिनों के भीतर सभी मोर्चों पर संघर्ष का अंत, ईरान के बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी हटाना, ईरानी संपत्ति को जारी करना और तेल प्रतिबंधों में छूट शामिल है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
3: जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
5: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम पार्टनर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी और ये मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी गेम्स में जीता है तो शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
3: 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलेंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। बैडमिंटन में तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स डबल्स जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं पदक की सबसे बड़ी उम्मीद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पहले ही दौर में प्रतियोगिता से बाहर हो गए। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त की। कहा, ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। और जापान में आयोजित एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की भारतीय जोड़ी ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही स्वर्ण विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद वर्ल्ड न्यूज।